0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको देते हैं जानकारी एफएम रेनबो से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में ठीक 6 बजे शालिनी सिंह आपके लिए लेकर आएंगी सुप्रभात। 7 बजे बबीता रावत और शालिनी सिंह आपके साथ रहेंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर, जिसमें आप सुन सकते हैं विंबलडन अपडेट्स भी। 9 बजे बबीता रावत के साथ आप सुनेंगे दिल के तराने और गाने नए पुराने। पाश्चात्य संगीत से भी आप करते हैं प्रेम तो उत्कर्ष लेकर आएंगे 10 बजे और दोपहर 12 बजे पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम। 11 बजे बबीता त्रिपाठी रहेंगी बॉलीवुड की चटपटी खबरें लेकर आपके साथ, और साथ ही होंगे कुछ गीत भी ठीक 11 बजे। 1 बजे रेनबो हेल्पलाइन में आज चर्चा होगी कार्यस्थल पर और घर पर महिलाओं के वैधानिक हितों के बारे में। विशेषज्ञ रहेंगे श्री रमेश चंद, जो कि अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय दिल्ली में।

0: और रेडियो डॉक्टर आप सुन सकते हैं आज दोपहर 3 बजे, जिसमें फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर चर्चा होगी डॉक्टर प्रदीप कुमार के साथ, जो कि एक प्रोस्थेटिस्ट हैं। बातचीत करेंगी शालिनी मित्तल। ये थी जानकारी दोस्तों हमारे आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने बहरीन में शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विशाखापट्टनम तट के पास नौका पलटने की घटना के बाद एक मछुआरे को बचाया गया। लापता 6 मछुआरों की तलाश जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

सुबह के फूल खिल गए, पंछी अपने सफर पर उड़ गए, सूरज आते ही तारे भी छिप गए। क्या आप अपनी मीठी नींद से उठ गए? और अगर नहीं उठे हैं तो हम उठाने आ गए हैं आपको। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 पर। आपके साथ हूं मैं शालिनी। सुबह के 6:06 और ठीक 20 सेकेंड हो चुके हैं। नींद से जाग जाइए, क्योंकि एक नई शुरुआत का समय हो चुका है। हर अंत एक नई शुरुआत की नींव होता है। जैसे रात बीत जाने के बाद सुबह होती है, ठीक इसी तरह से जब एक चक्र पूरा होता है ना, तब जीवन में एक अध्याय बंद होता है। तो ये निराशा की बात नहीं है, बल्कि विकास और नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं आपके लिए। असफलता या हानि को हमेशा एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। तो आगे बढ़ने और कुछ नया करने के अनगिनत दरवाजे खुल जाते हैं। ये जीवन की एक सुंदर और अटल सच्चाई है। इस बदलाव को स्वीकार करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस पल का स्वागत करने के कुछ तरीके बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये गीत सुन लेते हैं।

तो आपसे भी ये कह रहे हैं हम कि उठ जाइए, बात मान लीजिए हमारी। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शालिनी है आपके साथ कार्यक्रम सुप्रभात में। उठाने जगाने आ गए हैं आपको इस संदेश के साथ कि अंत ही एक शुरुआत है। अंत को आप जो है वो सकारात्मक तौर पर ले सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं। अगर पुरानी सफलताओं को या अनुभवों को आप उनका विश्लेषण करें और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा बना लें तो आपके लिए अंत एक शुरुआत हो सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि पतझड़ में जो पत्ते गिरते हैं वो धरा की गोद में मिलते हैं, वृक्ष नहीं रोता अपनों पर क्योंकि नए अंकुर फिर खिलते हैं। विनाश में ही तो सृजन छुपा, मिटने में ही तो जीवन छिपा, है ना। चलिए इसी विचार के साथ आपके लिए एक और सुंदर सा गीत यहाँ पर हम चलाते हैं। आगे फिर और भी बातें जारी रहेंगी। अंत एक शुरुआत है।

हमारा भी मन जो है वो मोर की तरह नाचने लगा है, क्योंकि आपसे मिलकर ना हमें जो खुशी होती है वो बयां करने जैसी बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं शालिनी, और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सुप्रभात। अंत एक शुरुआत है, हर समाप्ति आपको और ज्यादा अनुभव देती है और ज्यादा परिपक्व बनाती है। हर अंत से आप कुछ सीख सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, उनसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं। उन्हें सोचकर या परेशान होकर कि ये चीज़ अंत हो गया है इसका, अब उसे परेशान ना हो, उसे सोचकर उसे सीखें, आगे बढ़ें और कुछ नया करें, क्योंकि हर अंत आपके लिए कुछ नया लेकर आता है। सिर्फ नज़रिए की बात है। किसी ने कहा है खूब कि रात अगर गहरी काली है तो भोर की खिड़की खाली है। सूरज का ढलना शौक नहीं, नई सुबह का आगाज है। हर ढलती शाम के सीने में एक छुपा हुआ नया साहस है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

और ये सफ़रनामा भी हमारे लिए बहुत ख़ास है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 कहते हैं इसे। यहाँ पर हम मिलते हैं आपसे, अपने श्रोताओं से। कितनी सारी भावनाएं हमारी आपके साथ जुड़ी हुई होती हैं, आप अपनी भावनाएं हम तक पहुँचाते हैं और हमारी भावनाएं आप तक पहुँचती हैं, और इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम सुप्रभात में। आपके साथ हूँ मैं शालिनी। अंत एक शुरुआत है। बंद होने वाले दरवाजे हमें नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर आपसे कुछ छूट रहा है, कुछ दूर हो रहा है, तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि हम अक्सर क्या है, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना नहीं चाहते। तो इस तरह से ना सिर्फ हम परेशान होते हैं, बल्कि जो हमारे लिए नए रास्ते खुलने वाले होते हैं, नए दरवाजे खुलने वाले होते हैं, उन्हें भी हम दूर करते जाते हैं, उन्हें बंद करते जाते हैं। तो आप अपनी उस पुरानी पहचान को छोड़िए और नई पहचान को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अंत जो है वो शुरुआत ही है। तो इससे घबराएं नहीं, आगे बढ़ें और उसे स्वीकार करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो छूट गया उसे छूटने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो। तुम जिसे समझते हो पूर्ण विराम, वो है नए सफ़र का पैगाम।

गुलाबी तो नहीं, एक सुनहरी सुबह में जगाने के लिए आपको आ गए हैं हम। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं शालिनी, और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। अंत एक शुरुआत है, यही बात कर रहे हैं हम आज। ये हमें नए अनुभव देता है। अगर जब भी आपके लिए किसी कोई दरवाज़ा बंद हो या कोई पुरानी चीज़ आपसे छूट रही हो, तो आप ये ना समझें कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। उस समय के लिए हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है। और हम उसे स्वीकार करने से डरते हैं, हम बदलाव से डरते हैं। तो जीवन में ना अलग अलग रंग ज़रूरी हैं। अगर एक ही रंग आपको हमेशा के लिए दिया जाए तो कैसा लगेगा, कितना कितना बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो जीवन के हर रंग का आप उसको आनंद लीजिए, और प्रकृति के बदलाव को ना स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रकृति में हर समय सब कुछ बदल रहा है। तो आप वही पुराने कैसे रह सकते हैं, आपको भी तो बदलाव करना होगा ना। कुछ नया जब आपके जीवन में आएगा ना, तो आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ जानेंगे, और एक नई ऊर्जा के साथ ना, एक नई पहचान के साथ आगे आएंगे। बदलाव जो है वो आपको ऊर्जा से भर देता है, कुछ नया सिखाता है। तो उसे डरिए नहीं, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर आप उससे लड़ते हैं, उससे परेशान होते हैं, तो आप जीवन में कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जब भी कुछ बदले, उसे सहज तौर पर स्वीकार कर लीजिए।

नहीं, हम बिल्कुल भी बैठे नहीं हैं, पूरे होश हवास में यहाँ पर हाजिर हैं आपके लिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। शालिनी कहते हैं मुझे और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सुप्रभात। अंत एक शुरुआत है।

और ये शुरुआत ना आप किसी भी उम्र में किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत समय पहले आपको कोई मौका मिला था और आपने वो गंवा दिया और शायद अब वो शुरुआत आप नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। जब भी आपकी आँख खुले, जब भी आप तैयार हों, तब वो शुरुआत की जा सकती है, बशर्ते कि आपके मन में कोई ऐसा कोई अपराध बोध ना हो। आप उसे निकाल दीजिए, क्योंकि समय आपको हर वक्त जो है वो इजाज़त देता है, आपको मौके देता है। ज़िंदगी आपको हर पल मौके देती रहती है, आप बस उन्हें पहचानिए और स्वीकार करिए। और पुराने दरवाज़ों को अगर बंद करने का समय हो तो बंद कर दीजिए, कुछ नए दरवाजे तभी तो आपके लिए खुल पाएंगे ना, है ना। अपनी नई प्राथमिकताओं को पहचानिए और एक स्पष्ट विजन जो है वो तैयार करिए और उसके साथ काम करने में लग जाइए। फिर देखिए बदलाव किस तरह से होता है आपके जीवन में और आप अपना एक नया ही रूप देखेंगे। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं ये अगला गीत, फिर करेंगे आपसे कुछ और बातें।

ये तारों के सो जाने का समय है और आपके जागने का, तो जाग जाइए क्योंकि कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आपके साथ हूं मैं शालिनी। अंत एक शुरुआत है। कई लोग बदलाव से डरते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो असफल ना हो जाएं, कहीं वो हार ना जाएं। नई चुनौतियां जो उनके सामने आएंगी, क्या वो उनका सामना कर पाएंगे, और इसीलिए वो उनसे डरते रहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो असफलता से डरते हैं ना, वो जीवन में कहीं नहीं पहुंचते। इस डर से कि आप हार जाएंगे, आप बाहर निकले ही नहीं, आप उस चीज़ का सामना ही ना करें। इस डर से कि आप खेल में हार जाएंगे, आप खेले ही नहीं। तो एक समय जीवन में आपके ऐसा आएगा जब आपको अपराध बोध होगा कि आपको समय मिला था और आपने उसका सही से सदुपयोग ही नहीं किया। आप कोशिश कर सकते थे, आपने वो भी नहीं करी। आपके हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, उसका क्या फल मिलेगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में है वो आप कर लीजिए। इसलिए अंत को स्वीकार कीजिए, नए रास्तों को अपनाइए, उन पे चलिए। उन पे कितने सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे आप नहीं जानते, लेकिन जब आएंगे तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहिए, तो वो आपको जीवन में कुछ सिखा कर जाएंगे। ठोकरें खाकर कई बार हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, है ना? तो उनसे डरिए नहीं, यह आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएंगे।

सुबह की बहती ठंडी सी हवा में आपको जगाने आ गए हैं हम एक बार फिर से। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। शालिनी कहते हैं मुझे, कार्यक्रम सुप्रभात। हम बात कर रहे हैं कि अंत एक शुरुआत है। जब भी कुछ बदले तो एक पल ठहर कर आप सोचिए कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कोई बदलाव नया होगा जिससे मेरा जीवन कुछ बदलेगा, वैसा नहीं रहेगा जैसा है, कुछ और अच्छा।

उसे स्वीकार करें और उसी के साथ आगे बढ़ें तो आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि मत हार मान इस बिंदु पर, ये अंत नहीं एक मोड़ है। जीवन की इस लंबी दौड़ में कल से आज का नाता जोड़ है। उठो संभालो अपनी जमीन कि अंत ही तो एक नई शुरुआत है। इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं आज कार्यक्रम सुप्रभात में। मैं हूं आपके साथ शालिनी और अब आपसे विदा लेते हैं क्योंकि चलने का वक्त हो गया है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6। नमस्कार, ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्णमोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन में शाद हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। द्विपक्षीय

मनों को और सशक्त बनाने के उपायों पर चर्चा की। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रेगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। 1993 बैच के IPS अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश की रेड अलर्ट जारी की है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ दिन की शुरुआत करने के लिए। आज दिन भी बहुत खास है, खास क्यों ना हो, हर दिन एक खासियत लेकर आता है और हर दिन की खासियत को बताने के लिए हम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आते हैं और ये घंटा आप सभी लोगों को आज के दिन की खास बातें बताने के लिए। तो सुनते रहिए मेरे साथ, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

गुनगुनाता है और गीत गाता है। जी हाँ, हर समा यही कहलाता है। रेनबो के साथ जुड़े रहेंगे तो हंसते गाते गुनगुनाते बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, और हम जब आपके साथ होते हैं तो एंटरटेनमेंट का डोज इंफोटेनमेंट के साथ बदल जाता है। वैसे हर किसी जिंदगी का एक ही लक्ष्य होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, चाहे वो लक्ष्य खेल का हो, चाहे वो लक्ष्य अपनी पढ़ाई का हो या किसी अच्छी जॉब का हो, लेकिन लक्ष्य हर किसी का होता है। तो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं? भाई, जोश को बरकरार रखिए, जुनून को बिल बरकरार रखिए और विश्वास रखिए अपने मेहनत पर, अपने परिश्रम पर। जरूर से आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको फल मिलेगा सफलता का, और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो जोश, जुनून और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को आप जरूर सफलता से प्राप्त कर पाएंगे। आज है 7 जुलाई 2026, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, आषाढ़ का महीना, कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, और सूरज चाचू ने हलो हाय कर दिया है सुबह सुबह 5:29 पर, और शाम जब ढलेगी 7:22 पर, तो फिर क्या आपको अगले दिन की तैयारी करने का फिर से मौका मिलेगा। मौसम भी बड़ा सुहावना है, मैक्सिमम 32 डिग्री और मिनिमम 28 डिग्री है टेम्परेचर। अब सुहावना मैंने ऐसे कहा है कि बारिश के अंदेशे में हम सुहावने मौसम का इंतजार कर सकते हैं, बस ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए कब बारिश बरस जाए और मौसम सुहावना हो जाए। 72% ह्यूमिडिटी है और

की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और AQI लेवल की बात की जाए तो 160-162 के आसपास AQI लेवल इस वक्त दिल्ली NCR का बना हुआ है। और अगर बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का स्तर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और उम्मीद ही एक इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। आगे बढ़ते हैं, अगले कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये गाना भी इंजॉय करते हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। आज के दिन की बात आती है तो जब तक हम आज के इतिहास के बारे में ना जान लें तो दिन कैसे पूरा हो। जी हाँ, इतिहास के बारे में आपको बताते हैं, पलटते हुए पन्नों की तरह, बरसते हुए कह सकते हैं मौसम की तरह, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में छप जाती हैं और फिर इतिहास बन जाती हैं। इतिहास के उन्हीं पन्नों को हम पलटते हैं और आपको बताते हैं। 1896 में भारत में सिनेमा का प्रवेश हुआ था। मुंबई के वॉटसन होटल में ल्यूमियर बंधुओं ने फिल्मों की पहली बार प्रदर्शनी की थी। वहीं 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई थी। 1998 में पंडित विश्वमोहन भट्ट को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रतिष्ठित दशाब्दी का सर्वाधिक प्रशंसित व्यक्ति सम्मान मिला था। तो इतिहास में ये वो घटनाएं हैं जो भारत को प्रतिबिंबित करती हैं और कहीं ना कहीं हम उस इतिहास का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हम अभी भी अंकित हैं। और भी बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: वैसे गीत के बोल कितने सुहावने लगते हैं ना, और साथ ही साथ उनका म्यूजिक भी। और म्यूजिक की बात की जाए तो गाने की जान होते हैं, और आज है ऐसे ही संगीतकार का की जयंती। जी हाँ, संगीत के महान संगीतकार और पार्श्व गायक के अग्रदूत अनिल विश्वास जी 1914 में 7 जुलाई के दिन आज उनका जन्म हुआ था, और आज उनकी जयंती है। उन्हें भारतीय फिल्म संगीत को आधुनिक बनाने और सिनेमा में ऑर्केस्ट्रा यानी कि 12 इंस्ट्रूमेंट का पहला एक ग्रुप था, उसको कोरस प्रभाव के साथ उन्होंने शुरुआत करी थी, और इसका श्रेय उन्हें जाता है। और प्यार से उन्हें सब अनिल दा कहते हैं। उनके गीतों में लोक संगीत की झलक दिखाई देती है। 90 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। किस्मत, रोटी और लता जी, मुकेश जी, लतलत महमूद जैसे कई ऐसे बड़े जो दिग्गज हैं उनको उनके मेंटोर कहे जाते हैं, और आज उनकी जयंती है तो हम उन्हें याद करते हैं। साथ ही साथ दिल के तराने गाने नए पुराने में हम उन्हें सुनेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: और अब आप सुनेंगे विंबलडन अपडेट्स।
7: Wimbledon update from the BBC.
8: Hello, I'm Adi Adedoyin with your daily roundup from Wimbledon 2026, recorded at 19 hours GMT. Our reporter Shoji Osaka is on centre court at Wimbledon and can tell us what's been happening on the second Monday of the championships. We've seen the former ladies singles runner-up Jasmine Paolini reach the quarterfinals again.
9: Yes, Paolini looks to be back in the kind of form that took her to the final 2 years ago. Just buzzing around court, the diminutive Italian knocked out the 21-year-old Filipina Alex Iala in 3 sets. Iala had really wowed the crowds when she knocked out last year's champion Iga Świątek on Saturday. But in round four, Paolini won out 6-4, 4-6, 6-3. And afterwards, Paolini admitted that the presence of legend Roger Federer in the royal box made her a little nervous.
10: Stepping on this court is something special, and I was looking forward to it. I want to thank you as well, Roger, because he's my idol, and was tough to play. I was like during the match, please stay focused, don't think about he's here.

0: आप सुन रहे थे विंबलडन अपडेट।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: FM रेनबो सुन रहे हैं आप और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली, NCR प्रोग्राम है आपके साथ और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। बहुत सारी बातें अभी कहने को हैं, बहुत सारी बातें अभी सुनने को हैं और आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी बातें यूं ही जुड़ जाती हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं क्योंकि उनकी लेखनी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी होती है कि आज भी उनके शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं। और ऐसे ही हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आज उनकी जयंती है, आज उन्हें याद करते हुए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। 1883 7 जुलाई को हिमाचल के गुलेर में उनका जन्म हुआ था। हिंदी के कथाकार, व्यंगकार, निबंधकार तथा संपादक थे।

हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं का उनको बहुत ज्ञान था और उनकी रुचि शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, विज्ञान और राजनीति तथा सामाजिक जो स्थितियां हैं और रीति नीति उनमें थी। हमारे और आपके जैसे आम पाठक जो हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना चाहते हैं, उनके अलावा भी जो विद्वान लोग थे, एक बड़ा समूह था, उनकी अमर कहानी उसने कहा था इस रचना के कायल थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में घंटाघर, धर्मपरायण, रीच, बुद्धू का कांटा, हीरे की हार, कछुआ धर्म है। गुलेरी जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्श वाक्य कम लिखो मगर अच्छा लिखो को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया और अपने जीवन काल में 3 कहानियां लिखी, लेकिन उन्हीं में वे अमर हो गए। आज उनको याद करते हुए हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर आऊंगी मैं आपके लिए 9 बजे, जहां पे आपके साथ होंगे पुराने गाने भी और साथ ही साथ नए गाने भी। और अभी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

एंटरटेनमेंट का दौर चलता रहना चाहिए और एंटरटेनमेंट के लिए सबसे अच्छी होती है मूवीज और उसके बाद होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में धमाल कमाल और जो जुनून और जोश चाहिए वो हमारे अंदर समा जाता है जब भी हम कोई भी मैच देखते हैं जो हमारी फेवरेट टीम खेल रही होती है या हमारा फेवरेट गेम चल रहा होता है। और जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो हम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के सेगमेंट में स्पोर्ट्स को ज़रूर लेके आते हैं और आपको बताते चलें कि स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें बताने के लिए आपके लिए हैं। फीफा चल रहा है, जोश जुनून फुटबॉल के प्रति हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका रहता ही है और साथ ही साथ जब फुटबॉल का मैच होता है ना तो एक ज़बरदस्त लहर सी उठती है और भूकंप भी आ जाते हैं, हाँ हिलने लगते हैं क्योंकि इतना शोर इतना क्राउड होता है। हमारे जो दर्शक होते हैं स्टेडियम में बैठे हुए या फिर अपने अपने घरों में टीवी के सामने या फिर रेडियो पर सुनने वाले लोग जो भी हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। चलिए ज़्यादा कुछ भूमिका ना बांधते हुए आपको बताते चले कि फीफा जो वर्ल्ड कप है उसमें स्पेन ने फीफा विश्व कप के 2026 के राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल को 0-1 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच में एकमात्र निर्णायक गोल निकेल मेरिनो ने इंजरी टाइम में किया और इसके साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम का वर्ल्ड कप का जो अभियान है वो ख़त्म हो गया। वहीं USA और बेल्जियम के बीच में मुकाबला चल रहा था सुबह सुबह और वो भी अब बेल्जियम ने जीत लिया है और जीत के साथ ही बेल्जियम क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुका है। और क्रिकेट के हमारे फैंस को इंतज़ार होगा कि क्या होने वाला है आज। आज इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में होने वाले तीसरे T20 मैच के बीच में अपने प्लेइंग 11 घोषित कर दिए हैं और मंगलवार यानी कि आज का जो मुकाबला है वो ज़बरदस्त होने वाला है। वैसे मौसम की जो आवाजाही है वो वहाँ पर भी बरकरार है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ होप सो हमारे जो फैंस हैं उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले 3 मैचों में T20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया है, वहीं वैभव सूर्यवंशी को इस टीम में जगह मिली है। वहीं श्रेयस अय्यर कैप्टन है, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक शर्मा उप कप्तान, ईशांत किशन विकेट कीपर, शिवम दुबे, सूर्यांश सेगड़े, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभ सिमरन सिंह विकेट कीपर के तौर पर इस टीम में खेलेंगे। तो ये थे स्पोर्ट्स की बातें, आप सुनते रहिए मेरे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और आज महेंद्र सिंह धोनी जी का भी बर्थडे है तो हम उन्हें करते हैं हैप्पी वाला बर्थडे विश। और क्रिकेट की दुनिया में उनको कौन नहीं जानता, कैप्टन कूल के नाम से मशहूर हैं और एक से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उन्होंने प्राप्त की है। उन्होंने 2007 में ICC वर्ल्ड T20 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र कैप्टन हैं और रांची के जन्म धोनी 1999 में

के लिए प्रथम श्रेणी के क्रिकेट पदार्पण किया और श्रीलंका के खिलाफ अपना उन्होंने टेस्ट मैच खेला। उसके बाद 2008 में उन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया। तो उन्हें कहते हैं हम हैप्पी वाला बर्थडे विश।

वैसे भारत की कहानी हर कोई बयां कर सकता है, उनके वीर सपूतों की कहानी हर कोई बयां कर सकता है, क्योंकि देश में भारत माता के प्रति प्रेम का जज्बा हर किसी का रहता है। लेकिन जब करगिल का युद्ध हुआ था तो बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी गंवा दी। भारत माता के इन्हीं वीर सपूतों में से कैप्टन विक्रम बत्रा, आज उनकी जयंती है। 7 जुलाई 1999 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के तैनात विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी ने करगिल युद्ध के दौरान हम्प व रॉकी नॉब स्थानों को जीता और कैप्टन बना दिया गया था। उसके बाद उन्हें श्रीनगर के लेह मार्ग के ठीक ऊपर महत्वपूर्ण 5140 पॉइंट को पाक सेना से मुक्त कराया और बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बाद भी कैप्टन बनाने बत्रा ने 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को कब्जे में कर लिया था। कैप्टन बत्रा ने जब रेडियो पर कहा कि ये दिल मांगे मोर, तो पूरे देश ने में उनका नाम छा गया था। इसके बाद 4875 पॉइंट पर कब्जे का मिशन उनका शुरू हुआ। आमने सामने की लड़ाई हुई और उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। गंभीर जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और कैप्टन की बात कहें तो इस ऑपरेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम उन्हें याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं और आकाशवाणी टीम की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अभी बिलाल मेरे जाने का वक्त हो चला है और मेरे जाने के बाद शालिनी आएंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का अगला सेगमेंट लेके और उसके बाद उत्कर्ष होंगे वेस्टर्न म्यूजिक का बंच लेकर के। जी नहीं, मेरे बाद आएंगे वो दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर। मैं 9 आऊंगी और उसके बाद उत्कर्ष होंगे आपके साथ वेस्टर्न म्यूजिक का बंच लेकर के और उसके बाद होगी बहुत सारी बॉलीवुड की बातें। बॉलीवुड बबीता त्रिपाठी होंगी, जी हाँ।

जैसे ही कोई एक और बबीता बबीता स्क्वायर आएंगी आपके साथ और फिर सिलसिला शुरू होगा बॉलीवुड की बातों का। ऐसे ही सिलसिले रहेंगे आपके साथ, सुनते रहिए मेरे साथ। मैं अभी आऊंगी आपके पास 9 बजे, ठीक 9 बजे, दिल के तराने गाने नए पुराने में जुड़िएगा मेरे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आजकल रिश्ते बिना कितनी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं ना। वो कहते हैं कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। बताइए, ये भी कोई बात हुई क्या? पर हमारा रिश्ता ना ऐसा नहीं है, हमारा रिश्ता बहुत खास है। इसीलिए तो मैं क्या जी सोने मखड़ो की हाल चाल है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर से गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपके साथ हूँ मैं शालिनी। और शुरू कर लेते हैं आज का शो खटाक से नीति मोहन की खूबसूरत सी आवाज में। उसके बाद है बहुत सारी और भी बातें करने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स और क्या और भी बहुत कुछ, और बहुत ही बेहतरीन से गाने। और की

अरे कैसे जाए हो इतनी गर्मी में। यही कह रहे हैं ना आप, गर्मी से परेशान हैं आप। तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी तो परेशान हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि दिल्ली का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो क्या रहने वाला है आज, वो रहने वाला है 37 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है 28 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, या फिर नींबू पानी। फिलहाल अगला जो गाना है वो आपके लिए मैं पेश कर देती हूँ।

है ठंडा गरम, और गरम की तो बात ही मत करिए, ठंडे की ही बात करिए, क्योंकि इतनी गर्मी में गरम की बात ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है मुझे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने जो है एक व्यक्ति को रोककर उसे पूछा कि क्या तुम्हें

सारे कागजात पूरे हैं, दिखाओ जरा। तो बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास सारे कागजात पूरे हैं। तो बोले ठीक है, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो बोले रुक जाओ जरा, इतना सारे कागजात तुमने तैयार करके रखे हैं, इसका मतलब है कि तुम बहुत सावधानी से गाड़ी चलाते हो, बहुत संभल संभल के, बहुत डर डर के चलाते हो। हैं चलो, इस बार भी तुम्हारा चालान कटेगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बिना सिर मुड़ाए ही ओले पड़ जाते हैं? फिलहाल लेकिन ओलों की बात तो छोड़िए, बारिश की बूंदें भी जो है बहुत ही मुश्किल से पड़ रही हैं। इस तरह से पड़ रही हैं कि बस आपको होश में ला देती हैं, वो थोड़ी सी छींटे मार देती हैं ताकि आप होश में रहें, जिंदा बने रहें। बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब बरसेगा ये मौसम। और यहाँ पर जो है आपके लिए आसमान की तरफ अगर आप देख रहे हैं ना, तो उम्मीद से देखते रहिए। फिलहाल आपको जन्नत के नज़ारे दिखाने के लिए श्रेया घोषाल की आवाज़ आ रही है, ज़रा सुन लीजिए।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: मैं क्या जी, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, ते बड़ा वाला हेलो है क्या जी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 रेनबो और इस पर कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के। तो आप जानते ही हैं, फिलहाल जो आप नहीं जानते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके काम की बात, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो जुड़ जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे से और आपका जो दिल्ली NCR वालों का जो है वो प्रयागराज जाना आसान हो जाएगा और ये काम जो है अक्टूबर तक पूरा होने का अनुमान है। तो इसलिए अब इसकी अगर डिटेल आपको बताऊं तो ये कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के खंड 5 का जो निर्माण कार्य है वो अक्टूबर महीने तक पूरा होने की उम्मीद है और अब तक इसका जो है वो 83% निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। तो अब आप खुशियां मना सकते हैं और इसी खुशी में ना एक मोहतरमा जो है वो उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया और ट्रैफिक पुलिस वाले से कहने लगे कि भाई साहब मुझे जाने दीजिए, मैं ना टीचर हूँ। तो ट्रैफिक पुलिस वाला बोला कि अच्छा क्या बात है, तो मैं तो काफ़ी दिनों से इसी इंतज़ार में था, एक काम करिए इधर आइए, ज़रा यहाँ 100 बार लिखिए कि अब आप ना ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ेंगी, ठीक है, लिखिए ज़रा आराम से। तो पढ़ गई होशियारी, महंगी पड़ गई ना आपको जो है वो टीचर से विद्यार्थी बनने में टाइम नहीं लगा है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा होशियारी ना अच्छी नहीं होती है। फिलहाल जो अच्छा सा गाना ना वो मैं आपके लिए चला देती हूँ, आप सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मेरा नाम है शालिनी।

और पानी सिर्फ कल से का ही नहीं छलक रहा है, यहाँ पर बादलों से भी पानी छलकना शुरू हो चुका है। मेघा जी, जब बहुत दिल से हम कोई बात चाहते हैं ना तो पूरी हो जाती है, और इतनी देर से हम गर्मी की बात कर रहे थे तो देखिए आसमान जो है वो हमारी खुशी के लिए बरसना शुरू हो चुका है। दिल्ली में बारिश शुरू हो चुकी है और इसी के साथ तापमान में गिरावट हो चुकी है। 32 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 28 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर अभी शो हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक आप जो इतनी देर से चला रहे थे कि हाय गर्मी तो हम पैगी कदी कलेजी नहीं ठंडक है, शांत हो जाओ थोड़ा सा। फिलहाल मैं आपको एक न्यूज़ बता देती हूँ यहाँ पर। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ, फिलहाल सुन लीजिए। गुरुग्राम में अरावली पर्वत श्रृंखला के पास एक नया रिहायशी सेक्टर बनाने की तैयारी चल रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस नए सेक्टर को विकसित करने का जो है वो बीड़ा उठाया है और प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो है वो HSVP ने हरियाणा में करीब 1.67 लाख जो है वो नए सेक्टर इसमें जो है एरिया के सेक्टर में विकसित करने की योजना बनाई है, और इसके तहत करीब 17,000 एकड़ ज़मीन की पहचान कर ली गई है और इस पर काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आपके लिए गुड न्यूज़ मैंने दे दी है, लेकिन बारिश में छमाछम करने का टाइम आ गया है, तो मैं आपके लिए गाना प्ले कर देती हूँ फिलहाल फटाक से।

आप बुलाए और हम ना आए इतने प्यार से, ऐसा हो सकता है? लेकिन आ गए हैं यहाँ पर एक बार फिर से आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि शालिनी को, और शो का नाम तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे, मैं बताऊंगी ज़रूर। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप मेरे साथ। और फिलहाल जो मैं आपको कोई खबर आगे की बताऊँ, उससे पहले मैं आपको ना शिकायत बता देती हूँ। हमारे जो लिसनर हैं उनकी शिकायत है कि उनके मैसेजेस जो है वो नहीं पढ़े जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बार बार कह रहे हैं कि हो गया, हमने बार बार मैसेज भेजते हैं, आप पढ़ती नहीं, कोई बात है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस शो का जो फॉर्मेट है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम आपके मैसेजेस ले पाएं। लेकिन हाँ, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जितने भी मैसेजेस आप हमें करते हैं ना, वो हम उनको बहुत ही जो है वो ध्यान देते हैं उन पर, और उस मुताबिक ना हम अपने शो को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर शो को लेकर, किसी भी शो को लेकर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं 9868107070 पर। फिलहाल अगर आप ट्रैफिक में भी कहीं पर फंसे हुए हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं इसी नंबर पर 9868107070 पर। और अब फिलहाल खबरों की दुनिया से आपके लिए एक और खबर है मेरे पास, और वो ये कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा पड़ावों को लेकर की जाने वाली जो घोषणाएं हैं ना, उसके साथ साथ अब आपको विज्ञापन भी सुनाई दे सकते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, आपके कान

0: बिल्कुल ठीक है। तो डीएमआरसी ने ना अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए रेड, येलो, ब्लू और मैजेंटा लाइन पर ना मेट्रो ट्रेन्स के अंदर ना ऑडियो विज्ञापन चलाने की योजना बनाई है। इस कदम का जो मकसद है वो दिल्ली मेट्रो की टिकट बिक्री से होने वाली कमाई के साथ साथ आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ ही मेट्रो ट्रेन्स को एक प्रीमियम विज्ञापन प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करना है। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है अगर एक पंथ दो काज हो जाए तो। लेकिन इसी बात से ना मुझे एक बात याद आई कि विज्ञापन से बात याद आई कि एक महिला है ना, वो एक दुकानदार के पास जो है वो वॉशिंग पाउडर लेने के लिए गई। तो दुकानदार बोला कि मैडम ये वाला लीजिए, ये जो वॉशिंग पाउडर है ना एक चुटकी में सारे दाग गायब कर देता है। तो इसको सुनकर महिला बोली कि
1: सच्ची भाई साहब, सारे दाग गायब कर देता है? तुम मुझे ये बताओ कि जो मेरी पुरानी यादों है ना, पुरानी यादें, कड़वी यादें, उनके दाग भी साफ हो जाएंगे क्या?
0: तो दुकानदार उसका मुंह ताकने लगा, लीजिए, दागों की सफाई हो ना हो पर दुकानदार की सफाई हो गई, धुलाई हो गई। बल्कि फिलहाल आपके लिए साफ सुथरा सा खूबसूरत सा ये गाना आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक

0: सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: मैं कह जी स्वागत है आपका एक बार फिर से आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ शालिनी और गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप। ठीक है, तो फिलहाल एक और गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए, और वो ये है कि NCR में ना जल्दी ही और एक नया एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी चल रही है। इसे नोएडा में DND से जेवर तक बनाने की योजना है, और जल्दी इसकी जो DPR है वो तैयार करने का काम जो है वो शुरू हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जो नया एक्सप्रेस वे के लिए ना नोएडा क्षेत्र में 4 लूप बनाए जाएंगे। नोएडा की ओर से जाते समय पहला लूप जो है वो DND, दूसरा महामाया फ्लाईओवर, तीसरा सेक्टर 128 और JP विश टाउन, और चौथा लूप सेक्टर 150 में बनाया जाएगा। अब एक्सप्रेसवे यमुना पुश्ते से के अंदर शहर की तरफ से होकर ग्रेटर नोएडा की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये तो ही आपके लिए गुड न्यूज़। और फिलहाल अब मुझे ये पूछना है कि सड़क पर जाते हुए ना अक्सर आपने वो साइन बोर्ड पर लिखे वो देखा होगा, बोर्ड्स पर लिखे देखा होगा कि समर कर चलिए आपका घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है। तो मुझे ये पूछना था कि कौन इंतज़ार कर रहा है। अगर ये आप बता देंगे ना तो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन कम होगी। कई बार क्या होता है कि इसी बात के चक्कर में ना लोग ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं और फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो आप बता दीजिए कौन इंतज़ार कर रहे हैं तो और खुशी खुशी जाएंगे। या हो सकता है कि कई बार उन्हें ना पहुँचना हो जल्दी, तो वो जान जाएंगे तो उसी हिसाब से जाएंगे ना। ठीक है, और अब आप मुझसे अगर ये कह रहे हैं कि आपका साथ धूप में छांव है और आपका साथ समंदर में नाव है और आपका साथ जो है वो अंधकार में प्रकाश है, तो मैं आपको बता दूं ना ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जाने का वक्त हो चुका है। क्योंकि अगला शो आपके लिए लेकर आने वाले हैं जल्दी, अगली RJ जो आएंगी वो लेकर आएंगी, बबीता आएंगी आपके लिए शो लेकर, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। फिलहाल चलते चलते आपके लिए एक बेहतरीन सा ट्रैक चलाकर जा रही हूँ। आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR शालिनी के साथ, और इसके साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया अपना बेहतरीन समय हमें देने के लिए। फिलहाल कोई भी फीडबैक आप हमें देना चाहें शो से रिलेटेड या किसी और भी शो से रिलेटेड, तो आप हमें दे सकते हैं 9868107070 पर। ठीक है, ख्याल रखें, तो गाना सुनी चाहिए।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में कई ऊर्जा का संचार किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहा, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टीलिथ फ्रेगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश की रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के तटीय और घाटी क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है। पालघड़, रायगढ़ और नासिक तथा पुणे के घाटी क्षेत्रों के लिए मंगलवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है। और खेलों में भारत ने अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। दिल के तराने, गाने नए पुराने और नए गाने पुरानों के साथ, यानी कि नए और पुराने गीतों के साथ। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। तो शुरुआत होती है प्रोग्राम,
2: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

हाँ भाई, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग तरह के मौसम ना आए तब तक कैसे गुजारा चलेगा। और ऐसे ही मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे बरसात भी अब आने को तैयार है। और वैसे भी आप देखेंगे कल के मौसम ने क्या किया है रंग। हाँ, बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही है, समझ ही नहीं आया लोगों को कि क्या होने वाला है। बस ऐसा ही कुछ मौसम बनने वाला है आज का भी। तो अपने अपने घरों से जब भी आप निकलें तो छाता लेकर निकलें, और अगर रेनकोट है आपके पास तो रेनकोट लेकर निकलें, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त बरस सकता है और आपको थोड़ी सी ठंडक और थोड़ी राहत दे सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 32-28 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर है 162 के लगभग, AQI दिल्ली NCR का बना हुआ है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं भाई, मौसम का बदलने का इंतजार और थोड़ी सी ठंडक का भी इंतजार। हल्की फुल्की बारिश से थोड़ी से मौसम में बदलाव होगा और जरूर से मौसम हसीन होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अगले गाने को भी आपके सामने पेश करते हैं और रेट्रो सॉन्ग जरूर सुनिएगा। आज का स्पेशल है अनिल विश्वास जी के गानों का।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। इस समय समय हो चला है एक रेट्रो सॉन्ग का, और आज जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनिल बिस्वास जी की जयंती है, तो क्यों ना उन्हीं के गाने आज आपको सुनाए जाए। 1935 से लेकर के 1965 तक के सक्रिय भूमिकाओं में अपने बॉलीवुड में रहे हैं। औरत, किस्मत, अनपढ़ और छोटी छोटी बातें जैसी अच्छी अच्छी फिल्मों के गीत इन्होंने दिए हैं। और लोकप्रिय गीतों में की ये भी बात कहें तो दिल जलता है तो जलने दे, सीने से सुलगते हैं अरमा और दूर पपीहा बोला जैसे सदाबहार गीत उन्होंने रचे। तो अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो उस समय का एंथम कहा जा सकता है। जी हाँ, एक ज़बरदस्त जोश और जुनून के साथ ये गाना उस समय बहुत प्रचलित हुआ था। चलिए आपको सुनाती हूँ ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, एक और रेट्रो सॉन्ग का समय है। और रेट्रो सॉन्ग में चार दिल चार राहें मूवी से, चार दिल चार राहें मूवी से मैं आपको गाना सुनाने जा रही हूँ। और अनिल विश्वास जी ने कंपोज किए हैं इन सॉन्ग्स को, जो मैं आज आपको रेट्रो सॉन्ग सुना रही हूँ। अनिल विश्वास जी हिंदी सिनेमा के महानतम संगीतकारों में से एक हैं। उन्हें हिंदी फिल्म संगीत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। और पहले संगीतकार थे और बहुत से उन्होंने वो ऐसे एक पहले संगीतकार थे जिन्होंने फिल्मों में फुल ऑर्केस्ट्रा, कोरस और काउंटर मेलोडी का बहुत ही एक्सप्रेसिव ढंग से यूज़ किया था। तो चलिए अब जो मैं गाना आपको सुनाने वाली हूँ, इन्जॉय कीजिए इसे।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और एक नायाब सा गाना आप सभी लोगों के लिए रेट्रो से लेके आ रहे हैं, अनिल बिस्वास जी का म्यूजिक। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

एक तरफ बिछड़ने का गम और एक तरफ दूसरी तरफ मिलने का खुशी। जी हाँ, मिलने की खुशी उनके साथ जिनकी आप आवाज़ सुनना चाहते हैं, बिछड़ने का गम हमारे साथ, क्योंकि अभी अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगले कार्यक्रमों में आपके साथ कौन कौन रहने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला कार्यक्रम 10 बजे होगा, जिसका नाम है वेस्टर्न म्यूजिक का बंच, मैचलेस म्यूजिक आर। उत्कर्ष होंगे आपके साथ, इसके साथ ही बबीता त्रिपाठी होंगी आपके साथ बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर। प्रोग्राम और बॉलीवुड अपडेट्स आपको सब मिलेगा, इसमें सारी बातें बॉलीवुड से आप सुन सकते हैं 11 बजे। और 12 बजे फिर उत्कर्ष आपके साथ होंगे, प्रोग्राम होगा प्ले इट कूल, वेस्टर्न म्यूजिक बना रहेगा आपके साथ। और 1 बजे फिर से होगा प्रोग्राम जिसका नाम होगा रेनबो हेल्पलाइन, और बबीता त्रिपाठी होंगी आपके साथ। वुमेन लीगल राइट्स एट द वर्क प्लेस एंड होम, इस पर आज होगी बात। एक्सपर्ट श्री रमेश चंद्र एडवोकेट दिल्ली हाईकोर्ट से होंगे। और 2 बजे प्रोग्राम होगा, आशियाना रश्मि गुप्ता होंगी आपके साथ वुमेन स्पेशल लेकर के, गीतांजलि सोनी। अगले कार्यक्रम में 3 बजे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम, टॉपिक फ्लैट फुट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार होंगे आपके, प्रोस्थेटिक्स हैं ये। और 4 बजे प्रोग्राम रश्मि गुप्ता लेकर आएंगी अल्फा जैन। 5 बजे प्रोग्राम होगा सिटी लाइट, सिटी की हलचल, ट्रैफिक अपडेट्स, बहुत सारी बातें क्या होंगी खास आप जानेंगे इस कार्यक्रम में। 6 बजे प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स भारती डैंग के साथ। और फिर 7 बजे प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूजिक यू आस्क फॉर इट, लिपिका दास होंगी आपके साथ, भारती डैंग एक बार फिर से 8 बजे आपके साथ होंगी म्यूजिक मस्ती लेकर। और 9 बजे ताहिर हसन होंगे आपकी याद आती रही प्रोग्राम में। 10 बजे प्रोग्राम होगा वेस्टर्न म्यूजिक, म्यूजिक मिक्स हिट्स सॉन्ग्स आपके साथ फ्रॉम डिफरेंट जेनरे आप लोगों के लिए। और 11 बजे ताहिर हसन न्यू हेडलाइन टू बी के साथ हर घंटे आपको जैसा न्यूज मिलता रहेगा। और साथ ही साथ 11 बजे ताहिर हसन होंगे

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू आर ट्यून्ड इन टू मैचलेस म्यूजिका विद उत्कर्ष शरण, ब्रिंगिंग यू हिट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो लेट्स बिगिन विद समथिंग एप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइम। रेनड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड बाय बीजे थॉमस।

0: freedom. Let us help you settle back into the routine of the day with a teeny tiny little break. But we'll be back, so stay tuned.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: It is time for our first Hindi song of the hour. And seeing as the monsoon is just rolling in, here's Chura Lena Tumko Ye Mausam Suhana from the movie Dil Hi Toh Hai, sung by Mukesh and Suman Kalyanpur, with lyrics by Sahir Ludhianvi and music by Roshan.

0: Feeling lightheaded, despite the cool weather? A song might sweep you off your feet sometimes. So steady yourself as we return from a very short break very, very soon.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
0: फॉर दोस जस्ट ट्यूनिंग इन, this is 102.6 Akashwani Rainbow's Matchless Music Hour, and it's time for the second Hindi song of the hour with Ruk Jana O Jana from the movie Warrant, sung by Kishore Kumar with lyrics by Anand Bakshi and music by R.D. Burman.

0: Talking to your loved ones for support can do wonders for the psyche, as can a little break every now and then. And while you can talk to us all you want on our program, Play It Cool at 12, allow us the last break of this hour, and we will be right back.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी से सुनने से ना पता चलता है कि लाइफ कितनी बिंदास है। जरा रेनबो स्विच तो करो। यस, ऑलरेडी हमारी लाइफ बहुत बिंदास है अगर हम देखें तो। हम कितने मायनों में लकी हैं, लेकिन क्या करें, रेनबो स्विच नहीं करते। अब रेडियो स्विच ऑन कर ही लिया है आपने, आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़ ही गए हैं, तो आपको तो बिल्कुल पता होगा कि आपकी लाइफ कितनी बिंदास है, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो के साथ दिल से दिल तक आप कनेक्टेड रहते हैं, और जहां दिल की बातें होती हैं वहां पर तो लाइफ बिंदास होनी ही है। फिलहाल आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी। आकाशवाणी रेनबो के साथ शो शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्रेल्स यानी बीटी विद बीटी। बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स के लिए तैयार है ना?

नाम रब्दा नाम साइका लेके शुरू हो चुका है बीटी विद बीटी यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, और बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचने के लिए हैं बिल्कुल रेडी, और मैं हूं एकदम पहुंचाने के लिए तैयार। तो आप सब हैं तैयार या नहीं? नहीं तैयार है तो भी कोई आपको बाबू शोना नहीं बनना है पाउडर शाउडर लगा के नहा धो के, आपको बस जो आप कर रहे हैं वैसे ही बिंदास करते रहिए, इंजॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो, बस कानों को थोड़ा इधर ही रखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके लिए 11:30 बजे एक सवाल जो आता है जिसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए टाइप करके देना है, और फिर क्या होगा अगर जवाब सही होगा और आपका लक भी एकदम सही चल जाएगा तो क्या पता बॉलीवुड सरताज आज के आप ही बने, और अगर बॉलीवुड सरताज बन गए तो हमसे बात करने का मौका मिलेगा। और हाँ, अगर बॉलीवुड सरताज नहीं बने तो भी आपके लिए कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपका नाम और आपके शहर का नाम बताएंगे ज़रूर, क्योंकि आपने शो में शामिल होकर हमारे ऊपर हमारे लिए खुशियों की बरसात जो की है। तो चलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों के बाद से ही निकल कर आएगा वो सवाल और उसका जवाब आपको देना है। फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं एफर्ट लगाने हैं, व्हाट्सएप मैसेज ही तो करना है बस थोड़ी देर में। सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, बोले तो बीटी विद बीटी ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो।

देखिए जी, अगर आपने ठुमका लगा लिया हो तो अब आपको कमरिया हिलाने की बारी आ गई है। आप सब कमरिया हिलाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि राजकुमार राव की बात करने वाली हूँ। और राजकुमार राव थ्री फिल्म से ही नहीं जानने जाते, अब तो एक उनकी जो अपकमिंग फिल्म है उसके लिए काफ़ी चर्चा में है। और अभी तो हम देखने के लिए एकदम बेताब हैं कि वो इस रोल में आखिर लग कैसे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो दादा का रोल कर रहे हैं। दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी को लेकर आ रहे हैं वो, यानी सौरभ गांगुली की जो बायोपिक बन रही है उसमें वो दादा का कैरेक्टर यानी सौरभ गांगुली का कैरेक्टर निभा रहे हैं। और ये बात हम सब के लिए बिल्कुल नई है और एकदम बेहतरीन है। पता है क्यों? क्योंकि राजकुमार जब भी कोई रोल करते हैं उसमें बुरी तरह से, मतलब पूरी तरीके से, बुरी तरह से नहीं कह सकते, पूरी तरीके से ढल जाते हैं। और ऐसे में सौरभ गांगुली का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से पर्दे पर उतारेंगे वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिसको हम जानते रहते हैं ना, उसका कैरेक्टर दिखाना, उसका एक एक हाव भाव पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें वो कितना बढ़िया तरीके से इस कैरेक्टर को निभाएंगे, आई एम श्योर बहुत ज़बरदस्त करेंगे, क्योंकि कमाल के एक्टर हैं वो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार है अभी। और फिलहाल आपको बता दूँ, 8 जुलाई यानी कल जब सौरभ गांगुली का जन्मदिन होगा तो ऐसे में इनकी पहली झलक देखने को मिलेगी, मूवी नहीं, पहली झलक। और अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनका जो पहला लुक है वो इसी दिन यानी कल शुरू होने वाला है, देखने को मिलने वाला है। और दिलचस्प होगा कि आखिर इस लुक में किस तरह से हमारे राजकुमार राव छाने वाले हैं, दिखने वाले हैं। और अब हमारी नज़रें 8 जुलाई पर एकदम टिक गई हैं आपकी, आप भी बताइए। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ कमरिया हिलाने की बारी आ गई है।

तो कमरिया भी हिला ली और नजरिया भी दिल के थ्रू मिला ली। और अब बारी आप सबके लिए बहुत सारी और खबरों की, क्योंकि आप सुन रहे हैं बॉलीवुड रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। और आपको बताया, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, पता है क्यों? क्योंकि इन्हीं बातों में से एक सवाल आपके लिए 11:30 बजे आएगा और इसका जवाब देकर आपको बनना है बॉलीवुड सरताज। बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना, तो बस मेरी बातों को मिस मत करिएगा और ऐसे ही इंजॉय करते रहिएगा। इंजॉय करने में कोई कमी नहीं छोड़िएगा। और आपको बता दूं कि 22 साल बाद एक अक्षय कुमार की मूवी आने वाली है, जिसमें ना वैसा ही कुछ रोल तो नहीं करेंगे लेकिन नाम वो रखने वाले हैं, क्योंकि ये जो टाइटल है ना वो बता रहा है कि 22 साल पहले इस नाम से वो एक फिल्म में आ चुके हैं और उस फिल्म का नाम मुझसे शादी करोगी, और ये गाना है वैसे और इसी तरह से नाम भी है मुझसे शादी करोगी। 22 साल पुराने रोल में वो सनी के रोल में थे इस मूवी में। और अभी एक और मूवी आने वाली है जिसकी खबरें मुझ तक पहुंच गई हैं उड़ती उड़ती, और वो है अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी और उनके साथ होंगे प्रियदर्शन, इनके साथ उनकी होगी 9वीं मूवी। कमाल की बात है, क्या जोड़ी है इन दोनों की। और ये जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। तो आपको बता दूं कि इस मूवी में, इस जोड़ी में क्या कमाल करने वाली है ये जोड़ी, और इस मूवी में क्या कमाल करने वाली है ये जोड़ी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखने वाली बात ये है कि मुझसे शादी करोगी मूवी में सनी के रोल में थे वो अक्षय कुमार, और जो आने वाली मूवी है ना उसमें भी उनका नाम सनी ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम है विकेड सनी। यस, विकेड सनी फिल्म का नाम है, और इससे हमें एकदम क्लियर हो गया है कि अक्षय कुमार का नाम इस मूवी में सनी होगा। नाम कुछ भी रख लीजिए, हमें तो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी से मतलब है, जो आती है तो कमाल कर जाती है। और जानते हैं ये मूवी 2026 में बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, बनेगी, जब भी डेट आएगी आपको बता देंगे। इतनी भी क्या जल्दी है, फिलहाल तो अभी उनकी मूवी हैवान यानी प्रियदर्शन की मूवी हैवान आने वाली है जो 11 सितंबर को आएगी, उसको एंजॉय कीजिएगा।

नई नई अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, नई नई फिल्में आ रही हैं, हमारे स्टार्स काफ़ी दिनों बाद जोड़ियां बना रहे हैं किसी न किसी के साथ, कहीं एक्टर एक्ट्रेसेस तो कहीं डायरेक्टर के साथ। फिलहाल एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर लेती हूँ, और डायरेक्टर की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब ये तब्बू की खबर आ रही है कि वो नागार्जुन के साथ एक मूवी लेकर आने वाली हैं 28 साल बाद। 28 साल बाद एक साथ दोनों पर्दे पर नजर आएंगे, और फिल्म का नाम जो होगा वो होगा, एक्साइटमेंट जो है वो फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा होगी। पता है क्यों? क्योंकि ये जोड़ी हिट रही थी तब्बू और नागार्जुन की, और अभी 28 साल बाद एक साथ जब देखेंगे तो बात तो कुछ होगी। किंग 100 ये है मूवी का नाम, और उससे बड़ी बात ये कि विलन के रूप में दिखेंगी तब्बू। वैसे अब तब्बू काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट्स वैसे भी कर रही हैं अपनी फिल्मों में, और बहुत सारे नेगेटिव रोल्स वो निभा चुकी हैं, और उनमें से एक मूवी थी अंधाधुन जो मैंने देखी और बड़ी अच्छी लगी मुझे। क्या ज़बरदस्त रोल करती हैं, क्या ज़बरदस्त निखार आया है उनकी एक्टिंग में, दिन ब दिन आता ही जा रहा है, और फिल्में भी एक से बढ़कर एक। तो फिलहाल तो अनाउंसमेंट हुई है फिल्म आएगी, उसके बारे में जो अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचती जाएंगी। बस आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक पर। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी, सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स, बोले तो बीटी विद बीटी चल रहा है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट कर रहा हूँ। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

बस थोड़ी देर बाकी है जब आपके लिए सवाल आने वाला है। आपने मेरी बातों को एकदम इग्नोर नहीं किया, बहुत ध्यान से सुना है, जवाब बहुत आसानी से देख पाएंगे। बस थोड़ी देर का इंतजार और लौट कर आती हूँ मैं बबीता त्रिपाठी। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

ये क्या हो गया, टाइम थोड़ा सा आगे जा रहा है और आपका इंतजार बढ़ता जा रहा है और हम लौट कर नहीं आ रहे हैं। मैंने सोचा गाने को थोड़ा इंजॉय करने देती हूँ, और आपने जब इंजॉय कर लिया पूरा गाना तो हमने कहा अब आपके लिए सवाल लेकर आती हूँ, उसको भी आप इंजॉय करने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि सवाल हमेशा की तरह एकदम आसान सा है और इसका जवाब देकर आपके लिए बड़ी बड़ी सौगात मिलने वाली है। क्या आपको मौका मिल सकता है हमसे बात करने का? और उसके लिए आपको बनना पड़ेगा बॉलीवुड सरताज, और बॉलीवुड सरताज कोई भी रैंडमली चुन लिया जाएगा, और अगर नहीं भी बने तो आपका नाम तो शामिल होगा ही, इतने सारे फायदे। तो चलिए आपको बता भी देती हूँ कि सवाल क्या है, जिसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आंसर लिखेंगे तो गारंटीड आपका नाम जरूर शामिल होगा, भले ही आप बॉलीवुड सरताज ना बन पाए, क्योंकि सरताज तो एक ही बनेगा, आज के दिन हर दिन एक बनता है, तो क्या पता आज नहीं तो कल आपका मौका आ ही जाए। फिलहाल प्रियदर्शन संग आने वाली अक्षय कुमार की मूवी का नाम क्या है, ये है आज का सवाल। प्रियदर्शन संग आने वाली अक्षय कुमार की मूवी का नाम क्या है, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब आपको उस मूवी का नाम बताना है, उससे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर बताना है और भेज देना है 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके, 9868107070। ये है आज का सवाल।

देखिए जी, बहुत ज्यादा जोरों से तो नहीं लगा, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत आसान सा सवाल पूछा है और ये कोई झटका नहीं है, ये तो आपके लिए आनंद ही आनंद है, क्योंकि इसका जवाब देने के बाद आपका नाम भी शामिल होगा और क्या पता बॉलीवुड से ताज आज आप ही हो, हमसे बात करने का मौका मिले। फिलहाल सवाल तो मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, रिपीट बाद में करूंगी। आपको बता दूं आज जन्मदिन किसका है, आपने ऑलरेडी बता दिया है, कई लोगों का मैसेज आ चुका है, फिलहाल मैं उन मैसेजेस नहीं ढूंढूंगी, फिलहाल आपको बता देती हूँ कैलाश खेर का आज बर्थडे है, जो बहुत ही बढ़िया सिंगर है, हम सब जानते हैं, हम सब के दिलो दिमाग में बसते हैं और उनकी आवाज़ यूनिक है, हम जब भी सुनते हैं अलग से पहचान जाते हैं कि कैलाश खेर गा रहे हैं। और ये जब आए थे तो शुरुआत में मुंबई में उन्होंने काफ़ी जिंगल्स गाए थे, फिल्मों में तो इतनी जल्दी चांस नहीं मिलता है, लेकिन जिंगल्स से इन्होंने शुरुआत की और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए इन्होंने ये जिंगल्स गाए। और उसके बाद जब इनको मौका मिला तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि क्या ज़बरदस्त दमखम रखते हैं, अपनी आवाज़ के दम पर उन्होंने अपनी अलग पहचान एक एक गाने से ही जो इनको मौका मिला वहाँ बनाते चले गए। रब्बा इश्क न हुए मूवी अंदाज, जब इस मूवी में इनका गाना सुना गया ना, तो पता चल गया लोगों को कि यस कुछ तो बात है और ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है। और उसके बाद अल्लाह के बंदे सुन लीजिए, उसके बाद मंगल पांडे का गाना सुन लीजिए, या फिर कॉरपोरेट का ओ सिकंदर सुन लीजिए, तेरी दीवानी सुन लीजिए, जो इनकी जो एल्बम है डेब्यू एल्बम कैलाशा उससे है, सलाम इश्क मूवी से या रब्बा सुन लीजिए, तमाम ऐसे गाने हैं। बाहुबली में भी इन्होंने

देखिए आपको तो बहुत अच्छी से तरीके से समझ में आ गया कि सवाल क्या है, लेकिन जवाब क्यों नहीं समझ में आया ये मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा बहुत कम होता है और ज़्यादातर लोगों को जवाब आता है। और मेरी आदत क्या पड़ गई है कि आप सब बिल्कुल सही जवाब हर बार सभी लोग देते हैं, लेकिन इस बार आपने बहुत सारे तुक्के मारे हैं, क्योंकि आपको पता है ना अक्षय कुमार की ढेर सारी मूवीज़ हैं, किसी का भी नाम ले लो क्या चलता है। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी की बात हुई थी, तो उनकी जोड़ी में से कोई भी मूवी ले लो, क्या पता कुछ ऐसा ही आ रहा हो।

सवाल पूछा था प्रियदर्शन संग आने वाली अक्षय कुमार की मूवी का नाम क्या है, और ज़्यादातर वैसे सही जवाब है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ध्यान से मुझे सुन रहे हैं और उन्होंने जवाब दिया है। और शुरुआत हो रही है, सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं सही जवाब, तरुण कोहली सूरज कुंड से लिख रहे हैं नहीं सही जवाब, सलीम मलिक ने नहीं लिखा है, शुरुआत तो गलत जवाब से ही हुई है, लेकिन हाँ तरुण कोहली और सलीम मलिक मिले हुए लग रहे हैं, सेम जवाब लिखा है। उसके बाद बठिंडा से मैसेज आया है सही जवाब जसप्रीत सिंह का, जसप्रीत सिंह ने शुरुआत की सही जवाब के साथ। उसके बाद रवि जोशी सही जवाब लिख रहे हैं, कान्हा मेरठ से लिख रहे हैं, लक्ष्मी दिल्ली से लिख रही हैं, और ईशा धर्मशाला से लिख रही हैं हरीश कौर मेरठ से, और राजकुमार की संतानी महाराष्ट्र से। ज़्यादातर सही जवाब हैं दानिश कतौली से। और नेक्स्ट मैसेज है उमेश कुमार का, दो जवाब अपने क्यों लिखे, कोई भी सही लगा लीजिए, ऐसा वाला है शायद, धर्मशाला से, ये नहीं, मिसेस धर्म भाटिया लिख रही हैं रोहतक से, और सुकलाल बाला वेस्ट बंगाल से, और नेक्स्ट मैसेज ईशा का, और ये भी सही जवाब है, कहाँ से लिख रही नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्होंने अपने शहर का नाम अपना नाम सबसे पहले नहीं लिखा, पहले आंसर लिख दिया, तो मेरा कंप्यूटर तो शुरुआत की चीज़ें दिखाता है। इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्तिनगर से, और बसंत तोमर मेरठ से लिख रहे हैं, और संजय खत्री महाराष्ट्र से, ऋत्विक चौहान जम्मू से, और प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, सृष्टि पटना से लिख रही हैं, विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप से, मोहम्मद फुरकान सियाल मेरठ से, नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से, और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज कार्ड से मोहम्मद फुरकान का दिख रहा है, और राज बठिंडा से लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी अनीता मुखी भी लिख रही हैं दिल्ली से, और ऋषु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से। इतने सारे मैसेजेस और ज़्यादातर सही जवाब, थैंक यू सो मच, ढूंढ कर लाती हूँ आज का बॉलीवुड सरताज। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ।

0: तो जी चलिए, आपके लिए जो आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। आपके लिए आज का बॉलीवुड सरताज हाजिर है। कौन है आज का बॉलीवुड सरताज? खुद अपना नाम बताएंगे या बताएंगी, आप सुनकर बताइए। हेलो,
1: हेलो,
0: कौन बोल रही हैं आप?
1: लक्ष्मी नाम है मेरा।
0: लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। कहाँ से बोल रही हैं?
1: दिल्ली से बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो लक्ष्मी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैंने सवाल पूछा था कि आने वाली मूवी जो अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी आ रही है, उस मूवी का नाम क्या है?
1: विकेट सनी।
0: विकेट सनी, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आप बन गई हैं बॉलीवुड सरताज। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो लक्ष्मी, मैंने आपका नाम बहुत रेयर देखा है, मुझे लगता है पहली बार देखा है, क्या ये बात सही है?
1: जी जी जी
0: ऐसा
1: हम
0: क्यों?
1: सुनते हैं, रोज ही है आपका शो, लेकिन आज फर्स्ट टाइम जैसे ही आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, फोन पास में पड़ा था और फटाफट भेज दिया। पहली बार कभी हुआ है कि आपने कुछ रिप्लाई किया हो।
0: अरे वाह, क्या बात है। और देखिए, पहली आपके पास रिप्लाई का देर था और हम वेट कर रहे थे, आप जिस दिन कॉल करेंगे रिप्लाई करेंगे और आपको कॉल पहुंच जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है लक्ष्मी?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: आपके नाम में बड़ा आप बड़ी पॉजिटिविटी छुपी हुई है ना?
1: अगर आप कहते हैं तो बिल्कुल होगा।
0: तो अपना नाम आपको पसंद है?
1: जी बिल्कुल,
0: हाँ, पसंद होना चाहिए। क्या करती हैं लक्ष्मी?
1: हाउसवाइफ।
0: यानी घर की लक्ष्मी है।
1: जी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल आप काम कर रही थी और साथ में रेडियो भी सुन रही थी, कितना सुनती हैं रेडियो?
1: मोस्टली सारे टाइम ही लगे चलता रहता है रेडियो।
0: और आपको काम करने में मतलब मजा आता है फिर आप रेडियो के साथ?
1: हाँ, गानों के साथ काम करने में बहुत एकदम लिंक बन जाता है ना, सिंक पर रहता है काम।
0: हाँ, और काम का पता नहीं चलता है ना।
1: हाँ
0: चलिए, इसी तरह से खुश रहिए और आकाशवाणी रेनबो के साथ दिल से दिल तक जुड़े रहिए, है ना?
1: जी।
0: ओके, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय बाय।
1: बाय।
0: तो ये थी लक्ष्मी आज की बॉलीवुड सरताज, और आप भी बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, बस ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक जुड़े रहिए, सवाल का जवाब देते रहिए और सुनते रहिए। अभी 1 बजे आपके लिए क्या सुनने के लिए आएगा? बहुत कुछ आएगा, और हर बार की तरह रेनबो हेल्पलाइन में मैं लेकर आऊंगी एक टॉपिक जिस पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। अपने सवालों के साथ रेडी रहिएगा। आज बात होगी विमेंस लीगल राइट्स एट द वर्क प्लेस एंड होम। एक्सपर्ट श्री रमेश चंद, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसको सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू आर ट्यून्ड इन टू प्ले इट कूल विथ उत्कर्ष शरण। And before we begin this day's chatting, let's begin our musical cruise with the banjo song by Mumford & Sons.

0: I'm sure many of you have gone out exploring and touring in the rainy season. So, tell us all about your experience at 9868107070 on WhatsApp while we take a very short break.
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
8: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
0: इफ यू क्रेव द माउंटेन एक्सपीरियंस, अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट वुड बी द टाउन ऑफ लैंडोर। ऑल्दो डिस्टेंट एट ओवर 300 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, एज वेल एज हार्डर टू रीच, it offers stunning views of mountains and evergreen forests that look especially incredible after the rains. Next up, Heaven Butterflies by Jacob Lundberg.

आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: For those just tuning in, this is 102.6 Akashwani Rainbows, Play It Cool. And we're talking about places to see in and around the NCR this monsoon. But before we continue, let's listen to Palomena by Phineas.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।

0: निश्चित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: और ये है आकाशवाणी रेनबो, और शो है रेनबो हेल्पलाइन, और रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, खासकर औरतों के लिए, तो उनके अधिकारों को लेकर बात होगी, कार्यस्थल पर या फिर उनके घर पर। उनके बहुत सारे अधिकार हैं जिनके बारे में शायद उनको पता ही नहीं है। तो आज रेनबो हेल्पलाइन में बात होगी वुमेन्स लीगल राइट्स एट द वर्क प्लेस एंड होम, और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं रमेश चंद जी, जो कि हैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। तो आज आप सब के ढेर सारे सवालों का जवाब देने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं, और फिलहाल उनका स्वागत करते हैं। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: तो चलिए, इनके साथ ढेर सारी बातें करने के लिए हम सब तैयार हैं। आप सब अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए, और सवाल भेजने के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2342108080 या 2342108484। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं 9868107070, 9868107070। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल लिख भेजना है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं, इनको जानने समझने और इनसे संबंधित ढेर सारे सवालों के लिए आप सब हो जाइए तैयार। और ये गाना हमारे एक्सपर्ट रमेश जी की पसंद का ही, और आज तो शो में सारे के सारे गाने उन्हीं के पसंद के बजने वाले हैं। एंजॉय द शो।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

यह है आकाशवाणी रेनबो शो, चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी और आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात हो रही है। कार्यस्थल हो, घर हो, महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है। उनके कानूनी अधिकार बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि महिलाएं अवेयर नहीं होती हैं, और कुछ अपडेट हुआ है तो भी अवेयर नहीं होती हैं। और इसको ध्यान में रखकर हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं ताकि सब में जागरूकता हो, और ख़ास तौर पर महिलाओं की जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जागरूक होंगी अपने लीगल राइट्स के प्रति तो अपने आप वो सुरक्षित महसूस करेंगी, और ना सिर्फ सुरक्षित महसूस करेंगी बल्कि अपने कानूनी अधिकारों का पूरी तरीके से लाभ भी उठा पाएंगी। तो ये जो टॉपिक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस घंटे हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाएँ, क्योंकि ये जो महिलाएँ हैं ना, हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो हमारे एक्सपर्ट रमेश चंद जो एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो आ चुके हैं। उनकी उन्होंने आपसे वादा किया है, मुझसे एक्चुअली मेरे थ्रू, कि आपके सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देंगे। फिलहाल मैं रेडी हूँ, आप सब अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए, और अगर जल्दी से जल्दी कॉल मिलाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपके लिए नंबर है 9868107070, और कॉल करने के लिए 2342108।

0: एंड 2342-1084। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल सवाल हमारे रमेश जी से, और सवाल ये है कि घर हो या वर्क प्लेस हो, बहुत ज़रूरी हो जाता है सुरक्षा, आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, और इस प्रश्न से तो महसूस होता है कि जो महिलाएं हैं वो ना तो वर्क प्लेस पे सुरक्षित हैं और ना ही घर पे। अगर घर पे अगर उसको देखते ही जो खुशहाली आती है परिवार को, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा देखने में बहुत कम मिला है। वर्क प्लेस पे भी हमने देखा है कि कुछ महिलाएं हैं उनके साथ में एक्सप्लाइटेशन काम के बहाने से किया जाता है, और मैंने मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि जो बॉसेस होते हैं वो उनको इतना ओवरलोड कर देते हैं या फिर अनवांटेड टॉपिक या अनवांटेड वर्क उनको दे देते हैं, जिससे वो टारगेट जो उनका अचीव नहीं हो पाता। तो मैंने देखा कि इतना एक्सप्लाइटेशन से कहीं कहीं पे उन्होंने सुसाइड भी कमिट किए हैं, जिनकी इंक्वायरी

0: इंक्वायरियों में क्या होता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां जो होती हैं, हर आदमी अपने आदमी को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज, अगर मान लीजिए बिल्कुल गंदी हो जाती हैं, गंदी का मतलब कि स्टेबल नहीं रह पाती, और जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक लड़की थी हमारे यहाँ काम करती थी, शी वॉज फ्रॉम दी डाउन ट्रोडन कम्युनिटी एंड वेयर एज द मैन वॉज वर्किंग फ्रॉम दी ब्राह्मीन कम्युनिटी, आई शुड नॉट से, बट बॉय वॉज वेरी नाइस एंड शी वॉज वर्किंग अंडर हिम, उनके अधीन में वो काम कर रही थी। कोई बात होगी, कोई मन मुटाव होगा काम से रिलेटेड, तो कंप्लेंट की उनके अगेंस्ट में, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ तक पहुंची, तो वहाँ उनका डाइवोर्स हुआ एंड लेटर ऑन शी कमिटेड सुसाइड। तो ये जो चीज़ें आती हैं, इसको कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसको सॉर्ट आउट फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग में ही कर लेना चाहिए। उसको जितना लिंगर ऑन करोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
1: ओके,
0: तो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन घर के अंदर भी होती है, परिवार के अंदर भी होती है। किसी इशू को इतना लंबा नहीं बना देना चाहिए कि दोनों के जो ईगो है वो हर्ट हो। बेहतरीन यह कि ऐसी सिचुएशन पे दोनों को कंप्रोमाइज करके चलना चाहिए। अगर मान लीजिए उस फैमिली में अगर छोटे बच्चे हैं और वो जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो उनके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, उनका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता और फिर वो उस वातावरण से अलग वो निकल जाते हैं। तो बेहतरीन यह है कि घर पे हो चाहे बाहर हो, हमेशा अपने रिलेशनशिप मेलोडियस होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए और किसी को डैमेजिंग करने वाले नहीं होने चाहिए।
1: सर, किस तरह की असुरक्षा है जिसका महिलाओं को सामना करना पड़ता है आमतौर पर आपके पास जो केसेस आते हैं?
0: एक्चुअली मैंने देखा है कि डोमेस्टिक के अंदर फिनेंशियल से रिलेटेड होती हैं। अगर महिला को अगर पूरा खाना, अगर मान लीजिए वो हाउस वाइफ है, अगर पूरा खर्चा अगर उसको नहीं मिल रहा तो सर्टेनली वो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, हाउ शी कैन फुलफिल। तो ऐसे मामले के अंदर महिलाओं का पूरा फिनेंशियल हेल्प होना चाहिए। अगर मान लीजिए उनका हस्बैंड ही अगर रिटायर्ड आदमी हो और उनसे एक्सपेक्ट करें कि भैया पूरा खर्चा चलाओ, अब आपको रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलता है, आपके खर्चे हैं वो कितने हैं, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। तो उसमें क्या है, महिलाओं के साथ में कभी जैसे मार्केट के अंदर से जैसे सब्जी वगैरह लेनी हो तो उसके जो रेट्स वगैरह हैं फ्लैक्चुएट कर जाते हैं, तो बजट से बाहर जाने पे क्या होता है कि परिवार के अंदर एक प्रकार की कलह शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये हो हस्बैंड की भी और उनकी वाइफ की भी कि ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो और स्मूथली अपना घर को चलाते रहें तो अच्छा है।
1: यानी बजट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। और अगर ऑफिस की बात करें
0: तो ऑफिस के अंदर भी काम से रिलेटेड होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा सबऑर्डिनेट थे, लेट आते थे, एक दिन पूछ लिया, कंप्लेंट हमारी बना के दे दी, अल्टीमेटली उस मैटर को फिर सॉर्ट आउट हुआ। तो ये सिचुएशन पैदा होती है और ये हालात जो होते हैं टाइम के हिसाब से वो पैदा करवाते हैं। तो बेहतरीन है कि हमें अपने आप को कूल भी रखना है, काम से रिलेटेड भी और फैमिली से रिलेटेड भी, और जहां कहीं पे भी निकलो बिल्कुल एकदम से अब नॉर्मल वे में निकलो, किसी को ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की नौबत नहीं आनी चाहिए। घर के अंदर जो भी बनेगा या ऑफिस में बनेगा प्रॉब्लम तो उसको फेस करनी पड़ेगी।
1: तो चलिए, जो सवाल है वो भी आने शुरू हो गए हैं, आप सबके सवाल अब मैं लेने शुरू करूंगी, मुझे लगता है मेरे सवालों की जरूरत नहीं है। और क्या क्या अधिकार हैं उनके घर पर, क्या क्या अधिकार हैं वर्क प्लेस पर, इसकी बात भी करेंगे और आप सबके सवालों का सिलसिला भी शुरू करेंगे। मुझे लगता है आपकी पसंद के बहुत सारे मेरे पास गाने जो आ चुके हैं उनको भी बजाना ज़रूरी है, और बहुत प्यारे प्यारे गाने आपने चूज़ किए हैं और मुझे लग रहा है कि इनको बजाना चाहिए। तो इस गाने से पहले मैं आप सबको कहूँगी कि अगर आपने अभी तक अपना सवाल हम तक नहीं पहुँचाया है, कोई भी क्वेरी है मन में, कोई भी आसपास आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जहाँ महिलाएँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो उनके प्रति क्या क्या कानूनी अधिकार हैं और किस कानूनी अधिकार का वो लाभ उठा सकती हैं,

ऐसा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप प्लीज़ पूछ डालिए 2342-1080 या 2342-1084 के बजाय 82 ये नंबर काम कर रहा है, इस पर कॉल करिएगा 2342-1080 या 2342-1082। और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर सेम है 9868107070 9868107070 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपना सवाल लिख भेजिए।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूं बबीता त्रिपाठी और आप सबके जो सवाल हैं वो ढेर सारे हम तक पहुंच गए हैं और आपने अभी तक सवाल नहीं किया है और दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या क्या अधिकार होने चाहिए, कार्यस्थल पर हो या घर पर। महिलाओं के जो कानूनी अधिकार हैं वो जानना ज़रूरी है। और अगर कहीं आप किसी तरह की सफरिंग देख रहे हैं, महिलाओं की सफरिंग देख रहे हैं और आपको लगता है कि क्या किया जा सकता है, तो भी आप के लिए ज़रूरी है कि आप जानें कि उनके लिए क्या कानूनी अधिकार बनाए गए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट रमेश चंद, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट है और वो आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कॉल नहीं किया है तो कॉल करिए 2342-1080 या 2342-1082 पर। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। आप सबके मैसेजेस की तरफ बढ़ें क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि घर पर या वर्क प्लेस पर, दोनों जगहों पर महिलाओं के जो ढेर सारे

0: कानूनी अधिकार हैं? मोटा मोटी तौर पर सर बताइए, बहुत सारे अधिकार हैं, अगर पॉसिबल हो कितने सारे अधिकार आप बता पाएंगे?
1: अधिकार तो बहुत हैं
0: जी,
1: पर लेकिन उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसका तरीका जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल।
1: और कोशिश ये हो कि जितना अगर हम पॉजिटिव चलेंगे उतना ही रिजल्ट हमें भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो वर्क प्लेस पे क्या होता है, कभी कभी अपना स्कोर फिट करने के लिए झूठी कंप्लेंट कर दी जाती है।
0: और ये सवाल आने शुरू हो गए हैं सर।
1: झूठी कंप्लेंट करनी शुरू कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है उसका, कि ना तो वो जो एम्प्लॉय है वो काम कर पाएगा, ना वो जो जिसने कंप्लेंट की है वो कर पाएगा। तो दोनों तरफ से यानी कि काम जो है ओवरऑल सफरिंग जो है वो एम्प्लॉयर को होती है। तो बेहतरीन है जो भी एम्प्लॉयर है वो ऐसी सिचुएशन को अराइज ना होने दे और कोशिश करे कि उसको बिठा के सॉर्ट आउट कर दे।
0: तो नहीं सर, अधिकार जो है उन पर हम चर्चा कर रहे थे कि घर पर हो या बाहर ऑफिस में हो, किस तरह के अधिकार उनके लिए हैं, जो मेन अधिकार हैं उन पर हम बात करना चाहेंगे ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि किस तरह के अधिकार हैं जो उनके लिए जानना जरूरी है।
1: देखिए, इसमें अधिकार जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार।
0: हाँ।
1: संवैधानिक अधिकार में आर्टिकल 14 है, उसमें क्या है, इक्वल वर्क इक्वल पे, और देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट क्रीड सेड सेक्स एटसेट्रा। तो मेन जो है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आर्टिकल 15 सिमिलर इसी से मिलता जुलता है, इसी तरीके से आर्टिकल 21। तो जीवन में क्या है, स्वतंत्रता जो है इंडिविजुअल की वो बहुत जरूरी है। फिर इसी प्रकार से प्राइवेसी, हर आदमी को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का राइट है। डिग्निटी, उसको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने का भी अधिकार है। फिर उसके तक राइट

लेवल की, वो बहुत जरूरी है। फिर इसी प्रकार से प्राइवेसी, हर आदमी को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का राइट है। डिग्निटी, उसको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने का भी अधिकार है। फिर उसके तक राइट और भी बहुत सारे आते हैं, पर बेहतरीन यह है कि जितना हो सके, मैं तो यही कहूंगा कि कंप्रोमाइज इज द बेस्ट वे।

तो चलिए ठीक है, अब आप सबके सवाल लगातार आते रहने चाहिए, इसी तरह से आप सबके सवाल लिए जाएंगे। आपके मन में कोई भी क्वेरी है आज के टॉपिक को लेकर तो फटाफट आप अपना सवाल भेज दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। विमेंस लीगल राइट्स एट द वर्क प्लेस एंड होम, आज इस टॉपिक पर बात हो रही है। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट रमेश चंद। आप सब अपने सवाल कैसे पूछेंगे, फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज

0: रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है आपके साथ, मैं हूं बबीता त्रिपाठी और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। तो आपको पता है कि हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं इस शो में और आप सबके सवालों का जवाब देते हैं किसी खास टॉपिक पर। और आज हम बात कर रहे हैं कार्यस्थल पर या घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं रमेश चंद जी, जो कि एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और आप सबके सवाल भी लगातार आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने सवाल नहीं पूछा है तो नंबर सुन लीजिए जिस पर आपको कॉल करना है, या व्हाट्सएप मैसेज के लिए भी एक नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, 2342108 या 2342108। इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। और आप सबके जो सवाल हैं वो भी काफ़ी आ गए हैं, तो चलिए एक एक करके उन सवालों को लेते हैं। फिलहाल तो लाइन पर कोई बने हुए हैं और अपने सवालों के साथ उनका सवाल सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम और वकील साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून
1: जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ
0: जी।
1: तो मेरे दो सवाल हैं और अगर आपको इतराज ना हो तो एक छोटा सा सजेशन भी है
0: जी।
1: तो पहले सवालों पे आता हूँ।
0: सवाल पूछिए।
1: हाँ जी, पहला सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए किसी लड़का लड़की लिए की शादी हुई, वो बात अलग है अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, पर किसी गलत फहमी से उनका तलाक करवा दिया गया, अब उनकी अलग अलग कहीं और शादी हो गई, अब फ्यूचर में वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो क्या मुमकिन है? इसमें कौन क्या कहता है, पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे वो फिल्म आई थी नगीना श्रीदेवी और बीबी वो तो ऐसी रेखा, तो यार महाभारत में मिलता है समझने को कि भीष्म पितामह अपने देश का भाई चाहते थे, विभीषण जी अपने देश का भाई चाहते थे, और जो वहाँ के सीनियर थे।
0: अपना अपना सवाल सवाल पर आइए, एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो रही है फिलहाल।
1: जी जी जी, वो है बहू है या वो शख्स है देशभक्त इंसान, वो क्या करे? इसमें हमारे आईपीसी में क्या कहा गया है ये बताए। और सजेशन प्लीज मेरा ये
0: सवाल अभी समझ नहीं आया आपका, सेकंड सवाल समझ में नहीं आया सर को।
1: सेकंड सवाल मेरा ये है कि जैसे कोई बहू है वो अपने भलाई चाहते हैं ससुराल का, पूरी कुटुंबदरी का, पूरी ज्वाइंट फैमिली का ही, पर जो वहाँ के सीनियर है उनको वो खल रही है, चुभ रही है, पिंच कर रही है, तो अब उसकी वजह से हर्ट हो रहा है उसको, तो बिचारी वो बहू क्या करे? या मतलब आईपीसी में क्या कहते हैं,
0: क्या कानूनी अधिकार है? चलिए ठीक है, आप सवाल का जवाब ले लीजिए क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। और सजेशन के लिए अभी हमारे पास हमारे एक्सपर्ट हैं, वो काफी कुछ सजेस्ट करके आपको जाएंगे। तो सर प्लीज बताइए।
2: इसके अंदर इन्होंने एक पहले क्वेश्चन किया था कि क्या वो दोबारा से उनके बीच में शादी हो सकती है?
0: हाँ
2: हाँ, बिल्कुल शादी हो सकती है, क्योंकि जब एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो दूसरी रीमैरिज जो है बिटवीन दोनों पार्टी आपस में कर सकती है, कोई
0: अच्छा।
2: दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि लॉ तो सेम है, सिमिलर हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके हिसाब से फिर इनकी मैरिज सेरेमनी

0: पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है तो मैं तो एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट में तो टाइम बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा भी एक्शन हो जाता है कभी कभी।
1: अब आपने मायके जाने की बात करी और ऐसे में एक सवाल और आ गया इसी तरह का, नाम तो नहीं लिखा लेकिन लिखा है कि डज मैरिड वुमन हैज राइट टू लिव इन हर ओन पेरेंट्स होम इफ नीडेड, और कहने का मतलब ये है इनका कि हस्बैंड क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं।
0: हाँ बिल्कुल क्वेश्चन कर सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट बुला सकता है उसको। अगर मान लीजिए लॉन्ग स्टे करती है तो उसमें उसको हस्बैंड को राइट है और इसको जाना भी पड़ेगा उसके अंदर।
1: अच्छा, वो अपनी मर्जी से पेरेंट्स के घर में नहीं जा सकती मतलब?
0: नहीं,

0: मतलब मेन इनका कहने का मतलब है, सवाल फ्रेम नहीं कर पाए लेकिन कहने का मतलब यही है कि क्या आदमियों के लिए भी कोई अधिकार है?
1: हाँ बिल्कुल है जी। वो अगर मान लीजिए कोई धमकी वगैरह देते हैं इसमें, तो 506 के अंदर
0: आदमियों महिलाएं अगर उनको टॉर्चर कर रही हैं दबाव में आकर, अगर आदमी
1: 506 जो धमकी दे रही हैं जान से मारने के या कहीं इम्प्लीकेट करने के, तो आदमी इस सेक्शन में उनके विरुद्ध में जो है एप्लीकेशन लगा सकता है। तो कोर्ट उसके अंदर सुनता है और जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स होते हैं पार्टी के खिलाफ
0: वो लिए जाते हैं। तो चलिए, और किस तरह से इन बातों का समाधान निकल सकता है और महिलाओं के घर पर क्या क्या और अधिकार हैं, इससे जुड़े आपके जो सवाल हैं वो आप जानना चाहेंगे तो आप कॉल कर लीजिए या फिर फटाफट व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। थोड़ा सा टाइम बचा है, नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 2342108 या 2342108। आज बात कर रहे हैं कार्यस्थल पर घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकार, कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट रमेश चंद जी, और आज उन्हीं के सारे गाने उन्हीं की पसंद के सुने जा रहे हैं। सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी।

0: वेलकम बैक. आज हम बात कर रहे हैं विमेंस लीगल राइट्स एट द वर्क प्लेस एंड होम. फिलहाल मेरा सवाल ये कि जस्टिस कैसे सीख करें, प्रोसेस क्या है, क्योंकि महिलाएं घर में कई बार बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं, लेकिन उनको लगता है जाएं तो जाएं कहाँ, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से करें. जी सर.
1: एक्चुअली अगर मान लीजिए उनको जस्टिस के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में लगानी पड़ेगी.
0: ओके, सीधे कोर्ट जाने.
1: हाँ, कोर्ट चले जाएं. पहले तो कोशिश करें कि पुलिस स्टेशन छोटे लेवल पे अगर जितना बने उतना बेहतरीन है, क्योंकि जितने ऊंचे लेवल पे हम जाते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम जो है डिफिकल्ट भी होती चली जाती है.
0: अच्छा.
1: तो बेहतरीन यह कि जहाँ तक हो, मैं तो यही कहूँगा कि आजकल मीडिएशन सेल्स वगैरह बनाए हुए हैं, एप्लीकेशन आप लगाइए और फिर मीडिएशन में जाके उसको सेटल कर लीजिए, तो वहाँ से भी आपको पूरी एक उम्मीद बनी रहती है. तो कोर्ट तो लास्ट अल्टरनेटिव हो जाता है किसी
0: चीज़. तो वही सबसे पहले उनको कहाँ शुरुआत करनी चाहिए.
1: शुरुआत तो वो अपने
0: छोटी मोटी लड़ाई है
1: तो लोकल एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे बैठ जाएं, या फिर अपने एरिया के अंदर कोई RWA या कोई पंचायत वगैरह बनाई हुई है तो वहाँ पे आप सरपंच के पास मामले को ले जाके या फिर अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करा ले.
0: ओके,
1: तो डेट इज द बेस्ट वे.
0: उसके बाद पुलिस
1: तो लास्ट रिजोर्ट हो जाते हैं. पुलिस थाने वगैरह ये लास्ट रिजोर्ट हो जाते हैं.
0: ओके सर, घर पर जो समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं वो ज़्यादातर यही होता है कि जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मतलब ऐसा होता है कि हो रहा है उनके साथ कुछ बट वो उनके पास सबूत नहीं है, तो ऐसे में क्या करें.
1: नहीं, सबूत तो बन जाते हैं, एफिडेविट लगा दीजिए.
0: अच्छा.
1: हाँ, डेट इज सफिशिएंट.
0: ओके, तो सबूत क्या, सिर्फ क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो वो जो, बना सकती हैं.
1: नहीं, जो भी उनके साथ हो रहा है उसको एफिडेविट में फॉर्म करवा दें और उठा के उसकी एप्लीकेशन लगा दें.
0: ओके.
1: जो भी एरिया का SDM है उसके पास लगा दें, या जो भी कोर्ट है इसकी MM की कोर्ट है एरिया वाइज उसमें एप्लीकेशन लगा दें.
0: प्रूफ
1: के लिए तो बेस्ट मैंने बताया ना, एफिडेविट लगा दें उसका.
0: अच्छा.
1: एफिडेविट के अंदर वो अपने बयान दे दे कि मेरे साथ फलाने फलाने टाइम में ये घटना घटी है, इन्होंने मारपीट किया है, मेरा मेडिकल भी नहीं होने दिया, या जो भी परेशानी है उसको.
0: तो उसमें प्रूफ नहीं चाहिए होगा.
1: नहीं, प्रूफ मेडिकल तो करवा लेना.
0: अच्छा.
1: आजकल तो सरकारी हॉस्पिटल जगह जगह है, वहाँ चले जाए, वहाँ दिखा दे, अपने मेडिकल एग्जाम करवा लें. सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सारा.
0: मेंटल टॉर्चर का क्या,
1: मेंटल टॉर्चर का भी वो लिख के दे सकती हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ, कि मेरे साथ ये मेंटल टॉर्चर है, मेरे को मेंटेनेंस खर्चा नहीं दे रहा है, अब मैं बच्चों को कैसे पालूं या फिर मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊं. इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मेंटल टॉर्चर.
0: ओके, तो इस तरह की चीजें होती हैं. तो सबसे शुरुआत में पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए उनको कि अपने लेवल पर या अपने अपनों के बीच में बैठकर सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज वो पुलिस की हेल्प ले सकती हैं. और उसके बाद अगर मान लिया कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब अचानक उनको उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और उनको तुरंत इमरजेंसी में कोई हेल्प चाहिए, फिर क्या करें.
1: तो उसमें हेल्पलाइन नंबर है, उस पर वो फोन करें.
0: हेल्पलाइन नंबर
1: 1091
0: ये नंबर अक्सर मिल जाता है.
1: मिल जाता है. Okay. कोई दिक्कत नहीं है.
0: 1091 ये नंबर है जिसका सहारा वो ले सकती हैं और अपनी जो कंप्लेन है वो करवा सकती हैं. वैसे सर, एक जो दिमाग में मेरे पास अभी दिमाग में सवाल आ रहा है कि घर की जो महिलाएं हैं वो क्या ज़्यादा बाहर निकलकर अपना जो जस्टिस है या अपने अधिकारों के प्रति इतनी सचेत या जागरूक होती हैं. आपके पास जो केसेस आते हैं आपको क्या लगता है, या वर्किंग जो महिलाएं हैं वही आती हैं ज़्यादातर अपने केसेस.
1: देखिए, हमारे पास तो हर तरीके के केस आते हैं और केस टू केस बेसिस पे हम खुद भी सीख जाते हैं कि हमें कैसे हैंडल करना है.
0: Okay.
1: और ज़्यादातर तो इस मामले में जो लेडीज जज जो होती हैं बड़ी हेल्प करती हैं.
0: अच्छा.
1: तो पूरी जो सुरक्षा कवच जो हैं, लेडीज जो जज हैं, बहुत मदद करती हैं.
0: Okay.
1: अब मेरे पास एक केस आया था, मैं जैसे अभी डिस्कस कर रहा था, लड़की जो थी मोमडन थी, हस्बैंड जो था उसको लेके नहीं जा रहा था, उसने ऑलरेडी

एक और रखी हुई थी, तो किसी मीडिएटर के थ्रू आया, तो उन्होंने कहा भाई साहब इसमें कुछ मदद कीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सीधा बताया कि भाई हम देखो इसके अंदर डाइवोर्स

0: खर्चा देना है और जितनी भी तेरी आइटम है सब सीज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली भी उसने बात मानी और आज देखो दोनों का घर अच्छा चल रहा है, मीडिएटर भी खुश था जो लेके आया था, जबकि उस लड़की के माँ बाप भी नहीं थे। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मदद करते हैं महिलाओं की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जाके मदद करते हैं, जबकि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने मदद की उसकी लड़की की।
1: ओके सर, ये कई बार उल्टा भी हो जाता है, मदद नहीं मिलती है और या लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम वर्स्ट हो जाती है महिलाओं की, तो वो ऐसे जाने से कतराती हैं। कई बार उनके साथ कुछ ऐसा हो जा रहा होता है लेकिन वो बाहर निकलने में कतराती हैं कि पता नहीं हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी।
0: नहीं देखिए, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड करना पड़ेगा ना,
1: कोशिश करनी पड़ेगी,
0: तभी ये समस्याओं का समाधान होगा, अदरवाइज नहीं तो
1: जी। वेस्ट बंगाल से एक मैसेज आ रहा है सादिर का, उन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल है कि अगर किसी की बीबी अपनी पति से अपने पति पर झूठा केस की धमकी देती है और बार बार ये बात बोलने पर उसे क्या करना चाहिए, यानी पति को क्या करना चाहिए?
0: पति को तो ये चुपचाप बैठ जाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अगर वो ज्यादा उछल कूद मचाएगा ना तो प्रॉब्लम उसको ज्यादा होगी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ला जो है उनके फेवर में है। सीधा मोटा सा फार्मूला है, 354 लगा दो, 498 लगा दो, भुगतता रहे सारी जिंदगी। तो बेहतरीन ये है कि थोड़ा शांत चले, ज्यादा एलिगेशंस लगाना छोड़े अपने उस पे।
1: नहीं, महिलाएं अगर लगाने लग जाए पति पर, उन्होंने कहा
0: मैं कह रहा हूं,
1: महिला
0: वही तो, मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं अगर एलिगेशंस पति पे लगाती हैं तो वो ठीक नहीं है।
1: महिलाएं ठीक नहीं है, बट पति क्या अपना अधिकार लेने के लिए क्या करेगा? वो
0: उसको तो ये है कि कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, लास्ट रिजोर्ट तो वही है कि भाई मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है इस तरीके से, मेरा आना जाना मुश्किल हो गया है, ड्यूटी से मैं आ जा नहीं सकता, मैं कैसे सरवाइव करूंगा अपने बच्चों को और अपने आप को। तो बेस्ट ये है कि या तो वो सेपरेशन ले ले अंडर सेक्शन 10 के अंदर, दोनों अलग हो जाएं, तो तभी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि देखिए, बिना लीगल हेल्प के आज के टाइम में मैंने देखा है कि घर भी नहीं चल पा रहे।
1: ओके,
0: हर कदम पे लीगल हेल्प चाहिए।
1: ओके,
0: चाहे घर हो या बाहर हो, ऑफिस में भी यही एनवायरनमेंट है।
1: तो चलिए, आपने बहुत सारे सवालों का बहुत बखूबी जवाब दिया सर, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो ये थे रमेश चंद जी, जो कि हैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में, और आज बात की कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर। इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाज़त, आशियाना लेकर रश्मि आ गई हैं, और उनके साथ रहिएगा और इन्जॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुब्रियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, दवाओं और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौते किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। भारत कल से केरल के कोच्चि में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री सहयोग को मजबूत करेंगे और अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में 38 आरोपियों की मौत की सजा और 11 अन्य की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। श्री अमरनाथ जी यात्रा का 6ठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और पुरुष क्रिकेट में आज इंग्लैंड के नॉटिंगहम में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। और प्रोग्राम कौन सा है? प्रोग्राम है वही जाना पहचाना हमेशा की तरह, जो आता है 2 बजे, लेकर आते हैं हम आपका अपना आशियाना। जी हाँ, और पता है आपको, बाहर आज जो मौसम है ना, इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इससे पहले कि कुछ और बात करूँ, क्यों ना इस बारिश की जो छमछम मैं अभी देख कर आई हूँ ना, उसे उसके साथ में हम भी थोड़ा सा झूम लें, नाच लें, गा लें और मौज मस्ती कर लें। चूँकि जो बारिश का मौसम जब आता है ना, बहुत कुछ अपने साथ में लेकर आता है और साथ साथ लेकर आता है कुछ परेशानियाँ भी। और ख़ास तौर पर जो हमारी हम ऐसे जो लोग हैं, यानी कि हम जो आधी आबादी जिसे कहा जाता है, जिसे हम फीमेल्स जो होती है ना, उनके लिए जो फैशन

होता है ना उसका तो हो जाता है बस क्या जानते हैं ना। तो आज ऐसे ही फैशन टिप्स के साथ रहूंगी इस प्रोग्राम में, आपके साथ जुड़ी रहूंगी, तो जाइए कहीं नहीं क्योंकि आपको हमारे साथ यहीं पर करनी है चमचम, कुछ ऐसे कुछ वैसे।

0: जी हाँ बिल्कुल, नाचिए गाइए, जरूर धूम मचाइए, छम छम। लेकिन जब ये मानसून का मौसम आता है ना, तो किसी को परेशानी हो या ना हो, लेकिन हम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं हमारी जैसी जो और महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो हमेशा टिप टॉप रहना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनकी फैशन जो सेंस है ना, वो लोगों को नज़र आए, बारिश के मौसम में भी वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो आपके लिए लेकर आई हूँ छोटे छोटे कुछ टिप्स। भाई कोशिश कीजिए बारिश के मौसम में ना, मानसून के मौसम में, ऐसे कपड़े चुनिए जो हल्के हों, हल्के कलर के हों, हवादार हों और जल्दी सूख जाएं। कोशिश कीजिए कि बजाय कि आप सूती कपड़ों के या मोटे कपड़े के, जो मोटा स्टफ होता है, आप शिफॉन का, जॉर्जेट का, क्रेप या फिर नायलॉन ब्लाइंड जैसे फैब्रिक जो होते हैं ना, वो पहने। क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना, वो शरीर से चिपक नहीं जाते। चिपकने के बाद क्या होता है कि आप आराम से मूवमेंट भी नहीं कर पाते और आपको बड़ा मतलब अजीब सा महसूस होता है, होता है ना। एक और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी टिप ये भी है कि बारिश के मौसम में ना, कोशिश कीजिए कि आप लंबे कपड़े और ख़ास तौर पे जो ज़मीन से छूने वाले जो कपड़े होते हैं ना, जस्ट लाइक प्लाजो जैसे आजकल चल रहे हैं, उनसे आप बचिए। कोशिश कीजिए ऐसी ड्रेसेस पहनिए जो घुटने तक हो या आपके टो तक हो, जैसे मिडी ड्रेसेस हो गई या शॉर्ट कुर्तीज़ हो गई। कॉर्ड सेट आजकल बहुत चल रहे हैं, आप वो ले सकते हैं इंस्टेड के आप मैक्सी ड्रेसेस पहने या फिर गाउन पहने, राइट। तो आई थिंक आप मेरी इस बात से बिल्कुल मतलब इत्तेफाक रखते होंगे कि हाँ ऐसा है और वाकई में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कलर्स के बारे में भी थोड़ा सा मतलब मैं बताना चाहूँगी कि इस मौसम में ना अक्सर लोग सोचते हैं कि हम लाइट कलर पहने कि गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो क्या वाकई में हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊँगी एक प्यारा सा गीत, लेकिन उस गीत से पहले कुछ और भी है आपके लिए, एक छोटा सा ब्रेक।
1: प्रकार से पीएम जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में आज आपको छोटे छोटे थोड़े से प्यारे से फीमेल्स के लिए फैशन टिप्स देने के लिए आई हूं मैं आपके पास, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

भाई मौसम कोई भी हो, लेकिन जो हम लेडीज़ होती हैं ना, फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, ख़ास तौर पे कॉलेज ऑफिस जाने वाली जो गर्ल्स होती हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि वो किसी भी मौसम में जाएं। यदि घर से बाहर निकल रही हैं ना, तो शी वुड बी लुकिंग स्टाइलिश और उनके जो कपड़े हैं ना, वो पूरी तरह से आरामदायक होने चाहिए। लेकिन मॉनसून के सीज़न में अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा कीचड़ या फिर किसी तरह की इस तरह की परेशानी होती है, पानी से भी वो गंदे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कपड़ों की जो लंबाई होनी चाहिए ना, वो लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़मीन से छूती हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली है, कुछ लोगों को शौक होता है या उन्हें लगता है गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम कोई भी लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, पेस्टल कलर्स पहनते हैं ना, और यदि आप बारिश में भीग जाते हैं तो भीगने से ये ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो जाते हैं और उन पर कीचड़ के दाग आसानी से दिखते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप बारिश के मौसम

0: में बाहर निकलें तो आप नेवी ब्लू, ब्लैक, ऑलिव ग्रीन या फिर ब्राइट नियॉन कलर्स ट्राई करें। ट्राई कीजिए एक बार मेरे कहने से, आप यकीन मानिए आपको लगेगा कि हाँ जो रश्मि ने बोला था ना बिल्कुल सही बोला था। ना केवल वो आपको ट्रांसपेरेंसी से दिखाएंगे कि आपको कहीं पर भी कोई ऑकवर्ड मोमेंट आपके सामने ना आ जाए, और साथ साथ जो कीचड़ या कोई भी गंदे पानी के दाग यदि उस पर लग जाते हैं ना तो वो आसानी से किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। और एक साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी टिप ये है कि कुछ लोगों को रहता है कि हम जीन्स पहनते हैं ना तो बस हमें जीन्स ही पहननी है, पर जीन्स पहनने का भी कुछ, या एक कह लीजिए कि जो ट्राउज़र्स पहनने का एक तरीका हो सकता है बारिश के मौसम में, वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। बताया ना मैंने, घाघरा नहीं पहनना है, लॉन्ग स्कर्ट नहीं पहननी, लॉन्ग गाउन नहीं पहनना, लेकिन डांस तो कर सकते हैं ना यदि घर पर हैं तो, राइट।
1: मुंडे कुड़ियां पंगड़ा।

वेल, इन्होंने तो सोच लिया है कि इन्हें लाल घाघरा पहनना ही पहनना है भाई। हो सकता है उनके घर में कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, और इन्हें घर से बाहर जाना ही नहीं हो, तो पहनिए भाई, जो आपका मन करे वो पहनिए। लेकिन यदि आप निकल रहे हैं घर से बाहर और बाहर है बारिश का सीज़न, बारिश या तो सुबह हुई है या शाम को हुई है या जिस वक्त आप निकलने वाले हैं उस टाइम हो रही है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को होता है कि हम तो ट्राउज़र्स ही पहनते हैं या जीन्स पहनने का ही शौक़ है, और वो नहीं चाहते कि वो कोई और आउटफिट ट्राई करें उस टाइम पर, तो उनके लिए एक छोटा सा सजेशन ये है कि कोशिश कीजिए कि आप टाइट फिट जो जीन्स होती है या फिर भारी मोटे कपड़े वाला जो डेनिम होता है प्रॉपर, वो पहने ना, यानी कि वो पहनने से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को ही ना सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टाइट फिटिंग जो होती है उसमें आपको बिल्कुल अगेन वो बिल्कुल बॉडी से चिपक जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और भारी डेनिम होगा तो डेफिनेटली वो नहीं सूख पाएगा। तो कोशिश कीजिए, जैसे कि ढीली पैंट्स होती हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि लूज पैंट्स का, या मतलब काफ़ी ढीली पैंट्स का फैशन है, साथ में कार्गोज आप ट्राई कर सकते हैं, कॉटन ट्राउजर्स भी आप पहन सकते हैं। और हालांकि मैंने आपको बताया है कि कॉटन के कपड़े कोशिश कीजिए मत पहनिए, लेकिन यदि आप लाइनिंग वाले पहनते हैं या फिर आप थोड़ा सा उनमें सिंथेटिक टच हो, नाइलॉन टच हो, तो डेफिनेटली आप वो वाले ट्राउजर्स भी ट्राई कर सकते हैं। और रही बात यदि फुटवेयर की, आप सोचेंगे भाई बारिश का मौसम है तो अब मेरे फुटवेयर ख़राब ना हो जाए, तो इंस्टेड कि आप चमड़े यानी कि लेदर के आप अपने वियर पहने, स्नीकर्स पहने, आप छोड़ दीजिए उन्हें, इनकी बजाय आप वाटरप्रूफ सैंडल्स पहन सकते हैं, जेली शूज़ पहन सकते हैं, या फिर रबर स्लीपर्स भी पहन सकते हैं। ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं फैशन में उस तरह की भी, तो आपको रबर स्लीपर्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग स्लीपर्स मिल जाएंगी, जो कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके आउटफिट से मिसमैच हैं। तो ऐसा ही मैच मिलाने के लिए आपके फैशन को, आपके कपड़ों को, आपके फुटवेयर को मैं आई हूँ आज आपके पास आशियाना लेकर, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

वेल, हाई हील्स तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा यदि आप बारिश के मौसम में बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यदि आप सोचिए कि मैं मुझे कुछ बैग लेकर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कॉटन या फिर कपड़े का झोला आपको बिल्कुल नहीं लेकर जाना है। कोई बैग जो कॉटन फैब्रिक का हो या इस तरह के स्टफ़ का हो, नहीं लेकर जाना है। इंस्टेड कि आप वाटर प्रूफ कोई ट्रेंडिंग बैग ले सकते हैं, क्रॉस बॉडी बैग ले सकते हैं, किसी पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि आप अपने साथ में एक छाता, चाहे कलरफुल या फिर आप यदि थोड़ा और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आज मैं आपके साथ आई थी, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, फ़िलहाल के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार फिर से आपके साथ रहूँगी प्रोग्राम अल्फा जैन में 4:02 से, और 4 बजे से ही वैसे रहूँगी आपके साथ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना ताई गोंडाणे, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाणे।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी,
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न

0: जी, हमने अक्सर मातृवृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल।
0: मातृवृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली

0: कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces the...
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
4: आओ चलो।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं। अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं।

0: लंबी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा ये काहिरा का नया भाग है, जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
0: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ
0: पापा पापा हुँ? वो देखो नील नदी है ना।
2: हाँ वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
2: अरे कादिर भाई एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूं।
2: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, क्या कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: ने?
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
2: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
0: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वह क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यहीं कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये

0: क्या है प्रोस्थोसिस्ट, ये क्या फील्ड है, क्या क्षेत्र है और किससे डील करता है?
1: प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स ये बहुत एक ब्रॉड फील्ड है, जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इसकी
0: जी।
1: तो प्रोस्थेटिक्स जो होता है कि जो हमारी बॉडी से कोई भी एक पार्ट मिसिंग हो जाए, समटाइम्स हम कह सकते हैं कि एक हमारा कुछ एम्पुटेशन हो जाए, फिंगर एम्पुटेशन, हैंड एम्पुटेशन कट जाए
0: जी,
1: तो बेसिकली तो उसकी जगह पे हम एक आर्टिफिशियल लेग लगा देते हैं जिसको प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: ये डेंटल सर्जन्स भी प्रोस्थेटिक्स वगैरह की चीजों से जुड़े होते हैं क्या?
1: ऑर्थोटिक्स में जुड़े होते हैं।
0: ओके,
1: नॉट
0: क्योंकि ऑर्थोटिस्ट भी हैं आप?
1: हाँ।
0: तो ये क्या है
1: ऑर्थोटिस्ट? ये होता है कि हमारी बॉडी को कोई भी ऐसे पार्ट की जैसे सब कुछ चीज सपोर्ट के लिए चाहिए
0: जी,
1: उस चीज को जस्ट लाइक जैसे फ्रैक्चर हुआ है तो हमें एक फ्रैक्चर ब्रेस की जरूरत है, या हमें एक फुट में कोई पेन है तो फुट ब्रेस की जरूरत है, उस चीज को ऑर्थोटिक बोलते हैं
0: जी। थैंक यू सो मच। तो बस आप समझ गए होंगे कि भाई आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो क्या हैं। हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, एक खूबसूरत संगीत आपको सुनवाते हैं, बस आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस का हमें है इंतजार। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी।

0: दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप, सीनियर प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट। थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, मैं भी आपसे जानूंगी इसको हिंदी में क्या कहते हैं। और हम आज बात करने वाले हैं फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याओं और इसका निदान के बारे में। लगता है ये प्रॉब्लम बहुत आम है और हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तो प्रश्न हम उन्हीं से सुन लेते हैं कि उनके क्या है, ताकि हमारे और लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, वो भी उस प्रश्न से अपने आप को जोड़ लें अगर उनके पास यही प्रश्न है तो। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका नाम और आपका पता और आपका परिचय है हमारे पास, बस आप जल्दी से सवाल पूछ लें।
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। सर मैडम ने वैसे दे दिया इंट्रोडक्शन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये समस्या जो है बाई बर्थ होती है या बाद में किन्हीं कारणों से हो जाती है, और इसका इलाज कितना चलता है, सर्जरी भी करनी पड़ती क्या इस केस में?
2: हाँ, समटाइम अगर हम बात करते हैं तो ये बाय बर्थ भी होता है और समटाइम सेल्फ से भी डेवलप हो जाता है,
0: ऐसा अपने आप ही हो जाता है।
2: अपने आप भी हो जाता है।
0: okay.
2: और बाद में मे बी अदर रीजंस भी हो सकते हैं इसके डेवलप होने के, मे बी एक्सीडेंटल हो सकता है। हाँ, मसल्स वीकनेस हो सकता है।
0: yes. मसल्स वीक से भी हो सकता है, यानी कि ये बाय बर्थ भी हो सकता है, आपने कहा कि जन्म के साथ भी हो सकता है
2: जी।
0: और मसल्स वीक होने पर तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी मसल्स वीक हो सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या होता है कि हम बेयर फुट चलने के लिए हार्ड सरफेस और टाइल्स पे हम उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है उनके फिट को, जो एक नेचुरल अमाउंट में आना चाहिए वो जरूरत से ज्यादा अमाउंट में आता है
0: जी।
2: उस वजह से वो प्रॉब्लम उनको हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब एक और हमारे लिसनर हैं, हम उनसे भी उनका सवाल पूछते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं।
3: जी मैं मोहम्मद आरी बात कर रहा हूँ। शुरू में जब कोई प्रॉब्लम मतलब वो महसूस हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से मतलब
0: ये जानना चाहते हैं कि अगर शुरू में इस तरह की प्रॉब्लम का पता चल जाए या कैसे पता चले कि फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है।
2: अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि हाँ हमें फ्लैट फिट है, तो आपने किसी भी प्रोफेशनल प्रोस्थेटिस्ट या ऑर्थोटिस्ट को, अब आपके नियरेस्ट में ही काफी सेंटर्स होते हैं, आपने जस्ट गूगल करना है और आप सर्च करके आप उनको जाके दिखा सकते हैं, फिर या फिर आप हमारा सेंटर या दिल्ली में आप यहाँ के भी चेक करा सकते हैं। तो उस केस में होना क्या है कि आपके लिए एक सिंपल सा एक आर्ट सपोर्ट बना के देंगे अगर फ्लैट फिट है तो, और वो डिपेंड करेगा कि डिग्री क्या है फ्लैट फिट की, उसके अकॉर्डिंग आर्ट सपोर्ट बना के जस्ट आपने वो पहनना है 3-4 ईयर्स, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इट्स क्योर कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर क्योर कर रहा है तो हम उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे के लिए।
0: तो डॉक्टर साहब ये क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है या नॉट दैट सीरियस के मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पैर तो है ना?
2: ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, इसकी okay. वजह से काफी कुछ डिपेंड करता है हमारी बॉडी पे। फ्लैट फुट की वजह से फुट में तो पेन आता ही है, इसके साथ साथ में नी में भी पेन रहता है
0: जी,
2: हिप ज्वाइंट में भी पेन आता है, और सबसे बड़ा जो रहता है लोअर बैक का रीजन के लोअर बैक में पेन आ रहा है, तो ये भी एक फ्लैट फुट से बड़ा कॉज है।
0: ओके ओके, तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है आपने कहा कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इससे आपके कमर में दर्द, पैर में दर्द, मसल्स पेन्स वगैरह हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली होगा फिर डॉक्टर साहब, तो क्या ट्रीटमेंट है, कितना वक्त लगता है और क्या ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, क्या करना चाहिए उन लोगों को?
2: हाँ, ट्रीटमेंट है इसका
0: जी,
2: डिपेंड करता है कि किस एज में हुआ है।
0: ओके okay.
2: हाँ, कि ये जरूरी नहीं कि हम इसका ट्रीटमेंट, जैसे कि हम बात करते हैं कि आर्ट सपोर्ट पहनने से इसके लिए अच्छा रहता है, पर ये भी जरूरी नहीं कि हाँ आर्ट सपोर्ट पहना ही जाए, डिपेंड करता है कि सीवीआरटी मतलब कि क्या कंडीशन है, कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। बहुत ज्यादा सीवियर है तो उस केस में हम इंसॉल दे देते हैं पहनने के लिए।
0: इंसॉल क्या होता है?
2: इंसॉल होता है कि एक शूज के अंदर लग जाता है
0: जी,
2: के आर्ट सपोर्ट टाइप ही होता है जिसके फिट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है
0: जी,
2: और हमारे आर्ट्स जैसे फुट का नॉर्मल आर्ट्स होता है उसी शेप को मेंटेन करा देता है।

0: रूट कॉज द रीजन
1: रीजन इसका ये है कि अगर हम बात करते हैं कि अडल्ट एज में फ्लैट फुट के पहले नहीं था, अभी फ्लैट फुट हो रहा है, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि पेशेंट्स हमसे आके कहते हैं कि पहले मेरा फ्लैट फुट नहीं था, आफ्टर 40 इयर्स अब मैं देख रही हूँ कि मेरा फ्लैट फुट होता जा रहा है। तो उसके एक रीजन ये होते हैं कि मसल्स वीक के एज के अकॉर्डिंग मसल्स क्या है वीक होती जाती हैं और बॉडी वेट क्या है इंक्रीज होता जाता है। ऐसा नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग हमारा कि बॉडी वेट भी डाउन जा रहा है, मसल्स वीक हो रही है, तो बॉडी वेट ऑलवेज इंक्रीज होता है, मसल्स वीक होते हैं, तो अल्टीमेटली जो बॉडी का वेट है वो आता है फुट पे ही है
0: जी।
1: और जब वो फुट पे आता है तो फुट की टेंडेंसी क्या है कि या तो वो इनसाइड की तरफ फॉल करता है, अंदर की तरफ गिरेगा या बाहर की तरफ गिरेगा। 99% तो अंदर की तरफ ही फॉल करता है, जिसकी वजह से आर्च है वो सप्रेस होने लगती है, कोलैप्स होने लगती है, तो जिसे हम देख के कहते हैं कि अच्छा आपका ये फ्लैट फुट हो गया है। तो ये एक रीजन है। अदरवाइज तो एक रीजन मैंने बताई दिया है कि हेरिडिटरी भी होता है। हेरिडिटरी होता है तो बच्चों में इसे करेक्ट कर सकते हैं।
0: अच्छा ओके। तो अगर छोटे बच्चों में जन्म के साथ अगर पता चल जाए, मेरे ख्याल से इतने छोटे बच्चे का तो पता चल पाता है डॉक्टर साहब?
1: नहीं।

0: अपने अकॉर्डिंग अपने बेसिस पे देख के बता देंगे कि अच्छा आपने अभी वेट करना है या आपने अभी सर्जरी के लिए जाना है, ऑर्थोटिक मैनेजमेंट के लिए जाना है। ऑर्थोटिक मैनेजमेंट मीन्स के आपने इंसोल के लिए जाना है, आर सपोर्ट के लिए जाना है,
1: ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, हम अपने एक लिसनर से जुड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, हेलो।
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
2: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: हाँ नमस्कार,
2: धर्मवीर बोल रहा हूँ गांधीनगर से
1: जी। क्या सवाल है आपका?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ये पूछना चाहूँगा।
0: नमस्कार जी,
2: कि इस बीमारी के आने से पहले लक्षण के क्या क्या बातें हमें देखनी पड़ती है कि ये बीमारी जो फ्लैट फुट की आ रही है, तो इसके बारे में पहले से जानकारी ले पाए कि ये बीमारी है। और दूसरी बात है कि अगर डायबिटीज पेशेंट है तो उसको फ्लैट फुट होता है तो उसको पहले से ही पैरों में प्रॉब्लम रहती है, उसके जो पैर सुन रहते हैं, हीट रहते हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं, तो ये दोनों चीजें अगर कंबाइन हो जाए, दोनों मिल जाए, तो कितने ज्यादा परेशानी दे सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे।
0: हाँ, इसके जो सिम्टम्स होते हैं जो हम इन्हें देख सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर फ्लैट फिट होता हुआ जा रहा है, पहले नहीं था, तो हमारी हील पे प्रेशर ज्यादा आने लगेगा, हील में पेन आने लगेगा, हमारी काफ मसल टाइट होने लगेगी पहले से ज्यादा। हम वॉक करने में, जो हम पहले वॉक कर पाते थे 5 किलोमीटर, अभी उतना वॉक नहीं कर पाएंगे, उससे पहले हम थक जाएंगे, जैसे कि 2 किलोमीटर पे हम थक जाएंगे, कि उसके बाद हम वॉक नहीं कर सकते। तो उस 2 किलोमीटर थकने के बाद में हमें नाइट में भी पेन फील होता है पैरों में, हमारी जो नी है उसमें, जो घुटनों में, तो ये प्रॉब्लम, ये साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इस चीज को। और रहा आपका जो डायबिटिक के केस में आपने बात की है, तो डायबिटिक के केस में क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि पैरों में जलन होने लगती है, और पैर में हल्का हल्का सा हम ऊपर से दिखेंगे तो ब्लैकेज पन आने लगता है, कि हाँ पैर थोड़े थोड़े हमें काले दिखने लगते हैं
1: जी।
0: ये बहुत छोटा सा एक, मतलब ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं कहेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी होता है। और डायबिटिक के केस में बर्निंग,
1: आपने बताया काले पड़ने लगते हैं,
0: हल्का सा ब्लैक पैचेस भी आ जाता है समटाइम, ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट पे ही आए।
1: ओके,
0: किसी किसी पेशेंट पे आ भी जाता है।
1: ओके, और यही सिम्टम्स हैं?
0: ये सिम्टम्स हैं।
1: हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, एक खूबसूरत संगीत आपको सुनवाते हैं। मैं हूँ आपके साथ राजश्री त्रिवेदी।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याएं और इसका निदान, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लैट फुट एंड इट्स सॉल्यूशंस। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप, जो सीनियर प्रोस्थेटिस्ट हैं और ऑर्थोटिस्ट। मैं हूं आपके साथ राजश्री। डॉक्टर साहब, ये जो कैन फ्लैट फुट डेवलप इन अडल्टहुड ऑल्सो, बड़े होने पे भी हो सकता है या सिर्फ मतलब जन्म के साथ ही हो सकता है, और कितनी तरह के फ्लैट फुट होते हैं?
1: फ्लैट फुट तो काफी टाइप के होते हैं, बड़े होने पे भी डेवलप हो सकता है। मैंने बताया कि ये मसल रिलेटेड भी प्रॉब्लम है
0: जी।
1: अगर हमारे मसल्स बॉडी की वीक होती जा रही है और बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से भी फ्लैट फुट हो सकता है।
0: ओके,
1: और टाइप्स ऑफ फ्लैट फुट, कितने तरह के फ्लैट फुट होते हैं? तो जैसे कि हम बात कहेंगे, एक फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होता है। अगर हम चेयर पे बैठते हैं, पैरों को उठा के देखते हैं तो हमारे पैर के अंदर एक आर्क नजर आता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जैसे ही हम उसके ऊपर वेट डालते हैं तो हमें दिखता है कि आर्क नहीं है, तो फ्लैट फुट फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में आता है। एक होता है रिजिड, हमने पैर को ऐसे ऊपर से उठा के देखा
0: जी
1: और वहां पे भी आर्च नहीं है, तो नॉर्मली आर्च नहीं है उनका, वो रिजिड फ्लैट फुट होता है। उसे हम परमानेंट फ्लैट फुट भी कह सकते हैं।
0: ओके ओके, यानी कि जो बाय बर्थ हुआ रहता है।
1: बाय बर्थ हुआ रहता है।
0: ओके, हमारे कुछ लिसनर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, देखें उनके क्या सवाल है। कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं डॉक्टर साहब। ये मैसेज है, क्या अधिक नंगे पैर रहने से भी ये हो सकता है? सेना भर्ती में ये अयोग्यता मानी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कृपया इसका उपचार बताएं। दिनेश शर्मा हमें लिखकर पूछते हैं, शिमला झुंझुनू राजस्थान से।
1: जी बिल्कुल, ये ज्यादा नंगे पैर रहने से भी हो सकता है। ज्यादा वेयर फुट रहने से, अगर आप वेयर फुट हार्ड सरफेस पे हैं, लाइक फ्लोर पे हैं, टाइल्स पे हैं, मार्बल्स हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल।

0: इसकी वजह से आर्मी में भी ये चेक किया जाता है कि हाँ फ्लैट फुट है या नहीं है, तो इसके लिए आप प्रिकॉशन ले सकते हो। आप ऑलवेज कैरी करें फुटवेयर, या मैक्सिमम बाहर अगर जा रहे हैं तो शूज, स्पोर्ट शूज कैरी करें विद आर सपोर्ट। या समटाइम आप अपने ही नियरेस्ट में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फ्लैट फुट हो रहा है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप अपने ही पास में किसी भी जस्ट गूगल करें कि मेरे नियर में प्रोस्टेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स सेंटर कहाँ पर है,
1: जी,
0: तो वहां पे आप जाके चेक करा के आप अपने लिए अकॉर्डिंग आर्च बनवा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी सपोर्ट करेगी।
1: अच्छा।
0: और आपको हेल्प करेगी कि आप आर्मी में जा सकते हैं, आपके आर्च को मेंटेन करके रखेगी, तो फ्लैट फुट नहीं होने देगी वो।
1: यानी इसका उपाय ऐसे भी है कि इसको बनवाए, तो कहाँ बनवाते होंगे इसको डॉक्टर?
0: ये हर जगह इंडिया में हमारे यहाँ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स सेंटर ओपन है। जैसे हमें गूगल करने की जरूरत है, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से पता नहीं है लोगों को।
1: ओके, अच्छा, तो वहां जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं और अपने पैर के शेप का या साइज का बनवा सकते हैं। फुट पैरों में जलन किस, ये जानना चाहते हैं कि पैरों में जलन किस वजह से होती है। ये अमर रमेश कुमार खत्री, मेरे फादर के फुट में काले पड़ गए, अभी आप बता रहे थे कि पैर काले पड़ जाते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होगा प्लीज इन्फॉर्म।
0: तो ये बिल्कुल ठीक है कि पैरों में जलन होती है, उसे हम बर्निंग भी बोल देते हैं, कि वो कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक होती ही रहती है, सम टाइम के लिए नहीं भी होती है फिर होती है। उसका एक रीजन ये होता है कि एक तो डायबिटीज होते हैं, जैसे आपने बताया कि पैर ब्लैक हो गए उनके, काले पड़ने लगे हैं, तो डायबिटीज एक रीजन होता है। और दूसरा रीजन होता है ब्लड सर्कुलेशन का, उनका ब्लड थिकन हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन जो इस स्पीड से होना चाहिए ब्लड वेसल्स में, हमारी बॉडी में जो रक्त का भाव होता है वो उनका स्लो हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड नीचे रहता है और जलन होने लगती है।
1: ये किसी के साथ भी हो सकता है?
0: ये किसी के साथ में भी हो सकता है। जी मैम।
1: ओके, और ये एक मैसेज है मेरठ से, मेरे भाई के लेग के जॉइंट में काफी टाइम से प्रॉब्लम है, पेन रहता है और MRI भी करा लिया है, मेडिसिन भी देते हैं उसको, लेकिन उसको बहुत तकलीफ है। ये खुशी त्यागी का मैसेज आया है मेरठ से, बट ये बहुत क्लैरिटी नहीं है,
0: क्लैरिटी नहीं है किस जॉइंट में पेन है।
1: जी जी जी। और ये पूछना चाहती है मनीषा लखनऊ से कि क्या फ्लैट फुट की वजह से, ये तो हमने बता ही दिया अभी, और अगर जॉइन नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कि नॉर्मल फुट क्यों? अब ये तो डॉक्टर साहब कैसे बताएंगे कि नॉर्मल फुट क्यों चाहिए आर्मी में? ऑफकोर्स मेरे ख्याल से सही दौड़ना भागना भी पड़ता है बहुत, उसमें फौज की जिंदगी में बहुत सारी
0: लाइफ स्टाइल उनका डिफरेंट होता है।
1: जी जी। क्या सर्जरी करवाने के बाद हम लोग भी फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, अगर सर्जरी ओके है तो आप फोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
1: बिल्कुल। यहाँ पर हम लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर में आज विषय है फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याएं और इसका निदान, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लैट फुट एंड इट्स सॉल्यूशंस। और हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप, सीनियर प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया हुआ है वारिस अली खां का लखनऊ से, और ये जानना चाहते हैं कि इलीजारोव के बारे में बताएं, आई मीन क्या है ये
2: इलीजारो एक टेक्निक है जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में यूज की जाती है। आई थिंक ऑर्थोपेडिक सर्जन इस चीज का अच्छा आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक आई थिंक बोन को एनलार्ज करने के लिए यूज की जाती है, मतलब समटाइम बोन को बड़ा करने के लिए खींचकर। जी
1: ओके। और एक और प्रश्न आया हुआ है, किसी का मैसेज है, ये जानना चाहते हैं, इन्होंने तो फोन से भी हमसे बात कर ली थी कि टेंशन फ्री रहना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, इजी रहना चाहिए, इतनी सारी जानकारी अगर आप दे ही देंगे हमें तो फिर हम अपने इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से क्या पूछेंगे। फिलहाल हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के साथ।

0: एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप, और हम बात कर रहे हैं फ्लैट फुट से जुड़ी समस्याएं और इसका निदान विषय पर। और आप सीनियर प्रोस्थेटिस्ट हैं और ऑर्थोटिस्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कितने तरह का फ्लैट फुट होता है, ये क्या ये सब एक्सरसाइज के जरिए भी ठीक हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है?
1: हाँ बिल्कुल, अगर हमें लगता है कि माइल्ड कंडीशन है तो वो एक्सरसाइजेस के थ्रू भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। जी
0: ओके, तो एक्सरसाइज अगर माइल्ड है तो एक्सरसाइज के जरिए ठीक हो सकता है, ऐसा आपने बताया। तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है डॉक्टर साहब? एक्सरे होता है, क्या होता है?
1: हाँ,
0: कैसे मेडिकली ये डायग्नोस होता है?
1: मेडिकली डायग्नोस करने के लिए आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास में जा सकते हैं एक्सरेज के थ्रू, और समटाइम वो अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता देंगे कि आपका फ्लैट फुट है या नहीं है। है तो कितना कोलैप्स कर रहा है आपका आर्च, जैसे कि हमारा आर्च डाउन होता हुआ जाता है या पूरा फ्लैट हो जाता है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं पामपट हो गया है। तो वो आपको एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस मतलब डॉक्टर्स के ही बता सकते।

0: अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता देंगे कि आपका फ्लैट फुट है या नहीं है, है तो कितना कोलैप्स कर रहा है आपका आर्च, जैसे कि हमारा आर्च डाउन होता हुआ जाता है या पूरा फ्लैट हो जाता है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं पामपट हो गया है, तो वो आपको एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस मतलब डॉक्टर्स के ही बता सकते हैं मेनली जी।
1: ओके ओके, और आपने बताया कि इसमें सर्जरी भी की जा सकती है।
0: सर्जरी भी की जा सकती है।

0: प्रॉब्लम है, बड़ी कॉमन है प्लांटर फेसाइटिस की
1: जी।
0: कई सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा कि हाँ हमारे फिट में पेन काफी रहता है या हमारे प्लांटर फेसिया की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने हमें प्लांटर फेसाइटिस डायग्नोज कर दिया है, हील पेन डायग्नोज कर दिया है, तो उस केस में भी ये फ्लैट फुट की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
1: अच्छा, बहरहाल और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि एक्सरसाइज से अगर माइल्ड है तो एक्सरसाइज से ये ठीक हो जा सकता है, लेकिन अगर माइल्ड नहीं है तो फिर आपको सर्जरी वगैरह करना पड़ेगा।
0: सर्जरी करना पड़ सकता है या फिर आप नॉर्मल ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि इंसो आर सपोर्ट यूज कर सकते हैं आप, वो एक वाइटल रोल, क्योंकि 50 या 60 की एज में अगर हम सर्जरी की नहीं सोच सकते।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि एक अब 40 इयर्स का या 50 इयर्स में 60 इयर्स में हमारे ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस केस में हम सर्जरी के लिए नहीं जा सकते हैं।
1: जी,
0: कोई भी सर्जरी के लिए जाने से पहले थोड़ा सोचता है, घबराता है, तो उस केस में आप नॉर्मली आर्ट सपोर्ट पहनकर शूज के अंदर बड़े आराम से लग जाता है, बहुत कंफर्टेबल वॉकिंग होती है, उसी को इनसोल्स कहते हैं बेसिकली।
1: तो क्या ये फिर हमेशा पहनना होगा इनसोल्स जो है?
0: हाँ, अगर आप हमेशा पहन सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं पहनना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो पहने और एक्सरसाइजेस के थ्रू अपनी जो आपकी मसल्स वीक हो गई हैं उसको स्ट्रेंथन अप करें।
1: ओके,
0: डेली टू टाइम्स, मतलब दिन में 2 से 3 बार वो एक्सरसाइजेस करें और नॉर्मल जैसे वो आपकी वॉकिंग थी वो उस वॉकिंग को रिटेन करने की कोशिश करें, तो आप उसको फिर अवॉइड हटा सकते हैं हम उसे।
1: और आपने बताया कि इनसोल्स बहुत मतलब हेल्प करता है, अगर आप उसको पहने अगर जब भी जरूरत होती है तो वो धीरे धीरे, इसका कोई परमानेंट क्योर है डॉक्टर साहब?
0: परमानेंट क्योर तो मैम इसका अगर बात करते हैं हम अप टू 15 इयर्स तक ही हो सकता है, उसके बाद तो हम समटाइम हम क्या
1: अप टू 15 इयर्स ऑफ द डायग्नोस और
0: इन अर्ली स्टेज,
1: अर्ली स्टेज
0: हम इनको 15 साल तक ही इसमें हम करेक्शन देख सकते हैं, उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी ये रह जाती है कि हम इसे सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, अब यहां से आगे ये बढ़े नहीं। वरना क्या होता है कि अगर हम ये सारी चीज यूज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ने लगती है।
1: इट्स जस्ट लाइक अ मेडिसिन कि आपको लगातार यूज करते रहना है उसको, इनसोल्स या
0: ये कह सकते हैं मैम।
1: हाँ, क्यों नहीं, अभी जैसे आप दवा खाते हैं अपनी बाकी प्रॉब्लम्स के लिए तो आपको राहत मिलती है उससे, वो प्रिवेंट होता है, कम से कम बच जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। उसी तरह से अगर आप इनसोल्स या जो भी आप बता रहे हैं वो अगर आप लगातार उसको यूज करें, पैरों में पहने और थोड़ा सा आपने बताया कि एक्सरसाइज करें कि आपके मसल्स टाइट

0: प्रोस्थेटिस्ट हैं और ऑर्थोटिस्ट हैं। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना होगा कि ये प्रॉब्लम जो है फ्लैट फुट की, औरतों में ज्यादा आपने देखा या महिलाओं में पाया जाता है, सॉरी पुरुषों में?
1: नहीं, ये जैसे हम देखते हैं कि आफ्टर 30-35 ईयर्स लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है।
0: ऐसा क्यों, आफ्टर 30-35?
1: ऐसा इसलिए कि इम्प्रॉपर फुटवेयर।
0: ओके, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? औरतें थोड़ा हाई हील्स पहनती हैं।
1: एग्जैक्टली, जैसे कि आजकल बड़ा फैशनेबल हो रखा है बैलीज पहनना, ओपन स्लीपर्स पहनते हैं। जेंट्स क्या करते हैं कि क्लोज शूज पहनते हैं हमेशा, तो उनके फुट को एक क्लोज शूज स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है।
0: अच्छा।
1: जो अगर फ्लैट फुट नहीं भी है या है भी तो उनके एक सपोर्ट मेंटेन रहता है
0: जी।
1: तो ये लेडीज में इस वजह से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और सेकंड पॉइंट एक ये भी होती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, वाइल प्रेगनेंसी वेट पुट ऑन हो जाता है बॉडी का, अल्टीमेटली ज्यादा फिट पे ही है तो, और बॉडी काफी फ्लेक्सिबल भी हो जाती है उस मोड में, तो उस वो भी एक कॉज होता है फ्लैट फिट के लिए। तो
0: अच्छा।
1: ये चीज हमने देखी है कि लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली, अगर हम बात करते हैं मेंस की तो भी मेन में ज्यादा होता है।
0: तो आपका कहना है कि अगर हम औरतें भी मतलब हाई हील्स ज्यादा न पहने और क्लोज्ड जूते पहने जो आगे से बंद रहता है, क्योंकि हम बेलीज पहनते हैं या चप्पल्स पहनते हैं या बहुत तरह की जूतियां होती हैं, जूतियां तो चलिए आगे से बंद रहता है, तो ये हमारे पैरों के लिए ज्यादा लाभदायक है।
1: बिल्कुल मैम।
0: लेकिन औरतें क्या, बहुत से पुरुष को मैंने देखा, पुरुषों को भी देखा, वो भी थोड़ा हाई हील्स पहनते हैं जब शाम का वक्त है, कहीं पार्टी में जा रहे हैं या किसी ऐसे ओकेजन में है, या थोड़ी लंबाई जो है अगर कम है तो उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट करने के लिए जी।
1: किसी ओकेजन में जा रहे हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, बल अब अगर पूरा दिन आप ये चीज पहन रहे हैं तो आपकी बॉडी के फोर्सेस कहीं ना कहीं तो डेविएट हो ही रहे हैं
0: जी,
1: तो उसकी वजह से फुट में प्रॉब्लम क्रिएट हो, मतलब आ जाती है,
0: हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या इसका खान पान से भी कोई लेना देना है या एनीथिंग विच व्हाट यू ईट इज फाइन?
1: बिल्कुल, एक हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ में एक्सरसाइजेस।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद पर भारत और इंडोनेशिया की एक राय है। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान मिंटांग आर्दिपूर्णा से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ईरान के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख किसानों और 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाने पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। लद्दाख में पश्मीना उद्योग को बढ़ावा, पशुपालकों को मिलेगा 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन। भारत कल से केरल के कोच्चि में शुरू

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ, आपकी अपनी दोस्त आरजे रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, ज़िंदगी यदि इसी तरह से चलती रहे, हंसी खुशी के साथ चलती रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हाथ में एक अच्छी नौकरी हो, या कोई काम हो, या कोई व्यवसाय आप करना चाहते हो। लेकिन सच मानिए, कोई भी नौकरी, कोई भी काम, कोई व्यवसाय तभी सक्सेसफुल होता है जब आप में केवल आपकी नॉलेज ही ना हो, आप में लोगों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी हो, आप में टाइम मैनेजमेंट भी हो, आप में कुछ ऐसे स्किल्स हो जो आप में लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता आप में वाकई में बहुत ज़्यादा हो, है ना। और साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं, ख़ास तौर से यदि हम बात करें आज के सिनेरियो की। तो आज अल्फा जेन के इस सेगमेंट में, जिसमें हम बात करते हैं करियर पाथवेज में, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। सही समय पर सही शब्दों से अपनी बात को सही तरीके से रखने को कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संचार कौशल। और ये सब केवल एक नौकरी पाने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के अल्फा जेन में हम करेंगे इसी बारे में बातें। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं हमारे साथ। जी हाँ, छोटी छोटी सी कोई कोई बात यदि आपको अच्छी लग रही हो, आप हमारे साथ जुड़े हों, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपने पूरे दिलो दिमाग के साथ, पूरे होशो हवास के साथ, जैसे कि हम आपके साथ हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, और उसके बाद वापस आती हूँ मैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल यहीं पर FM रेनबो 102.6 पर।

जी हाँ, बेसब्रियाँ रहती हैं मन में जब भी आप अपना कोई कोर्स पूरा कर लेते हैं या अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं और आप निकलते हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन तब जाके आपको यह एहसास होता है कि आपके पास स्किल्स तो हैं ही नहीं. हाँ, और ख़ास तौर पे आपको टीम वर्क करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. तो क्यों ऐसा करते हैं जनाब भाई? कोशिश कीजिए शुरू से ही.

एआई की यदि हम बात करें ना, तो एआई के टाइम में केवल ज्ञान से आपका काम नहीं हो सकता, केवल नॉलेज से काम नहीं हो सकता, बल्कि लोगों के साथ काम करने की जो आपकी क्षमता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और इसीलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ आपके संचार कौशल की, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब संचार यानी कि कम्युनिकेशन, इसका अर्थ केवल बोलना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही शब्दों से अपनी बात को सही ढंग से और

0: पहले आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन अपनी होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि के साथ. और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप हमारे साथ होते हैं और बताते हैं कि हाँ आपकी ये वाली बात हमें काफ़ी अच्छी लगी. बहुत सारे लिसनर्स हैं जो मुझे लग रहा है इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ना कि वो मुझे सुन रहे हैं. कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं इसका एहसास हमें है, लेकिन साथ साथ हमें इस बात का भी एहसास है कि हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं आपके प्रति, कि हम आपके साथ आपके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएं जिसके थ्रू आपको ये पता चलता रहे कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है. तो आज अल्फा जेन में हमारे जो जनरेशन जेड है या जनरेशन जी जो है या अल्फा जेन जो आने वाली है, है ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों ही जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये जानने की कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना केवल नॉलेज यानी कि ज्ञान एनफ नहीं होता, आपको स्किल्स आनी चाहिए. ख़ास तौर पे केवल जो आपका जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं किताबों के थ्रू या अपने कॉलेज या अपने स्कूल के थ्रू, केवल वही स्किल्स नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनकी हमारी लाइफ जर्नी में, हमारे करियर की जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है. उसी में सबसे पहले मैंने बात किया आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स की, यानी अपनी बात को सही ढंग से प्रेजेंट करना, साथ साथ सामने वाला जो कहना चाह रहा है उस बात को सही ढंग से समझ पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. और यदि आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लीजिए आधी जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पा रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ आ गई और यदि मैं अपना ये कॉन्सेप्ट सामने वाले को समझा दूंगा ना तो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है ये तो मुझे ही मिलेगा. लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, आप उसको बता नहीं पाते और सामने वाले को आपकी जो थ्योरी है वो समझ ही नहीं आती. तो कमी कहाँ रही? आपकी स्किल में. आप अपनी बात को सामने वाले को सही ढंग से नहीं समझा पाए, है ना. बट आई होप कि मैं अपनी बात को आपको समझा पा रही हूँ. यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे एज़ यूजुअल नंबर पे, है ना, आपको जानते हैं आप अच्छी तरह से. लेकिन साथ साथ यदि आपको लगता है कि आप अपनी बात को कुछ और भी मुझे कहना चाहते हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर. आप जानते हैं जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनके लिए. फिलहाल मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक और वापस आऊँगी उस ब्रेक के बाद आपके लिए एक ताज़ा तरीन फर्स्ट क्लास बहुत ही अच्छा सा गाना लेकर. आई होप कि आप प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ ये मान रहे होंगे कि हाँ भाई, हमारे करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज रश्मि लेकर आई है कुछ खास.
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो.
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है.
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है. समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है.
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है.
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं. स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार.
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें.
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी.
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अपने लक्ष्य को ज़रूर आपने बनाना है कि आपका एम क्या है लाइफ में, है ना, क्या लक्ष्य है आपका। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप केवल नॉलेज की तरफ ही ना बढ़ें, आप नॉलेज के साथ साथ ना अपने भीतर एक कम्युनिकेशन स्किल्स लेकर आएँ, नेतृत्व लेकर आएँ, आप एक लीडरशिप वाली भावना आप में होनी चाहिए। और लीडरशिप की बात मैंने की है तो अब मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगी। लीडरशिप का मतलब जो होता है वो केवल ये नहीं कि आप किसी पद पर हैं, आपका कोई डेजिग्नेशन है या आपको लोगों पर रूल करना है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप का मतलब है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना, दूसरों को प्रेरित करना कि कैसे आपको वो काम करना है, और साथ साथ कितनी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो उसमें आपको पॉजिटिव रखना है और साथ साथ औरों को भी पॉजिटिव दिशा दिखानी है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, एक अच्छा जो नेता होता है ना, वो केवल आदेश नहीं देता बल्कि सबको साथ में लेकर चलता है, यानी कि सहयोग का एटमॉस्फेयर बनाकर चलता है, दूसरों की क्षमताओं को पहचानता है और सभी को साथ लेकर चलता है। और साथ साथ जब भी सक्सेसफुल होता है ना, तो उस सक्सेस का श्रेय वो पूरी टीम को देता है। आपने कभी नोटिस किया, एक फिल्म आई थी लगान, लगान में आमिर खान ने, यानी कि जो भुवन कैरेक्टर था फिल्म का, वो जब वो मैच खेलने जाता है या जब वो वहाँ पर जाकर बोल आता है कि हम आपके साथ में क्रिकेट का मैच खेलेंगे, ऑल दो कि उसे पता होता है कि हम में से किसी को भी नहीं आता, लेकिन अपनी टीम बनाने में वो अपने गांव के जो साथी होते हैं उनमें ये देखता है कि किस में कौन सी स्किल अच्छी है। नोटिस किया है आपने कभी? बिल्कुल, एक कचरा करके उसमें कैरेक्टर था, उसे वो लेता है, क्यों? क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छी कर पा रहा था अपनी बॉल के द्वारा, है ना, जबकि उसका हाथ थोड़ा सा ख़राब था उसके बावजूद। इसी तरह से एक उसमें नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाया है, लेकिन जब उसने देखा कि ये इतना तेज़ रन कर सकता है, इतना तेज़ दौड़ सकता है, तो उसने ये बाकी लोगों की नाराज़गी होते हुए भी उसे टीम में लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी क्षमता क्या है। साथ साथ इसी तरह से उसने हर उस खिलाड़ी को अपनी टीम का हिस्सा बनाया जो उसे लगा कि उसकी टीम के लिए ज़रूरी है, और उसे समझ आ गया था कि इस बंदे में

ये कैपेबिलिटी है इस इंसान में, इस खिलाड़ी के रूप में यदि इससे ये काम कराया जाएगा तो ये टीम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। याद आया ना आपको? तो बिल्कुल यही होती है लीडरशिप स्किल। यदि आप में भी इस तरह की कोई स्किल है तो आप वाकई में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप किसी भी टीम के हेड बन सकते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जबकि आप शुरुआत से, अपने बचपन से या अपने कॉलेज टाइम से ही ना आप इस तरह का अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को आप डेवलप कर सकें। बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे आपको स्कूल में किसी कोई भी एक परियोजना है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका आपको संचालन करने का आपको मौका मिला, किसी सोशल कार्यक्रम का आपको आयोजन करने का मौका मिला, या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का आपको मौका मिला, कोशिश कीजिए। नहीं है तो आज से शुरुआत कर दीजिए। मैं फिलहाल शुरुआत कर रही हूँ एक और प्यारे से ट्रैक की, क्योंकि जब मैंने बात की है फिल्म लगान की तो डेफिनेटली इस फिल्म का ये गीत मुझे याद आ रहा है जो सबको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है और साथ साथ साथ बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है।

वेल दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है ना जब मैंने जैसे आपको बताया कि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ बनेजा गाज़ियाबाद से, इसके अलावा हैं रवि हैं, कहाँ से लिखा है इन्होंने ये नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लग रही है, खुश हो जाते हैं हम ना अपनी तारीफ सुन के। हितेंद्र दास ने आसाम से लिखा है और बताया है कि भाई मैं आपके साथ में हूँ, यहीं पर हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और मैं आज बात कर रही हूँ अल्फा जेन में उस जनरेशन के लिए, हमारी अल्फा जेन और जनरेशन जी के लिए, जेड के लिए, कि भाई किस तरह से आप अपने करियर में उठान दे सकते हैं, है ना, उड़ान ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरत है कि आप में संचार कौशल भर भर के हो, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो, प्लस आप में लीडरशिप की भावना हो और आप समझ सके कि किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको अपनी टीम को साथ में लेके चलना है, है ना। और अब बात है टीम की, तो भाई डेफिनेटली टीम की आवश्यकता है, लेकिन कैसे, तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी जो बड़ी उपलब्धि होती है, कोई भी बड़ा काम अकेले संभव नहीं हो सकता। कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सुना है आपने कभी ये मुहावरा? हाँ, उसका मतलब यही होता है कि अकेले चलोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा किसी भी काम को पूरा करना, लेकिन यदि आप साथ में लोगों को लेकर चलोगे, सहयोग से चलोगे, है ना।

ना तो मुश्किल हो जाएगा किसी भी काम को पूरा करना। लेकिन यदि आप साथ में लोगों को लेकर चलोगे, सहयोग से चलोगे, है ना, साथ लेकर चलोगे, तो डेफिनेटली वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा और समय से पूरा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखिए, आप सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल में आप जाते हैं, कौन होता है वहाँ पे? क्या केवल डॉक्टर होता है? हाँ, केवल डॉक्टर नहीं होते हैं, डॉक्टर के साथ में नर्स भी होते हैं, कंपाउंडर्स भी होते हैं, टेक्नीशियंस भी होते हैं, और जो वार्ड बॉय होते हैं वो भी होते हैं, क्लीनर्स भी होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी ऐसी मतलब मेंबर्स होते हैं। तब मिलाकर वो पूरा हॉस्पिटल बनता है और आपका यानी कि किसी भी पेशेंट का वहाँ पर इलाज होता है। इसी तरह से यदि आप स्पेस मिशंस की बात करें तो कितने सारे साइंटिस्ट होते हैं जो कितने सालों तक लगातार एक साथ मिलकर काम करते हैं, या कोई मेडिसिन है उसका आपको कोई फॉर्मूला बनाना है, किसी बीमारी का फॉर्मूला बनाना है, किसी मेडिसिन को निकालना है, नई को, वैक्सीन को निकालना है, तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो एक साथ मिलकर काम करती है, तब जाकर आपको उस बीमारी का इलाज मिलता है या उस वैक्सीन का जो इंतज़ार होता है सालों पुराना, वो इंतज़ार ख़त्म होता है और वैक्सीन आती है ना, होता है ना। तो कुल मिलाकर यही है कि पूरी टीम को एक साथ काम करना पड़ता है। खेल के मैदान में देख लीजिए, खेल के मैदान में आपने कभी देखा है कि कोई केवल अकेला अकेला खेल रहा है और वो जीत भी रहा है और वो भाग भी रहा है?

0: का इलाज मिलता है या उस वैक्सीन का जो इंतज़ार होता है सालों पुराना, वो इंतज़ार ख़त्म होता है और वैक्सीन आती है ना, होता है ना। तो कुल मिलाकर यही है कि पूरी टीम को एक साथ काम करना पड़ता है। खेल के मैदान में देख लीजिए, खेल के मैदान में आपने कभी देखा है कि कोई केवल अकेला अकेला खेल रहा है और वो जीत भी रहा है और वो भाग भी रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। हर गेम का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादातर गेम्स देखेंगे ना, स्पोर्ट्स देखेंगे, तो वो केवल एक अकेले का नहीं होता बल्कि उसमें पूरी टीम शामिल होती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि टीम वर्क हमें ये सिखाता है कि भले ही आप में आपस में विचारों का मतभेद हो, लेकिन आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। सहयोग से एक दूसरे के ऊपर फेथ रखकर, विश्वास रखकर, है ना, डिसिप्लिन के साथ चलकर और पूरी तरह से एक दूसरे को सम्मान देकर ही आप एक सक्सेसफुल टीम बना सकते हैं और उसी से आपकी पहचान बनती है। आपको याद है ना, आपने वर्ल्ड कप 83 देखा होगा, मूवी के द्वारा देखा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और भी आप किसी भी टीम में देखेंगे ना, तो जब वो साथ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए उनको चांस देते हैं आगे बढ़ने का, है ना, पूरी तरह से खेलने का, तभी कोई भी टीम सक्सेसफुल होती है और लेकर आती है हमारे लिए कोई भी टूर्नामेंट का कप। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत प्यारा सा ट्रैक, सुनते हैं, लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: जी हाँ, मुट्ठी में आसमान तभी होगा कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचानेंगे और आप मानेंगे कि हाँ, यदि मुझे आगे बढ़ना है, यदि मुझे किसी भी जॉब में सक्सेसफुल होना है या एक अच्छा खासा सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा आपको आगे बढ़ना है ना, एक अपने लिए अपना बिजनेस खुद खोलना है, कुछ भी करना है, तो लेकिन उसमें आगे तभी आप बढ़ पाएंगे जब आप में ये तीनों स्किल्स हों। कौन कौन सी? आप में टीम वर्क की भावना हो, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, साथ साथ आप में लीडरशिप की भावना भी हो और आप सबको साथ में लेकर चल सकें, है ना, तभी ये संभव हो पाएगा। और साथ साथ दोस्तों, इसकी ज़रूरत किस लिए है? इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि आजकल जो है वो एआई का ज़माना है, है ना, लेकिन उसके बावजूद कितनी भी डिजिटल टेक्निक क्यों ना आ जाए, लोग तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब उनमें मानवीय क्षमताएं भी होंगी, यानी कि आप किसी के साथ संवाद कायम कर सकें, आप किसी के साथ उसकी अंदर कौन सा कौशल ज़्यादा है, कौन सी उसकी क्षमता अच्छी है, किस काम में वो अच्छा है, उस बात को समझ पाएं, और साथ साथ आप बाकी के सारे लोगों को, अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चल पाए, तभी आप भविष्य में अपने साथ वालों को एक अच्छे साथ के साथ आगे बढ़ा पाएंगे और साथ साथ अपने काम में सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई जो हमारा यूथ है वो इसे कैसे करें? ज़रूर बताऊंगी। इसके लिए रहना पड़ेगा आपको हमारे साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है अल्फा जैन। वैसे आपको बता दूं, हमारे एक और लिसनर हैं गया बिहार से, बबन कुमार दास, ये भी जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रोग्राम है अल्फा जैन और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही

आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि यदि आप एक युवा हैं और आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप लोगों के साथ संवाद करना सीखें, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं, साथ साथ लोगों को साथ लेकर चलें और हर परिस्थिति में सहयोग की भावना बनाए रखें, क्योंकि डिग्री आपको अवसर दिला सकती है लेकिन संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पहचान दिलाती हैं, लीडरशिप स्किल्स आपको जिम्मेदारी देती हैं और टीम वर्क आपको बड़ी से बड़ी सक्सेस दिला सकता है। तो कोशिश कीजिए आज से, अभी से, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वहाँ की एक्टिविटीज़ में भाग लें, चाहे वो वाद विवाद हो, कोई भाषण हो, नाटक हो, खेल कूद हो, कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हो या फिर सोशल वर्क टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ हो, कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना सीखिए, लोगों से बात करना सीखिए ताकि आप उनकी बात को समझना भी सीख सकें। तो बस यदि ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और मैं सक्सेसफुल रहूँगी, अपने आप को मानूंगी कि हाँ, यदि आप में से कोई भी मेरी इन बातों को सुनकर कुछ सीखता है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम में रहेगा गीतांजलि के साथ में। फिलहाल रश्मि जा रही है, बाय बाय।

नमस्कार, अब समय है रेनबो मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद पर भारत और इंडोनेशिया की एक राय है। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ईरान के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख किसानों और 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि के 1,55,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गई है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमा ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा जवाबी बल प्रयोग का समर्थन किया है। भारत कल से केरल के कोची में शुरू होने वाली 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 ड्यूरिन कप टूर्नामेंट के ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। श्री अमरनाथ जी यात्रा का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। पुरुष क्रिकेट में आज इंग्लैंड के नॉटिंघम में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये थे रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। बिल्कुल वही मौसम है जो हम सब ख्वाबों में इमेजिन करते हैं। हमें लगता है कि कब ऐसा मौसम आएगा कि घर से बाहर निकलेंगे, कुछ चैन की सांस होगी। लेकिन देखिए, मौसम का मिजाज अपना रहता है, मूड अपना रहता है, और हमारा जो मूड है वो कैसे हम अच्छा करें, किस पे डिपेंड करें। यू नो, मेरा मूड किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ आप लोगों पे। आज आप को फिर से पूरे सिटी का हाल सुनाने आ गई है आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी, ओनियन स्टेशन ऑफ द नेशन, रेनबो दिल से दिल तक पर। क्या क्या बातें होने वाली हैं सभी जानते हैं आप। हमारे बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, वी आर लाइक ओल्ड सोल्स टुगेदर। तो जिस जिसको आपको बुलाना है, बताना है कि भाई सिटी लाइट स्टार्ट हो गया है, जुड़ जाइए, बातें कीजिए, बहुत सारी खबरें हैं, सुन लीजिए। तो जल्दी से आप उनको कनेक्ट कर लीजिए।

ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, आपके और मेरे दरमियाँ कुछ नहीं बहुत कुछ है, सालों का साथ है, ढेर सारा प्यार है और ऑब्वियसली शरारतें तो हैं जो हम बातों बातों में कर जाते हैं। मैं आई मीन यू हैव टू बिलीव दिस, इतनी वाइब हम लोगों की मैच करती है ना कि अगर कोई बोलेगा ना कि डू यू नो मतलब हाउ दीज थिंग्स वर्क, आपको उनको समझ आती है क्योंकि मैसेज बेस्ड शो नहीं है, आप जो भी बोलती हैं वो समझ जाते हैं। आई जस्ट टेल देम कि यू डोंट इवन नो व्हाट्स द ऑन एयर वाइब इज, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच अ लवली वाइब। अभी देखिए आपको जो एक मशी मशी सी बिगनिंग चाहिए होती है वो मैंने इस गाने के साथ कर दी है, तो बस अभी आपका कोटा पूरा हो गया। अब एब्सोल्युटली गजब की गीतांजलि के धमाके के लिए तैयार हो जाइए। अपने आसपास देखो तो सही मौसम क्या कह रहा है, इट्स अमेजिंग वेदर। हालांकि टेम्परेचर 32 डिग्री है बट लग नहीं रहा ऐसा क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही है और जब बारिश होती है तो थोड़े टाइम के बाद पता चलता है ह्यूमिडिटी का क्या हाल है। लेकिन टिल दैट टाइम इन्जॉय द वेदर, अननेसेसरीली गाड़ियाँ लेके मत निकलना प्लीज़, कि यहाँ भी मौसम अच्छा है गेड़ी मारेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं गेड़ी वेड़ी मारनी है, अपने आप आराम से मौसम को कई बार ना गुन

0: करना भी चाहिए. एक होता है ना मनन, एक होता है गुनन, मतलब जस्ट ट्राई एंड एब्जॉर्ब द वेदर. सो वो करो, गाने सुनो. आप सिटी लाइफ में आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ हो. सो व्हाट एल्स यू नीड, वी हैव म्यूजिक, वी हैव फन, वी हैव फ्रेंड्स एंड लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो ये जो भी मौसम का हाल है ये ऐसी रहने वाला है, बारिश थ्रू आउट, क्लाउडी कंडीशंस रहने वाली हैं. और हालांकि आपको पता है ह्यूमिडिटी वुड बी 35 डिग्रीज, तो वो आपको लगेगी थोड़े टाइम बाद, लेकिन अभी के लिए तो आप ये मान के चलिए यू कैन इन्जॉय द वेदर एंड हैव अ गुड गुड टाइम. एंड वी ऑल विल हैव अ गुड टाइम ओनली ऑन सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन.
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स. इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम. इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर.
0: जी बहुत सारी चीज़ें हैं हम मिलके लेके आते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है. हमेशा मैं ऐसे करती हूँ कि जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है ना, जिसमें बच्चे स्ट्रेस हो रहे होते हैं, टेंशन हो रही होती है, और उनको लगता है कि नहीं भाई प्लीज़ वी नीड समथिंग लाइटर, लेट्स जस्ट गेट इट ओवर विद, तो फिर हम, अगर आपको एडमिशन की टेंशन है या फिर आपको किसी चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, तो हम पहले उसको ओवर कर देते हैं. समझ गए हो ना? विच मीन्स अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो फिर आप अपनी वो जो, मैं कई बार ना उसको क्यूट कहती हूँ, बट क्यूट नहीं है, CUET है, आप उसके स्कोर को लेके परेशान मत होइए. क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका CUET का स्कोर कम आया है, तो आपके पास स्टिल ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, क्योंकि बहुत सारे प्रेफरेंस होते हैं ना. अपने लिए राइट प्रेफरेंस चूज़ कीजिए. और 16 जुलाई को पहला कट ऑफ लिस्ट जारी होगा DU का. तो ये ज़रूर है कि जितने लोग ये मानते हैं ना कि अगर हम प्रेफरेंस अपनी पहले दे देंगे, होता है ना जब पहली कटआउट में नहीं निकलता, फिर दूसरी में निकलेगा, फिर तीसरी में निकलेगा. सो समटाइम्स यू नो बच्चे क्या करते हैं, जो उनको पसंद होती है ना वो पहली कटआउट में डालते नहीं हैं, उनको लगता है वो तो मिलने नहीं वाली, जब दूसरी ऑप्शन आएगी तो तब ले लेंगे. ऐसा मत करना. क्या होता है कई बार चीज़ें ना उल्टी भी पड़ जाती हैं, फिर जो आपको चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा, वो एक टेंशन हो जाती है. तो इसीलिए जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर तरीके से ट्राई करें. डू नॉट बॉदर अबाउट दैट हमें कोई स्पेशल असिस्टेंस चाहिए है. हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट्स कोटा से ट्राई कर सकते हैं. अगर आप एंटरटेनमेंट म्यूज़िक डांस में अच्छे हैं तो आप उससे ट्राई कर सकते हैं. तो हमेशा वो एक एडेड एडवांटेज होती है. आप NCC कैडेट रहे हैं, वो भी एक एडेड एडवांटेज होती है. तो एडवांटेजेस आपको बहुत मिल सकती हैं, बट आपको चूज़ करना है भाई. अपनी फर्स्ट कट आउट लिस्ट के बाद पता चल जाएगा, बाकी तो आपको ऑन एंड ऑफ चीज़ें समझ आती रहती हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में. और प्लीज़ अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, देर इज़ नथिंग रॉन्ग, डू नॉट कम अंडर पीयर प्रेशर. हमारे एडुकेटिव शोज़ बहुत होते रहते हैं. ये है सिटी लाइट्स, प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द सिटी एंड व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग इन द सिटी. वही हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी. टू लव मी.

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: और आप मुझे सुनते रहिए ओनली ऑन सिटी लाइट्स, आपके अपने फेवरेट मोस्ट लव्ड आकाशवाणी पर। और जी बिल्कुल वही हूँ, आपकी गजब की गीतांजलि सुनी। और थैंक यू सो मच, आपको ऐसे बोलना सुनना बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, हालांकि पता है, बिल्कुल पता है मैसेज बेस्ड शो नहीं है, बट स्टिल जैसे हमने कहा ना, नस नस में हम लोग एक दूसरे के साथ जो बहते हैं मैं कहना चाहती हूँ हम लोग बहते हैं एक दूसरे की नस नस में। अच्छा सुनो, जैसे मैं बार बार आपको ये बात बताती रहती हूँ कि जो चीज़ मुझे थोड़ी ऐसी लगती है ना कंसर्निंग, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट ओवर इट राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द शो। हालांकि अभी शो स्टार्ट हुए हमें ऑलमोस्ट 16 मिनट होने वाले हैं, तो मैं एक आपको बता देती हूँ। अगर आप स्वामी नारायण मार्ग से आते हैं ना, बाई चांस की बात है, अगर आप वहाँ से आते हैं, तो एक महीने के लिए, जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, एक महीने के लिए अल्टरनेट रूट ले लीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो स्वामी नारायण मंदिर मार्ग है ना, जो नंदलाल मार्ग, रेड लाइट से शास्त्री नगर रेड लाइट आती है, समझ गए जो जाते हैं उनको पता है, वहाँ पे पूरा जो ट्रैफिक है वो प्रभावित रहने वाला है। उसका कारण क्या है आप सुन लीजिए कि PWD ने यहाँ पर सीमेंटेड रोड का निर्माण शुरू कर दिया, यानी कि रोड बन रही है एकदम क्लीन नाइस, जिसमें आप स्विफ्टली ड्राइव कर सकते हैं, वो रोड बन रही है और रोड बनने में टाइम लगेगा। तो फिर जो अनुमान है वो ये है कि 3 अगस्त तक इसका जो स्ट्रेच है वो पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, बंद रहेगा। सो प्लीज़ यूज़ समथिंग ऑल्टरनेटिव। अगर आपको पता है कि भाई स्वामी नारायण मंदिर मार्ग से, स्वामी नारायण मार्ग से आपको आना ही आना है, पूरा आपका पूरा बेस वहीं से है, तो बस आपको मैंने बहुत ही वे एंड एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दी है। ट्राई एंड फाइंड आउट सम ऑल्टरनेटिव रूट माई फ्रेंड। बाकी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव बातें हम करने वाले हैं, मुझे बस ये बता दो कि बाहर आपको ट्रैफिक का हाल कैसा लग रहा है, कैसे मिजाज आपके हैं, बताइए मुझे, वो भी बता दीजिएगा मुझे, नहीं भी मैं पूछूंगी तो बताएंगे आपके जो भी, अगर स्ट्रेसफुल ट्रैफिक रूट है ना, उसका पूरा निवारण मैं कर रही हूँ स्टूडियो से बैठ के। दिस इज़ व्हाट आकाशवाणी डज, नॉट ओनली इन दिल्ली, आप देश के कोने कोने में बैठ कर हमें सुन रहे हैं। न्यूज़ ऑन एयर ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये बॉदर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ये फ्रीक्वेंसियाँ काम कर रही है नहीं कर रही है। यू जस्ट गो ऑन दी ऐप, कहीं पे भी हो, देश या विदेश में आप हमें सुन सकते हैं बैंग ऑन। तो मिस करने का मौका आपको नहीं मिलेगा हमें, ना ही हम देंगे।

ला, कितनी अच्छी बीट है ना, मज़ा आ गया। ऐसी तो गाने होते हैं ना, देखिए क्या होता है, जो मूड है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में, किस फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहे हैं। या फिर अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपका मूड ऑफ होता है ना, तो यू प्रेफर लाइक स्लो म्यूज़िक, क्योंकि आप उस मूड में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो वाइब बस बनी रहे। अगर कोई आपको कहेगा ना, आपका फ्रेंड, के चलो भाई पार्टी में चलते हैं या कहीं चलते हैं, शादी में मम्मी ले जाएंगी, तो आपको मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मूड ख़राब है, उसको अच्छा करने का मूड नहीं है। बिकॉज़ म्यूज़िक इतना अपलिफ्ट कर देता है मूड, अगर आप चाहो या ना चाहो। अगर आप किसी डांसिंग जगह चले जाओ ना, मूड आपका ख़राब हो, आपके पैर टैप करने लगेंगे, आपका मूड चेंज होगा, और इस गाने ने वही किया है। तो बस ऐसे ही गाने आपको मिलते रहेंगे बिल्कुल सिटी लाइफ में, आपके अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के साथ। बिकॉज बहुत बहुत सारी बातें और बची हैं करने के लिए, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है ही, फ़न भी बहुत ज़रूरी है ना। थैंक यू सो सो सो मच फॉर ऑल द लव। मुझे पता है, मुझे आज पता है क्या अभी मैसेज आए हैं, कि आप देख लीजिए, नंबर आप बताती नहीं है, मैसेज आपको हम सारे भेजते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे फिर भी कई बार लगता है, बहुत सारे ऐसे नोने मोने शोने न्यू जॉइनिंग बेबीज़ होंगे हमारे शो में जो हमें ज्वाइन करते हैं, है ना, फिर वो सोचेंगे अरे ये तो पार्शलिटी हो रही है हमारे साथ, गीतांजलि ने हमें तो बताया नहीं नंबर, सब मैसेजेस कहाँ से भेज रहे हैं। तो देखिए आपको भी बता देते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम सिटी लाइट्स में आए हैं तो आपको फॉर्मेट पता है, नहीं पता वो भी बता देती हूँ। देखिए सिटी लाइट्स का जो फॉर्मेट है ना, वो ये है कि भाई आपको सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपके लिए ज़रूरी है, नहीं भी ज़रूरी आपको लगती इस वक्त के लिए, लेकिन यकीन जानिए वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, तभी वो आकाशवाणी पे प्ले हो रही है, बताई जा रही है आपको, ठीक है। अब जो मैसेजेस हैं इस शो में वो डायरेक्टली नहीं लिए जाते हैं, लेकिन हाँ एंटरटेन मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकते हैं ना हमसे भी मिस हो जाए, फिर आप लिख के भेजते हैं गीतांजलि जी ये बताइए ज़रा, हमने ये सुना है, या आज हमारे साथ ये हुआ, हम यहाँ ट्रैफिक में स्टक हैं, तो ज़रा प्लीज़ देख लीजिए, हमें बता दीजिए, तो हम अपने ऑथेंटिक सोर्सेज से कन्फर्म करके फिर उसको ऑन एयर कर देते हैं।

तो ऐसा नहीं है आपके मैसेजेस भेजना कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल मायने रखता है। अब बात आ जाती है अगर आपके पास नंबर नहीं है तो 9868107070 नंबर है 9868107070। आपको पता है जब मैं नई नई आकाशवाणी में आई थी ना, ऑब्वियसली हम लोग बहुत क्लिष्ट हिंदी बोलते हुए तो बड़े होते नहीं हैं। आकाशवाणी जैसे प्लेटफॉर्म माध्यम हमें सिखाते हैं कि सही तरीके से अच्छे तरीके से हिंदी बोलने का महत्व क्या है और आप कैसे ढंग से बोलें, तो हमने यही शोज़ करते करते बिल्कुल ही पुख्ता ट्रेनिंग ली है। लेकिन तब मुझे बड़ा मज़ा आता था जब मुझे इनिशियली ये समझ आया था ना कि शून्य बोलना है। आई ऑलवेज लव द साउंड ऑफ शून्य, तो जो भी नंबर में शून्य आता था ना, आई ऑलवेज यूज टू स्टे इन से इन हिंदी में अंग्रेजी में बोलना बिल्कुल अवॉइड करती थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है बोलने में 9868107070। तो कई चीज़ें बोल के ही आपको इतना ज़्यादा फन दे देती हैं, तो इमेजिन कीजिए अगर आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ के, फिर तो कहने ही क्या है। कहीं नहीं जाना है आपने, सुनते रहना है सिटी लाइट्स आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ। ये गाना याद है? जी जी जी, आपको पुराना वाला याद होगा, ये रीवैम्प वर्जन है, सुनिए ना हमारे सिटी लाइट्स में।

ये गाना ना हमेशा बहुत ही अब्रप्टली एंड होता है, ऐसा मतलब सडनली कट जाता है टंग। आपको पता है ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं, मतलब मेरे द्वारा नहीं की जाती जितने भी जो म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं, जितने भी अरेंजर्स होते हैं, एक शॉक वैल्यू देने के लिए ना, कि ओ लोगों को याद रह जाए कि अरे ये सडन कट मारा था, अचानक ख़त्म हो गया। इमेजिन करो आप सब डांस कर रहे हो किसी अच्छे से पब में या फिर अपने घर में किसी इवेंट में डांस कर रहे हो, ये गाना चल रहा है जी, अचानक कट गया, झुप, शांति, आपको याद रहेगा ओ माई गॉड वो स्टेप मेरा हवा में रह गया था, पता है ना वो गाना बीच में काट दिया था। तो ऐसे दिस इज़ वॉट इज़ अ शॉक वैल्यू। अब आपकी लाइफ के शॉक वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत एक्सेसिव नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ इतने ज़रूर हैं कि जैसे आप घर से निकले, कुछ प्लान किया, वो काम नहीं हुआ, तो वो आपके लिए शॉक वैल्यू हो सकती है। आप ऑफिस पहुंच गए, वहाँ पता चला छुट्टी है, होता है ऐसा, बिलीव यू मी, कभी आप सोच रहे हो कि आई मीन होता है भाई, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। एक बार आई रिमेम्बर 10 संडे को लोग ऑफिस पहुँच गए, बिलीव यू मी संडे को लोग ऑफिस पहुँच गए एंड दे थॉट

दैट्स सैटरडे. तो ये क्यों होता है? बिकॉज इतना प्री ऑक्यूपाइड माइंड है हमारा कि पूछो मत. इसीलिए मैं जो आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, ये बहुत ही बड़ा आपको बेनिफिट है. आप माने चाहे ना माने, मैं तो मानती हूँ कि भाई आई एम एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू, नॉट ओनली बिकॉज मैं आके शो कर रही हूँ, आपको गाने सुना रही हूँ, नहीं, मैं आपको याद भी दिला रही हूँ आज कौन सा डे है. बताइए मुझे आज कौन सा डे है जी? आज है आपका मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे. अक्सर अक्सर हर शो में मैं अपने कहती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता. दे स्टार्ट द डे, दे गो अबाउट इट, एंड देन दे से अच्छा बता, वो हो मैं भूल गई, आज क्या दिन है बताना ज़रा प्लीज़, आज क्या डेट है? तो आज डेट है 7th of July. है घंटी बजी. किसी का बर्थडे है बताओ, किसी की एनिवर्सरी है बताइए. मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स इस बार मेरा बर्थडे ऑलमोस्ट भूल गए थे. जी जी जी जी बिल्कुल. उनको रात को याद आया 11 बजे कि ओह विश करना है, एंड देन दे विश, एंड दे बोला जैसे फ्रेंड्स करते हैं, ओ माय गॉड हम तो शौक देना चाहते थे कि ओहो तुम्हें लगेगा, बट मैं आई न्यू दिस इट वॉज अ कवर अप. तो मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल ये कवर अप ना करें, आप बिल्कुल रेडी रहें. अगर आपको लगता है कि भाई आप कुछ मिस कर गए, अभी भी बहुत टाइम है, 5:30 ही बजे हैं अभी तो पूरी शाम, एंड देन रात इंट्रोड्यूस होने वाली है थोड़ी देर में, तो ये सब कर लीजिएगा. हाँ कुछ अगर डेडलाइन वाले काम है, जैसे आपको बिजली का बिल जमा कराना है, बच्चे की फीस जमा करानी है, अपने मोबाइल का बिल जमा कराना है, आजकल तो पाइपलाइन वाली गैस है उसको भी चेक कर लिया करो. हाँ उसका बैलेंस खत्म ना होने वाला हो, शोर हो हल्ला मच जाते हैं, अरे मुझे लगता है पाइप में प्रॉब्लम होगी, नहीं फिर देखते हैं कि जी क्या हुआ है, चार्ज खत्म हो गया है. तो देखिए कितनी सारी चीज़ें मुझे आपको याद दिलानी पड़ती हैं. सो आई जस्ट होप कि जितनी चीज़ें मैं याद दिला रही हूँ आपको याद रहे, नहीं तो ऐसी की

ना जी, आपकी ऐसी तैसी नहीं होने देते, इस चीज़ की गारंटी तो हम लेके बैठे हैं आकाशवाणी पर. बिल्कुल, इनफैक्ट कुछ चीज़ों को लेकर नहीं होने दे सकते, बाकी तो देखिए इंसान की फ्री विल है, कुछ अपने आप ही करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ. लेकिन बार बार चीज़ें हम रिपीट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि देखिए ये हमें पता चला है तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं कीजिए, वो कीजिए. तो मतलब जितना हम कोशिश करके आपको बता सकते हैं बता देते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में अगर आपको प्रियम्प्ट करना है वो भी कर देते हैं, बाकी देखिए थोड़ा

तो आपको भी रखना पड़ेगा, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ चीज़ें और ज़रूरी आपको बता देती हूँ। अच्छा प्लीज़, अगर मुझे इस वक्त कोई टीचर सुन रही हैं, कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं जो बच्चों से बहुत डील करते हैं, और कोई ऐसी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, तो जो ऐसे बच्चों से मिले हैं जिन्होंने बहुत ही सराहनीय काम करा है, तो देखिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 तारीख तक आवेदन किए जा रहे हैं, यानी कि 31 जुलाई तक। तो अगर आप ऐसे किसी बच्चों को जानते हैं तो आप उनको awards.gov.in पर जाकर नामांकन कर सकते हैं, उनका रेकमेंड कर सकते हैं उनको, क्योंकि बच्चों को ना इतना प्रोत्साहन चाहिए आजकल, तो खासकर हमारे टाइम तो बहुत अलग थे। आजकल की जनरेशन को अगर आप नहीं अप्रिशिएट करते ना, दे जस्ट लूज इंटरेस्ट, उनको लगता है फ़ायदा ही क्या है भाई, हमने किया हमें कुछ मिला तो है नहीं। तो इसीलिए बाकी देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये जितने भी ऐसे प्रतिभावान बच्चे होते हैं ना उनको सम्मानित करते हैं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 इसके लिए ये नामांकन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ज़रूर कीजिएगा, वेबसाइट पे जाइए, एक बार दोबारा बता देती हूँ, awards.gov.in पर यू कैन नॉमिनेट देम, बिकॉज इससे बेहतर बात क्या हो सकती है ना, कि देखिए आप वहाँ जितने भी बच्चे हैं यू आर गोइंग टू नॉमिनेट देम, बाकी वो तो चांस की बात है कि कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता, लेकिन ये जो फीलिंग होती है ना, यही बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि ओ वी आर नॉमिनेटेड, सो वी आर गोइंग टू हैव समथिंग स्पेशल। बच्चों के उम्र बताने के लिए उनके पास पास कुछ खास होता है, सो मेक श्योर इफ़ यू नो किड्स, इफ़ यू नो एनी वन हु डज हु कैन डू इट और हु इंटरेक्ट विद किड्स, देन प्लीज़ उनको ज़रूर अगर किसी बच्चों ने खास कुछ किया नॉमिनेट कीजिएगा। बाकी मेरे नॉमिनेशन आपके प्यार के बिना अधूरे हैं, आप कर रहे हैं करते रहिए, बिकॉज वही हूँ मैं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी। क्या आप मुझे दिलवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं क्या कोई, एनी बडी प्लीज, एनी स्पॉन्सर, ये मांग रही हूँ मैं, सुन लो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: वाणी आकाशवाणी
1: जी, बहुत सारी वाणियाँ मिलकर हमारी वाणी बनती है और इसी के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट मैं आपसे करती रहती हूँ लगातार। एक बार फिर सबको बता देती हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक जगह पर हैं आप अभी इस वक्त, क्योंकि आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। अच्छा सुनो जी, अभी एक बात और मैं आपको बता देती हूँ। आपको याद है ना, जब छठ होती हैं, महापर्व आते हैं, तो नई रेलगाड़ियाँ चलती हैं, तो इस बार भी मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूँ कि भावनगर के लिए एक चलेगी विशेष रेलगाड़ी। अगर आपका वहाँ आना जाना है तो आपको अच्छा लगेगा ये सुन के। शकूर बस्ती से भावनगर के बीच में एक स्पेशल ट्रेन ये चलाने जा रहे हैं और इसका गाड़ी की संख्या है 09257। ये बता दिए, इसलिए बता दिए कि कोई कन्फ्यूजन ना आपको। एवरी फ्राइडे 31 जुलाई तक चलेगी और 1 अगस्त को, पता क्या होता है ना, जब भी ऐसी कोई स्पेशली ट्रेन्स चलाई जाती हैं तो फिर लोगों को ना क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि भाई कभी ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेशल प्राइसिंग होगी इसकी, या फिर बहुत पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। ये तभी आपको पता चलेगा जब एक बार आप ट्रैवल करोगे, जाओगे, क्योंकि नॉर्मली लोग ना वर्ड ऑफ माउथ से जाते हैं कि भाई इनका वर्ड ऑफ माउथ क्या है, क्या बोल रहे हैं ये। आप अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और ट्रैवल करते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट रेलवे स्टेशंस पे। अगर आप जाओगे डिफरेंट ट्रेन्स में, हर एक का वर्जन फ़र्क होगा, हर एक की अंडरस्टैंडिंग फ़र्क होगी। तो प्लीज़ अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस लेना शुरू करो। और ये बात मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ जो ट्रैवल बहुत करते हैं ना, घूमते फिरते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, अरे कोई रिकमेंडेशन दीजिए, आप कहाँ गए थे? जी हम तो गए थे थाईलैंड। कैसा रहा? अरे पूछो मत, इतना बेकार, गर्मी इतनी थी और बीच पूरा वो था, रॉकी बीच था, बीच में जा नहीं पाए, इतना इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है थाईलैंड, बेकार। उनका ये एक्सपीरियंस है। किसी और से पूछेंगे तो वो कहेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट वेदर में गए ना, तो वो बोलेंगे नहीं वहाँ पर तो बारिश हो रही थी, अच्छा था, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। उनको बहुत ज़्यादा जगह कहीं देखने नहीं थी, वो अपने होटल में रहे, होटल से बीच में गए, बीच से होटल में आ गए, दे हैड अ गुड टाइम। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको बतानी ज़रूरी है। वट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, आप कैसी चीज़ें करना चाहते हैं? तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, वो अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी हमारे पास 16 मिनट बचे हैं। ओ माय गॉड, देखिए हाउ लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल। जब हमने शो शुरू किया था ना, और मैंने फर्स्ट टाइम ये बोला था कि अरे अभी आ जाओ, सब बात हो रही हुई, तो 5:16 ऐसी मैंने बोला था, और अभी देखिए 6:16। क्या मतलब मज़ेदार बात है ना। दिस इज़ वॉट इट इज़, ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ कॉल्ड माई फ्रेंड ऑब्जर्वेशन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कैसा लग रहा है साइलेंस आपको बताइए। मैंने आपको पता है एक बार ऐसे आपके साथ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है पहले कि एकदम गाने के बाद शांत हो गए, कुछ नहीं, शून्य, सन्नाटा, शांति। कैसा लगा मुझे पता है, घबराहट। मुझे स्टूडियो में घबराहट शुरू हो जाती है तो क्या ही होता है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल एक ना नया टर्म दिया जा रहा है जिसको कहते हैं कोर डिस्टर्बेंस। वो कोर डिस्टर्बेंस पता है क्या है, आजकल के बच्चों को दी जा रही है टर्म कि उनका कोर थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। क्यों? आप देख लें, बच्चे बिना मोबाइल हाथ में लिए कोई काम नहीं कर सकते, बिना टीवी देखे खाना नहीं खा सकते, बिना नॉइस के चुपचाप बैठ नहीं सकते। अगर घर में अकेले हैं तो उनको अपने फ्रेंड से बात करनी है या म्यूज़िक सुनना है, कान में उनके डड्डू लगा रहता है, आई कॉल इट अ डड्डू, आप हेडफोन जिनको कहते हैं, वो लगा रहता है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। मम्मी आवाज़ मार रही है, किसी का फ़ोन आ गया नहीं आ गया, कुछ पता नहीं। और ये खाली अब बच्चों की बात नहीं रहेगी, बड़ों के साथ भी सेम सिचुएशन है, उनको भी 24 घंटे हाथ में मोबाइल चाहिए, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है और हर चीज़ के लिए वी आर डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन सोशल मीडिया प्लस मोबाइल प्लस कुछ भी चीज़ है। अपने आप करने में अब घबराहट होने लगती है, सेल्फ डाउट आ जाता है कि नहीं नहीं ये तो मतलब हमारे दिमाग में आ रहा है, सच नहीं हो सकता, फटाफट सर्च मारो या फिर किसी से रिकन्फर्म करो, किसी को फ़ोन करो, बात करो। सो दिस इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग। अब इसका इलाज क्या है बताइए मुझे। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, अपना एक कोर ग्रुप बनाइए। ग्रुप मतलब जिसमें आपके 5-6 फ्रेंड्स हों या फिर मे बी फैमिली मेम्बर्स हों, और उनके साथ यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज़ ओनली गोइंग टू बी अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, दिन में एक बार बैठ के, और उस टाइम कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। ऐसे कई रूल बनते थे ना, खाते टाइम नहीं मोबाइल यूज़ होगा, लेकिन सबसे पहले मम्मी डैडी ब्रेक कर देते थे और वो क्या कहते थे, भाई हमारा तो काम है ना, अगर काम में कोई फ़ोन करेगा उठाना पड़ेगा ना, ये हमारे लिए लागू नहीं होता। और अगर घर के बड़ों के लिए लागू नहीं है तो वो नियम बच्चे कभी फॉलो कर ही नहीं सकते भाई। सो मेक श्योर यू क्रिएट अ ग्रुप वेयर यू नो एटलीस्ट फॉर एन आवर यू आर नॉट हैविंग योर मोबाइल, आपके हाथ में होना ही नहीं चाहिए। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन है अपने ऊपर रिलाई करके आप उसको भेज दो। अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करो, अपने हाथ से लिखने की कोशिश करो, मेंटेन नोटबुक, एंड देन यू विल सी कि माय गॉश वो जो शार्पनेस थी आपके लिखने में बोलने में वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपका जो रिलायंस है, आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है। तो प्लीज़ इसको हमें रिट्रीव करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो बुद्धि की ग्रंथियाँ हैं ना वो काम करती रहें और हम लोग अपने हाथों से लिखें, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अच्छा चलो एक काम करो, आपको एक ईजी वे आउट दे देती हूँ। वो काम खाली इतना है दैट यू ओनली हैव टू ऑन बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज गिव हैंड रिटन नोट टू योर पार्टनर, चिट्ठी जैसे पतरी चिट्ठी कहते थे ना पहले, जस्ट डू दैट एंड देन यू सी दैट यू नो वेदर ये सौदा खरा है कि नहीं है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: जी बिल्कुल, और अब आपको अपनी गजब की गीतांजलि सोनी को इजाजत देनी ही पड़ेगी, और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, क्योंकि ओहो वो आ गई हैं स्टूडियो में, जो भारती हैं और कभी नहीं हारती हैं, यानी कि भारती डैंग स्टूडियो में आ गई हैं। भारती, बाहर मौसम से जूझती आई हो या कम थी बारिश?
2: जैसे हमने छाता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बारिश है, बाहर निकल जाओ,
1: बाहर निकल जाओ। और मैंने आते ही ये बात भारती इनको बोली थी कि वी आर नॉट हैप्पी इन आउट, ऐसा नहीं हो सकता है ना, हमें कभी कहीं खुशी ढूंढनी पड़ेगी। फिलहाल ये खुशी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि अब आपके मैसेजेस पढ़े जाएंगे स्टूडियो में। हाँ, मेरी खुशी थोड़ी कम होती है जब मैं आपको छोड़ के जाती हूँ, बट मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि फिर से पूरी एनर्जी के साथ जल्दी आपके सामने पेश होंगी और आपके लिए बहुत बहुत सारी अच्छी बातें लेके आऊँगी। फिलहाल जो मेरा एक रूटीन है, मैं ज़रूर वो करना चाहती हूँ कि अगर आप इस वक्त सड़कों पर हैं तो प्लीज़ बी वेरी पेशेंट, वेरी कॉन्शियस, बिना सोचे समझे रोड क्रॉस ना करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं बाइक, स्कूटर, साइकिल, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, खासकर बारिशों में zigzag मत किया कीजिए। मुझे पता है मज़ा बड़ा आता है कि हमारी बाइक है फट निकल जाएगी, लेकिन बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत लोगों को डिस्कम्फर्ट होती है, और ये जो ढेरों कई बार लंबे जाम लग जाते हैं ना, ये भी इसी वजह से लग जाते हैं। एंड अगर आपको एक साइड में दिख रहा है ना कि ट्रैफिक लग रहा है,

आप सबके घरों में, तो अच्छे से कीजिएगा, एंजॉय द डे एंड एंजॉय द मोमेंट एंड अबव ऑल एंजॉय द रेन्स, स्टे हैप्पी, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय. अब जा रही हूँ बस, बाय.

नमस्ते इंडिया। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि आतंकवाद पर भारत और इंडोनेशिया की एक राय है। प्रधानमंत्री ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने का और उसे मजबूत करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ईरान के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 23 लाख से अधिक छात्रों द्वारा नशा मुक्त होने का संकल्प लेने की सराहना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलुरु को इंडोनेशिया में विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया जुड़ा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना की शुरुआत की है। 20 लाख किसानों और 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाने पर बल दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वार्षिक तीर्थ यात्रा के पांचवें दिन पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थतरी क्षेत्र में बादल फट गया है, जिससे कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। और अंत में पुरुष क्रिकेट में आज इंग्लैंड के नॉटिंघम में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ।

ऑल राइट लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है जी हाँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारिए। सबका फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा ही जिंदगी में करना है, आपका मेरा वादा है। और इस वादे के साथ क्या इरादा है, क्या इरादा कर सकती हूँ मैं, बस यही कि जितना हो सके आपके चेहरे पर हम मुस्कुराहट लेकर आ सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आपको एंटरटेन कर सकें, जितना ज़्यादा हो सके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम दे सकें, देश विदेश में क्या हो रहा है ये खबरें भी हम आपको सुना सकें, और आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं। तो हम एक तरीके से ना एक पूरा पैकेज है इन्फॉर्मेशन का भी और साथ में एंटरटेनमेंट का भी। सो लिसनर्स, फिलहाल ये जो हमारा शो है ये है जी हाँ वन एंड ओनली मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स की हमारी आज की ब्यूटीफुल मंगलवार सीरीज में बिल्कुल से मैं हूँ आपके साथ आरजे भारती। और आज जैसा कि हम हमेशा करने की कोशिश करते हैं, हम मतलब मैं और आप मिलकर, कि हम कुछ ऐसे डेज को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं जो हमें कहीं ना कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ तो हमारे ऐसे डेज हैं जो इंटरनेशनली ग्लोबल जो हैं वो हर जगह एक ही दिन में एक ही समय पर मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत अतरंगी दिन भी हैं जो कहीं कहीं अलग अलग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मनाती हैं या कुछ अलग देश मनाते हैं। और ऐसा ही एक दिन होता है माफ़ कर देने का दिन, जो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो आज कुछ जगहों पर ना ग्लोबल फॉरगिवनेस डे भी मनाया जाता है, और ये दुनिया के हर कोने में भले एक ही समय पर नहीं मनाया जाता है, लेकिन इसका जो एक उद्देश्य है ना, इसका जो एक मोटिव है, एक संदेश है, एक मैसेज है, वो यही है कि माफ़ कर दें। सो हम लोगों को तो माफ़ करते हैं, कोशिश भी करते हैं माफ़ कर दो, चलो माफ़

कर दो, माफ़ कर दो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ना ख़ुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो आज के दिन पर जितना भी दिन इस समय हमारे पास शाम हो चुकी है बचा है, कोशिश कीजिए अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कहीं साइड में रुक जाइए, अगर कहीं चल रहे हैं या व्हाटएवर यू वांट टू डू, बस थोड़ी देर के लिए अपने अंदर आ जाइए आप और समा जाइए अपने अंदर और अपने आप को माफ़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो भी अपने आप को माफ़ कर दीजिए। अगर ज़िंदगी वैसी नहीं बन पाई जैसी आप सोच रहे थे तो भी प्लीज़ अपने आप को माफ़ कर दीजिए। और अगर कुछ फैसलों का बोझ जो है आज भी आपके दिल में है तो भी अपने आप को माफ़ कर दीजिए। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मीन टू फॉरगिव, ये जो फॉरगिवनेस वाली जो एक रिचुअली मान लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को, अपने मन को किसी भी बोझ से आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली दूसरों को भी आज़ाद करना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों का एक मिला जुला रूप है आज का दिन कि चलिए माफ़ कर देते हैं। तो आज आपको मुझे मैसेज मसाला मिक्स में मैसेज करके क्या बताना है, बस इतनी सी बात आपको बतानी है कि क्या कोई ऐसा है जिसको आप माफ़ करना चाहते थे लेकिन अभी तक कर नहीं पाए, या कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है जिसके लिए आपको ख़ुद को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल से मुझे मैसेज कर दीजिए। और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, और डेफिनेटली क्योंकि बारिश का मौसम है दिल्ली में, इस समय बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, और दिल्ली में क्या, मुझे लगता है इंडिया में हर कोने में बारिश बस आ ही रही है, कहीं दस्तक दे रही है, कहीं पहले से आ चुकी है, कहीं बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सब बारिश की बात कर रहे हैं। लेकिन बारिश के साथ साथ आज चलिए लोगों को माफ़ करने की बात भी करते हैं। Stay tuned, keep listening and keep messaging. और यहाँ पे आपके messages का मैं कर रही हूँ इंतजार। फिलहाल एक track आप सबके लिए।

ऑल राइट लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है जी हाँ आपकी वही आरजे भारती, और बिल्कुल से आज बनी हुई हूँ मैं मैसेज मिसोनोमिक्स की हमारी आज की ट्यूसडे सीरीज में। और बात कर रहे हैं हम ग्लोबल फॉरगिवनेस डे की। हालांकि कुछ कुछ जगह पे मनाया जाता है, लेकिन ये जो माफ़ करने वाला ये जो एक रिचुअल है ना, इसको मैं बता रही हूँ बहुत सारी जगहों पर अलग अलग दिनों में अलग अलग टाइम में, कहीं पर तो कुछ कुछ कंट्रीज़ में इसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है कि चलिए आज सब एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे। सो आज चलिए एक दूसरे को सॉरी बोलने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले तो सॉरी मुझे लगता है हमें खुद को बोलनी चाहिए, लेकिन किस रीजन से बोलना चाहते हैं, किसी और को बोलना चाहते हैं, बिल्कुल से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सीधा बढ़ती हूँ आपके मैसेजेस की तरफ। सो यहाँ पे राजेश कुमार का मैसेज है SBI मेरठ से। SBI क्या है प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या SBI किसी जगह का नाम है। राजेश कुमार का मैसेज है, लिखा है कि गुड इवनिंग मैम, मुझे तो अपने आप को मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है। देखो मैंने लिखना था, मुझे नहीं लिखना था, और लाइफ में जो भी कुछ गलती हुई है वो पल वो समय लौट कर तो नहीं आता है, लेकिन मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई होप आपने कुछ अच्छी चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ किया होगा। अगला जो मैसेज है वो मेरे पास पंकज का है, अमरावती महाराष्ट्र से। लिखा है कि सो टुडे डेफिनेटली ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, आरजे मैडम मैं तो खुद को माफ़ करने की बात करूंगा, क्योंकि मैंने जो वादे किए थे वो मैं पूरे नहीं कर पाया, और दूसरों को माफ़ करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम किसी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, किसी को अपनी बातों से या अपने एक्शन से हम कितना हर्ट कर रहे हैं, एंड सामने वाले के कितने ज़्यादा एफर्ट्स हैं। सो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लाइफ को जिएं, और ख़ुद को भी समझें और दूसरों को भी समझने की कोशिश करें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है टू फॉरगिव। सो अगला मैसेज जो मेरे पास जो आया है रजनी शर्मा का आया है बागपत से। लिखा है कि मेरी जो भाभी है ना, उनसे मेरी लड़ाई हो जाती है, पर समय के बाद पता ही नहीं चलता कब किसने किसको सॉरी बोला, किसको माफ़ किया, तो सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। रिश्तों में प्यार ही इतना होता है, एक दूसरे से बात किए बिना तो हम रह नहीं सकते। चलिए क्या बात है, टचवुड, इस तरीके के रिलेशन में इतना ज़्यादा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है, अगर मिला है तो इसको बहुत सहेज के रखने की ज़रूरत है। और साथ में लिखा है कि वेदर इतना अच्छा हुआ है, सॉन्ग भी अच्छे अच्छे प्ले करो ना। चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे सॉन्ग प्ले करती हूँ, लेकिन आपका अच्छा अच्छा वाला कौन सा है ये मुझे नहीं मालूम है। सो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया है कि यदि मेरा संदेश शामिल नहीं करेंगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। चलिए अनिल शर्मा जी, फाइनली आपने इस बात को समझा कि अगर मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी तो आपको मुझे माफ़ करना है, शिकायत नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। ये जो आपने मुझे

तंज कसा है ना, ये मैं हमेशा ही याद रखूंगी, लेकिन ये बहुत ही स्वीट था, इसलिए आपको अब इस बात को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ पाई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर नहीं पढ़ती हूँ, कभी कभी एक्चुअल में कुछ मैसेजेस जो है ना वो स्क्रॉल हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। नमस्कार, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, रोज़ मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं रोज़ नहीं आती हूँ लेकिन आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में लिखा है, प्रोग्राम से अच्छी हमें आपकी आवाज़ लगती है, क्या बात है, ये ज़रूर लगनी चाहिए। और बहुत सारे नाम लिखे हैं, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ नहीं तो फिर से शिकायत आएगी कि आपने नाम नहीं पढ़े हैं। सो मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, बापरे, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, इसमें बापरे मैंने खुद ऐड किया था। वेल लिसनर्स, बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप इसी तरह से मुझे मैसेज करते रहिए। और आज फॉरगिवनेस डे को हम मना रहे हैं, तो क्या माफ़ करना चाहते हैं, किसको माफ़ करना चाहते हैं, जल्दी से आप मुझे मैसेज कर दीजिए। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड कीप मैसेजिंग एंड हैव यू को विद दिस लवली ट्रैक।

ऑलराइट लिसनर्स, सो देखते हैं कि हमारे आगे जो मैसेजेस हैं उसमें क्या बात छुपी है. सो अगला जो मैसेज है वो मेरे पास आया है यहाँ पे कि माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि माफ़ी जो है वो दिल को सुकून देती है. और ये बात लिख रहे हैं, जी हाँ, हमारे रेगुलर लिसनर है मोहम्मद सरफराज आलम. तो थैंक यू सो मच मोहम्मद जी फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल बात कि माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करने से दिल को जो है वो एक्चुअल में सुकून मिलता है. सो अगला जो मैसेज है मेरे पास लिखा है कि यस मैम, मैंने अपने साथी को उसकी एक गुस्ताखी के लिए, गुस्ताखी इज़ लाइक टू मच टू हैवी वर्ड, गुस्ताखी के लिए माफ़ किया है. और मुझे भी मेरे जो साथी हैं वो माफ़ कर देते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो गलती के लिए माफ़ कर देते हैं. सच कहूँ तो माफ़ करने के बाद या माफ़ी मांगने के बाद मेरे खुद के दिल को एक अलग सी खुशी मिलती है. और ये बात जो है हीरामणि वर्मा जी लिख रहे हैं, सो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल बात है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. अगला जो मैसेज है वो मेरे पास मोहम्मद इम्तियाज़ का है, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से. सो लिखा है कि वैसे तो सबसे बड़ी बात है कि किसी को माफ़ कर देना. सो इसके बाद ना आपने जिनका नाम लिखा है ना, आई एम सो सॉरी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे एक्चुअल में नहीं पता है कि उनका नाम यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. तो आप पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके ना आप मैसेज ना करें, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, वो नाम पता नहीं लेना भी है कि नहीं है. सो उन्होंने जो भी लिखा है वो बहुत इमोशनल लिखा है कि सॉरी भी लिखा है कि अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ. सो मुझे लगता है कि ये सब बातें हैं ना, आप पर्सनली अगर उनको बोलेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और उन्हें खुशी मिलेगी कि आपने जाकर उनसे बात की है. सो ये जो डेयरिंग है ना कि आप डेयर करते हैं जब जाते हैं और किसी से बात करते हैं, सो ये अपने आप पे ना बहुत सारे बंधनों को, बहुत सारी गांठें जो होती है ना उसको खोल देती है. सो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात होगी अपने आपने. सो नरिंदर सोनी देवगढ़ पटियाला से लिख रहे हैं, गुड इवनिंग. सो गुड इवनिंग टू यू टू. मैं अपने आप को माफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने घर और परिवार से दूर रहता हूँ. आई थिंक अगर आप अपने किसी सेल्फ के लिए रह रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली पीपल से माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं के लिए उनसे दूर हैं तो मुझे लगता है कि आप उन्हीं के बेनिफिट में काम कर रहे हैं. सो दैट्स ओके, आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल जो भी आपने बोला. कविता का मैसेज है देवभूमि उत्तराखंड से, क्या बात है, सच में देवभूमि है उत्तराखंड. और इस समय तो मुझे लगता है बहुत झमाझम बारिश हो रही है, हर साल ही इस तरीके का एक वेदर आता है, एक टाइम पीरियड आता है जब उत्तराखंड में लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, बट somehow this is देवभूमि. और साथ में लिखा है कि आज हमारे भांजे अभिषेक बिष्ट का जन्मदिन है और आज महेंद्र सिंह धोनी का भी जन्मदिवस है. सो क्या बात है अभिषेक जी, विशिंग यू वेरी हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे. एंड कविता जी, जो हमारा प्रश्न है आज का, उस पर भी अगर आप कुछ लिखकर भेजना चाहें तो ज़रूर लिख के भेजिएगा. आज हम यू नो वैश्विक माफ़ी दिवस, क्षमा दिवस को मना रहे हैं, यानी कि नेशनल फॉरगिवनेस डे को हम सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं, हमारे और भी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे पास आकर जुड़े हैं, आप हमें कर सकते हैं मैसेज, बन सकते हैं हमारी आज की सीरीज़ का हिस्सा. बस आपको बताना है कुछ भी ऐसी बात, किसी को माफ़ करना चाहते हैं, किसी को माफ़ कभी किया है या कभी ख़ुद को माफ़ करना चाहते हैं, तो मेरे साथ अपना ये मैसेज जो है वो शेयर कर सकते हैं. फ़िलहाल एक मैसेज, और इस मैसेज का मतलब है एक बहुत ही प्यारा सा गाना, टेक इट अवे.

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

ऑल राइट लिसनर्स, तो सीधा बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, आपके संदेशों की तरफ. लेकिन उससे पहले जो इस समय आकर हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देते हैं. जी हाँ, मैसेज में सालम एक हमारा वन एंड ओनली शो, इसकी आज की ट्यूसडे सीरीज में हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फॉरगिवनेस डे की, जिसको कुछ कुछ जगहों पर सिर्फ इसलिए मनाया जाता है ताकि हम दिल से उन सभी बातों को माफ़ कर सकें जिन बातों ने हमारे दिल में कहीं ना कहीं अकारण एक बोझ पैदा कर दिया है. कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ अजीब सा हमें हमेशा फील होता रहता है. हमें लगता है हम किसी को तो माफ़ करना पड़ेगा या किसी से तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी. सो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसी टॉपिक पर आपके जो मैसेजेस है वो हमारे पास आ रहे हैं. सो यहाँ पे जो मेरे पास मैसेज है, प्यारी सी गुड इवनिंग लिखा है. सो प्यारी सी गुड इवनिंग कौन लिखता है मुझे, बट लिखा है सोनू ने बिजनौर से. सो थैंक यू सो मच प्यारी सी गुड इवनिंग भारती जी. और लिखा है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और साथ में उन्होंने बहुत फिलोसफिकल तरीके से लिखा है कि यू नो माफ़ कर देना चाहिए, सामने वाले के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, आप उनकी नज़रों में एक बेटर यू नो पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. या आई एग्री, लेकिन कुछ लोग इस बात से डिसएग्री भी करते हैं. उनको लगता है कि अगर हमारी गलती नहीं है तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, और अगर सामने वाले ने कुछ हमारे साथ गलत किया है तो हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसे माफ़ कर देंगे तो वो फिर से हमारे साथ ऐसा ही करेगा. सो पीपल हैव देयर ओन थिंकिंग. सो यहाँ पे उन्हीं थिंकिंग्स को सामने निकालने की कोशिश की जा रही है. तो ज़्यादा अच्छे अच्छे मत बनिए कि हमें माफ़ कर देना चाहिए, हमें माफ़ कर देना चाहिए. कोशिश कीजिए कि आपका जो रियल वो है फील है इस बात को लेकर वो सामने आए. लेकिन हाँ, क्योंकि आज दिन फॉरगिवनेस का ही है, इसलिए किसी और को माफ़ कर पाएँ या ना कर पाएँ, अपने आप को माफ़ कर देना हर उस बात के लिए जिस बात के लिए आपको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, मैंने वैसा क्यों नहीं करा. वेल लिसनर्स, अगला जो मेरे पास मैसेज आया है वो रंजीत कुमार मंडल का है, सिकटी अररिया बिहार से. लिखा है कि जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया मैं उसे माफ़ करना चाहता हूँ, तो कर दीजिए. अगर ये चाहते हैं दिल से तो ज़रूर कर दीजिए. और मैंने अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया तो उसके लिए मैं ख़ुद को माफ़ करना चाहता हूँ तो वो भी कर दीजिए, वो मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है. और इस पर कुछ बड़ी फेमस सी कुछ लाइंस मुझे याद आ रही हैं, बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, बट कुछ ऐसे ही है कि ज़िंदगी कुछ इस तरह आसान कर ली मैंने, या ज़िंदगी को कुछ इस तरह से जी लिया मैंने, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया मैंने, ऐसी कुछ लाइन्स हैं. और मुझे लगता है दैट्स द बेस्ट वे टू लिव, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़रूरी भी है. सो अगला जो मैसेज है आप ये मेरे पास पुतिन शर्मा, मेरे पास नाम लिखा आ रहा है, अगर ये नाम बिल्कुल सही है तो. लिखा है कि नमस्कार मेरठ से. अच्छा, ये मैसेज जो है मेरठ से बीरू बख्शी का है. आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच. और साथ में लिखा है कि मेरे को अगर कोई दुखी करता है या परेशान करता है और उसके बाद, और तो अच्छा ना आपने नाम लिखा है या क्या किया, प्लीज़ आपका मैसेज आप दोबारा से एक बार देखिए. मुझे लग रहा है शायद मैसेज या तो अधूरा है या कहीं कुछ उसमें छूट गया है. अगला जो मैसेज मेरे पास है वो है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी को माफ़ कर देना आपकी दूरदर्शिता को दर्शाता है. अच्छा, माफ़ कर देने वाला, माफ़ कर देना दूरदर्शिता को कैसे दर्शाता है, सबसे पहले आप मुझे ये क्लियर कीजिएगा. और बाकी जो मेरे बारे में आपने लिखा है उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू. और ये है हमारा नीलम, स्वाति, किशु और किशन वंजानी वाला पूरा परिवार, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लवली मैसेजेस. एक ट्रैक आप सबके लिए एंड बिल्कुल से कुछ और मैसेजेस को लेकर जल्दी ही आऊँगी. सो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड यस ऑफ कोर्स कीप मैसेजिंग. Back in.

ऑल राइट लिसनर्स, यहाँ पे काफ़ी सारे माफ़ीनामे चल रहे हैं एक के बाद एक मैसेजेस के थ्रू. चलिए कोई बात नहीं, आई मीन दैट्स व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे. सो यहाँ पे मैसेज है गुड्डू धाकर जी का, मध्य प्रदेश उज्जैन जिला बेड़ावन गांव से, और लिखा है कि भाई मेरा एक दोस्त है मुझे 1.5 साल से माफ़ नहीं कर रहा है. चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप टाइम गिन रहे हैं, और साथ में लिखा है और टाइम गिनने का मतलब ये होता है कि आप जो होप है ना उसको गिव अप नहीं कर रहे हैं, और होप को गिव अप ना करना ही ज़िंदगी को जीना है. सो होप जो है वो उसको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और साथ में लिखा है कि अभी देखो कैसा दोस्त है, 1.5 साल से मुझे माफ़ नहीं कर रहा है जबकि मैंने उसको 2 दिन में ही माफ़ कर दिया था. चलिए कोई बात नहीं, हर एक की माफ़ करने की, हर एक की ज़िंदगी को समझने की, हर एक की सामने वाले को समझने की ये जो इंटेंसिटी है ना, ये भगवान ने अलग अलग लेवल पे सबको दे रखी है, और पेशेंस की इंटेंसिटी भी सबकी अलग अलग लेवल की है. सो इस लेवल का कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लेवल आपका मैच होगा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये मिसमैच ही रहेगा, पर कोशिश की जा सकती है कि इस 1.5 साल के अंतर को 2 दिन के अंतर में आप किस तरीके से लेकर आते हैं. अरे आप तो धाकड़ हैं, कोशिश कीजिए, जाइए. अगर आपका ये दोस्त इतना प्यारा है आपको तो एक बार बात करके देख लीजिए, क्या पता मान जाए, और क्या पता ज़िंदगी जो है वो फिर से उनके साथ आप जीना शुरू कर दें. सो अगला मैसेज जो है वो आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली साहब का है, गुन्नौर से. लिखा है कि माफ़ी मांगना आसान है, माफ़ करना मुश्किल है, गुनाहों का यहाँ आज इंसाफ करना मुश्किल है. चलिए ये तो बहुत सीरियस बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है आसान तो कुछ भी नहीं है, ना माफ़ करना, ना माफ़ी मांगना, ना माफ़ी देना, कुछ भी आसान नहीं है. बट इट जस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि सब लाइफ में इजीली सेटल अप हो जाए तो ये जो हार्डशिप है ना इससे आपको गुजरना पड़ता है. अगला जो मैसेज है वो सादिफ परवीन का है, अररिया बिहार से. लिखा है कि एक दोस्त बहुत दिन से नाराज़ था, आज मैंने उसको माफ़ कर दिया. चलिए आज किया तो बहुत ही अच्छी बात करी, मेरी बात मान के करी तो बहुत बहुत बहुत अच्छी बात करी. लिखा है क्योंकि आज मुझे ये करने से बहुत सुकून भी मिला है, और आज मैंने आपको भी माफ़ कर दिया है. अच्छा, उसके बाद आपने ये क्यों नहीं लिखा कि मुझे क्यों माफ़ कर दिया है. बट चलिए कोई बात नहीं, अगर मैंने कोई गलती की भी होगी तो आपने मुझे माफ़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मेरे माफ़ी मांगने से पहले. आई मीन दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो ऐसी कुछ माफ़ी जो है मुझसे, अशोक विहार से हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं भुवनेश जी, उन्होंने भी मांगी है. भाई क्यों मांगी है, किस लिए मांगी है, क्योंकि उनकी जो उनका जो पूरा मैसेज है ना वो हमेशा इंग्लिश में लिखते हैं और मुझे उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है. बट चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने लिखा है कि फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं मुझे माफ़ करना पड़े, जिसको मैं माफ़ करूँ, और कभी कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसको मैं पहले ही काफ़ी पहले भुला चुका हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर एक रिश्ता जो है वो मिठास लिए हुए बना रहे. लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ आज, क्योंकि मैं हमेशा अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, और आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, मैं उसे हिंदी में नहीं लिख पाता हूँ, उसके लिए सॉरी. चले कोई बात नहीं, आपने इस बात को रियलाइज़ किया, ये बहुत बड़ी बात है. सो रियलाइजेशन भी अपने आप में एक तरीके की माफ़ी है. फ़िलहाल एक आप सबके लिए, टेक इट अवे.

ऑल राइट लिसनर्स, सो इतना भी समय अभी नहीं बचा है इस शो को हमें वाइंड अप तो करना ही पड़ेगा 7 बजे से पहले पहले, आई मीन 5-7 मिनट पहले, 5-7 सेकंड पहले। वेल लिसनर्स, आपके जो मैसेजेस हैं वो मेरे पास लगातार आए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों की शिकायत है कि इतने बजे मैसेज किया था आपने, हमारा मैसेज शामिल नहीं करा, उनसे माफ़ी है, क्योंकि मैसेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि कुछ मैसेजेस जो हैं वो रह जाते हैं, उसके लिए रियली सॉरी। एक बहुत ही प्यारा मैसेज मेरे पास बिल्कुल अभी अभी आया है अरुण कुमार का, भटिंडा से, और बहुत प्यारा और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, आई मीन जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, आज के दिन को लेकर वो मैसेज किया है। लिखा है कि टुडे इज फॉरगिवनेस डे, अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, और जिन लोगों ने मुझे कभी हर्ट किया है तो मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। चलिए ऐते तुसी बड़ी चंगी गल कीती है, एंड मुझे सच में आपका मैसेज जो है वो बहुत पसंद आया है। एक और मैसेज है, आई एम विशाखा फ्रॉम खुशीनगर उत्तर प्रदेश, क्या बात है। सो बहुत प्यारी फिलोसफिकल सी बात लिखी है, जल्दी से पढ़ देती हूँ कि किसको माफ़ करना है। इसको सोचने में भी समय लगता है, हर वक्त इतना आसान नहीं होता है किसी को माफ़ करना। सही बात है, पहले खुद के मन को संभालना पड़ता है, फिर सामने वाले के मन के बारे में सोचना पड़ता है उसे माफ़ करना है कि नहीं, और इट टेक्स टाइम। ये पूरा प्रोसेस जो है वो टाइम लेता है, और ये सारा उस केस में होता है विशाखा, जो मैं समझ पा रही हूँ, तब होता है जब किसी

ने आपको बहुत बहुत बहुत ज़्यादा बुरे से हर्ट किया होता है, एंड ऐसे टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ में लिखता है, बाय द वे योर वॉइस इज़ एक्सीलेंट एंड यू आर प्लेइंग नाइस सॉन्ग्स, वेल थैंक यू सो मच। एंड साथ में उन्होंने खुद ही लिख दिया कि मेरा मूड सही नहीं है बट सॉन्ग सुन के अच्छा लग रहा है। विशाखा, मूड को सही करने की कोशिश करो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इट विल ऑल्सो टेक टाइम, लेकिन वक्त जो है वो सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, मरहम है। एंड कोई बात नहीं, दैट्स द लाइफ। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, उन्हीं को बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ों से गुजरना पड़ता है, एंड ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो विशाखा, आई मीन जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, और मुझे पता है आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगी। भेरूलाल जी का मैसेज है यहाँ पर, लिखा है कि क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला दोनों ही व्यक्तियों के दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। माफ़ी शब्द बहुत छोटा है पर इसके जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वेल, एक और मैसेज है बहुत प्यारा सा है, राजेश भल्ला जी हमारे एडवोकेट साहब हैं कंकर खेड़ा मेरठ से, लिखा है कि छोटे छोटे आपस में विवाद माफ़ी मांगने से निपट जाए तो अच्छा, माफ़ दिल का मैल साफ। क्या बात है। तो आज का ये जो एक कहते हैं ना ज्ञान ऑफ द डे, और आज का जो एक आज की एक ख़ास बात, ये लेते जाइए आज यहाँ से कि माफ़ दिल का मैल साफ। सो राजेश भल्ला जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ वेल, एक ट्रैक आप सबके लिए प्ले करूँगी। इस ट्रैक के साथ ही आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि 8 बजे से 9 बजे तक रहेगा म्यूज़िक मस्ती का टाइम, जिसमें बिल्कुल मैं आपके साथ बनी रहूँगी और फुट टैपिंग नंबर्स बैक टू बैक आपके लिए ज़रूर प्ले करूँगी। आप सब इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड कीप मैसेजिंग, जिस भी शो में मैसेजेस आपसे मांगे जाते हैं। बट स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग फॉरएवर। सो टेक इट अवे।

0: It's more than just a game. It's our DNA. Sings David Guetta with Andrea Bocelli from the FIFA Soundtrack 2026 album. Time now for a tiny break, and then we bring you Shakira's Hips Don't Lie.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Welcome back, dear listeners. You're tuned to FM Rainbow. You Asked For It is the program. And the next song going out for Jayanta Karmakar in Kerala, Shakira in Hips Don't Lie.
2: Ladies up in here tonight, no fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting. Shakira.

ऑल राइट लिसनर्स, आपकी वाणी आकाशवाणी और बिल्कुल से हम हैं आपके साथ हमेशा ही. वेल, इस समय जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है म्यूज़िक मस्ती. और मैं हूँ कौन? जी हाँ, मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी ज़िंदगी से कभी ना हारें. सो यस ऑफ कोर्स, फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो हमेशा ही आपको करना है. आपका मेरा वादा है रिस्वाते के साथ. क्या इरादा है? यही इरादा है ना कि जितना हो सके आपको एंटरटेन कर सकें, और आपको एंटरटेन करने के लिए ही स्पेशली हमारा ये शो जो है वो डिज़ाइन किया गया है, म्यूज़िक मस्ती. और इसमें हम करते हैं म्यूज़िक के साथ बहुत सारी मस्ती. यानी कि आज बारिश का भी समय है, आप चाहें तो डांस कर सकते हैं, आप चाहें तो इस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा इमेजिन करके इमेजिनेशन में ही डांस कर सकते हैं. लेकिन इट्स ऑल अबाउट सम फन, इट्स ऑल अबाउट सम फन म्यूज़िक, सम फुट टैपिंग म्यूज़िक एंड डेफिनेटली अबाउट द डांस. सो एक बहुत ही प्यारा ट्रैक, बिल्कुल से इसी से शुरू करते हैं आज की म्यूज़िक मस्ती.

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आए।
1: हाँ तो भैया क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम।
2: क्यों ये कहता है दिल?
1: इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव, माला नेगी, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, कैसे हैं आप? कुछ लम्हे बड़े अजीब होते हैं, वो गुजरते जरूर हैं मगर पूरे कभी नहीं गुजरते।

कभी कम नहीं होती। आज की शाम भी उन्हीं अनमोल लम्हों के नाम हैं। आप सुन रहे हैं आपकी याद आती रही आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक, और मैं हूं आपके साथ आहिर। आइए कुछ गीतों के साथ उन एहसासों को फिर से जीते हैं, मुलाकात करते हैं उनसे जो कभी पुराने नहीं होते। यकीन मानिएगा, पुराने होते ही नहीं।

जी हाँ, एफएम रेनबो और मैं हूँ आपके साथ ताहिर, और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। कभी किसी पुरानी डायरी का सफ़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक धुएँ ही काफ़ी होती है और सारी तस्वीरें आंखों के सामने चलने लगती हैं, होता है ना।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, ताहिर आप लोगों के बीच में है, प्रोग्राम वही है, आपकी याद आती रही। कुछ मुलाकातें इतनी छोटी होती हैं कि उनका वक्त याद नहीं रहता, मगर उनके उनके बाद वाली मुस्कुराहट, हंसी बहुत देर तक साथ चलती है, साथ रहती है, छोड़ के नहीं जाती है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ ताहिर और प्रोग्राम चला है आपकी याद आती रही। यादें बहुत अजीब होती हैं, वो उन वक्तों में खास तौर पे आपके सामने आती हैं जब आप ने उनके बारे में सोचा भी नहीं होता। ऐसा होता है ना, मैं बताता हूँ कैसे। जब आप कोई गीत सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो आपको फौरन वो बात याद आ जाती है जो आपके साथ वो घटी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, याद आ जाती फौरन।

कभी किसी गली से गुजरते हुए सोचा है, लगता है यहां कुछ छूट गया है या छूट गया था। फिर समझ आता है कि चीज नहीं थी वो, एक लम्हा था जो रह गया दिल के किसी कोने में।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर। और प्रोग्राम जो चल रहा था और चल भी रहा है उसका नाम है आपकी याद आती रहे। बहरहाल ये वो वक्त है जब हमें कहना होगा कि हम जा रहे हैं, लेकिन हाँ जा नहीं रहा हूँ, अभी आऊँगा, 11 बजे आऊँगा, प्रोग्राम रहेगा रंगे महफिल। फिलहाल थोड़ी देर के लिए जा दीजिए, सुनते रहिए एफएम रेनबो, जो कि है दिल से दिल तक।

But she ain't in.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आदाब, कैसे हैं आप? पूरी उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। हर दिन के बाद एक शाम आती है, लेकिन हर शाम एक जैसी नहीं होती। कुछ शामें बस गुजर जाती हैं और कुछ देर तक दिल के साथ चलती रहती हैं। शायद इसीलिए गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो उस वक्त का हिस्सा बन जाती हैं जिसमें इंसान खुद से सबसे ज्यादा सच बोलता है ना। मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जो कि है दिल से दिल तक। चलिए आज कुछ देर के लिए दुनिया की रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं और अल्फाजों को बोलने का मौका देते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। कभी आपने सोचा है कि किसी गीत की या किसी गजल की पहली धुन ही अपनी लगती है, कि उसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लगता है जैसे किसी ने दिल की बात हमसे पहले ही समझ ली हो, और शायद इसीलिए अच्छी गजलें कभी पुरानी नहीं पड़ती। हर बार वो एक नया मतलब लेकर आती हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक ताहिर आप लोगों के बीच में है और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। कभी कभी लगता है कि जिंदगी में हमें किसी बड़ी खुशी की कमी नहीं होती, कमी होती है तो बस उस वक्त की, जब घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब बातें मुकम्मल होती हैं तो चाय ठंडी हो जाती है, महसूस किया है ना, और शाम जल्दी ख़त्म होने का अफसोस होता है। आज सब कुछ है लेकिन फुर्सत जैसे कहीं रास्ते में छूट गई हो। शायद इसीलिए कुछ गीत दिल को इतने करीब लगते हैं, क्योंकि वो हमें उन दिनों तक ले जाते हैं जहां जिंदगी तेज नहीं गहरी हुआ करती थी और हर लम्हा जीने की वजह बन जाती थी।

कभी कभी तकलीफ इस बात की नहीं होती कि कोई चला गया, तकलीफ इस बात की होती है कि हमने जिस तकलीफ, हमने जिस सच को दिल से माना, वो किसी और के लिए शायद उतना अहम था ही नहीं जितना हम सोचते थे। इंसान टूट तब नहीं जाता जब कोई उसे छोड़ देता है, वो तब टूटने लगता है जब उसके भरोसे और उसकी अहमियत कम हो जाती है। फिर भी दिल की एक खूबी है, हर जख्म के बाद भी वो मोहब्बत से नफरत करना नहीं सीखता, क्योंकि मोहब्बत ऐसी ही चीज होती है। शायद इसी उम्मीद पर जिंदगी भी चलती रहती है और गजलें भी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ, आकाशवाणी।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: एफएम रेनबो और मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। जिंदगी में हर मुलाकात लंबी हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग बस कुछ पल के लिए मिलते हैं मगर उनकी बात का असर बहुत देर तक रहता है। इंसान अक्सर वक्त को नहीं उस एहसास को संभाल के रखता है जो किसी मौजूदगी से मिला हो, है ना। कभी सोचा है कि हम सबके पास एक ऐसी बात होती है जो हम किसी से नहीं कहते, मगर जब कोई गजल सुनता है तो लगता है जैसे उसमें वही बात लिखी हुई है। बस इसीलिए गजल और दिल का रिश्ता इतना पुराना है। इंतजार भी कुछ ऐसी चीज होती है, बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी,

कुछ चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसा अच्छे गीत सुनना, गजलें सुनते ही रुक जाना, या किसी खूबसूरत मिसरे को दोबारा सुनने के लिए दिल करना। ये छोटी छोटी बातें ही महफिल को असली रंग देती हैं, महफिल को बनाती हैं। इंसान की जिंदगी में सुकून बहुत महंगा नहीं होता। कभी एक कप चाय, कभी हल्की सी हवा और कभी दो अच्छे अल्फाज ही काफी होते हैं। आज की महफिल शायद इसी छोटे से सुकून का एक बहाना है।

वाकई मजबूरियां कुछ ऐसी ही होती हैं कि हम कई बार किसी के हाथों मजबूर हो जाते हैं, ज़िंदगी मजबूर कर देती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खुशी से करना चाहते हैं चाहे दिल में कुछ भी हो। लेकिन फ़िलहाल मेरे दिल में कुछ उदासी है, वो यही उदासी है कि मुझे आपके पास से जाना होगा। प्रोग्राम अब ख़त्म होने की कगार पर है, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए अपना, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो आपका ख्याल रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर जीरो आर के सफर में आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त अर्चना। लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसे गीत जो इस मौसम के और इस माहौल के लिए बिल्कुल मुफीद साबित हो रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथ बने रहिए एफएम रेनबो पर, यूं ही।

0: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये था कार्यक्रम जीरो आवर शो। अब रात के ठीक एक बज चुके हैं। पेश है अब तक की प्रमुख न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझीकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये थी इस घंटे की प्रमुख न्यूज हेडलाइंस, ताजा खबरें। आइए सुनते हैं कुछ ही देर में कार्यक्रम सुहानी रात, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: जुड़े आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं इस समय भी और 24 घंटे न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग कोनों से आप अगर जुड़ना चाहते हैं और नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी वजह से, तो आप इस ऐप को जल्द से जल्द कर लीजिए डाउनलोड। रात के मध्य रात्रि के कहना चाहिए 1:09 हो चुके हैं और कुछ सेकंड्स भी, और जिस रफ्तार के साथ घड़ी चल रही है हमारे कार्यक्रम भी उसी के साथ साथ चल रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मौसम जो क्या कहना चाहिए, बदली से झांकती जो छोटी छोटी किरणें हैं ना सितारों की, इससे पहले दोपहर में सूरज की, अभी तो यही आँख में चौली जो है वो शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत और मध्य भारत में इस वक्त कहना चाहिए कि मानसून करीब करीब दस्तक दे चुका है और जो बारिश हो रही है वो उसी का पैगाम लेकर आ रही है। बाकी मौसम विभाग ज़्यादा जाने लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो चिलचिलाती हुई गर्मी अभी तक पड़ रही थी, ख़ासतौर से उमस के साथ, उसके बीच ये बादलों से हो रही लुका छुपी अब एक कंफर्मेशन होनी चाहिए, ताकि दिल्ली समेत नॉर्थ और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के, उत्तर मध्य भारत के जो इलाके हैं, लोग हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके इस चिपचिपाती गर्मी से, नमी से। लेकिन इस सब के बीच हमारा भी ये जो कार्यक्रम है ना, सुहानी रात, ये आपको सुहाने दिनों की तरफ ले के जाता है इसी गर्मी इसी बारिश के बीच से। तो याद के साथ, वाक्यात के साथ, किस्सों कहानियों के साथ अगर वक्त बिताना चाहते हैं तो इस घंटे रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं वादा करता हूँ कि आपको यादों की जो भीगन है ना, वो बारिश से भी ज़्यादा सुहानी लगने वाली है। इसी वादे के साथ आगे बढ़ते हैं, आप जुड़े हैं मेरे यानी रजत के साथ प्रोग्राम सुहानी रात में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 से 2 तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सी तेरी बोली,
1: हाय
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी सी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम अब अपनी रफ्तार पर है और चलते चलते हम आ चुके हैं अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। हम बता दें कि हमारे साथ रविंद्र कुमार जी जुड़े सिरसा हरियाणा से। उसके अलावा हमारे साथ इसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों में से मैं सबके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ, पवन जी जुड़े हमें हमारे साथ सोनभद्र से, उत्तर प्रदेश से। और आपने बहुत सारी कुछ फरमाइशें भी भेजी, कुछ हम पूरी कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते, समय का भी रिस्ट्रिक्शन है और कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार होती है, आप समझ ही सकते हैं। और लेकिन बातें की आपने, अपने भाव हम तक पहुंचाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम सुहानी रात में मेरे साथ, और आप कार्यक्रम जारी है और इसके साथ जुड़े रहें ये ज़रूर हम आपसे कहेंगे। और इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते रहें, हमारे जो मित्रता है आपके साथ वो भी जुड़े रहें। फिलहाल कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति ये अगला गीत।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। क्रिकेट में आज रात नॉटिंगम के ट्रेड ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है। ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार।

0: सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे।

0: तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तीन बज चुके हैं और वक्त है इस घंटे की प्रमुख खबरों का, उन समाचार हेडलाइंस का जिनका अब वक्त हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। उन्होंने कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होंगे। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है और ये भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अब तक की सबसे बड़ी हार है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज के साथ, और मैं हूं आपके साथ रजत।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर

0: दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

सुबह के 4 बजे हैं। लीजिए पेश है अब तक की ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवादी नहीं, विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज विभिन्न क्षेत्रों पर अलनीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए 3रे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कुछ ही देर में अर्चना लेकर आएंगी सारेगामा। जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: अगली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मैच में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में खेले गए इस मैच में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ अर्जेंटीना भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और अंत में क्रिकेट में नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है। ये भारत की रनों के लिहाज से T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे बड़ी हार है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप जुड़ चुके हैं मेरे यानी रजत के साथ कार्यक्रम आराधना में।

0: तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।